103 MHz पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 13 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं। आज की प्रातः कालीन सभा आरंभ होती है।

मिडी वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम

0: के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप सभी श्रोताओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तुत है विशेष आराधना।

नवरात्र का तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा। शारदीय नवरात्र में विधि पूर्वक 9 दिनों तक पूजन करने वाले को माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर अभिलषित वर देती हैं। नवरात्र में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। माँ को रक्त चंदन, रक्त पुष्प, फल, नैवेद्य, दीप, धूप आदि समर्पित करें। माँ के इस पंचोपचार पूजन के पश्चात उनकी स्तुति करें। देवी प्रपन्नार्त्रि हरे प्रसीद, प्रसीद मातर।

जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वे श्वरि पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। अर्थात हे माता, तुम शीघ्र ही शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करती हो। हे अखिल जगत की माता, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे समस्त संसार की ईश्वरी, समस्त चेतन और अचेतन, जड़ और जंगम जीवों की स्वामिनी माँ, तुम इस जगत की रक्षा करो। अस्तु, नवरात्र के तीसरे दिन माँ के दश भुजा युक्त चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण किया जाता है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपा अस्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात सिंह पर विराजमान माँ चंद्रघंटा अपनी दश भुजाओं में खड्ग, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण, कमल का फूल, कमंडलु एवं घंटा धारण किए हुए सर्वत्र कृपा की वर्षा करती रहती हैं, और इसीलिए माँ यह तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है। माँ को यह घंटा सहस्त्राक्ष हजार आँख वाले अर्थात सर्वज्ञ इंद्र ने भेंट किया था। इंद्र ने अहिल्या अर्थात जो जमीन हल से जोतने योग्य नहीं थी, उसे भी ब्रह्म क्षेत्र से तादात्म्य करके जोत दिया, तभी से उनका नाम सहस्त्राक्ष हुआ। यह घंटा इतना तीव्र नाद करता है कि संपूर्ण दिशाएं उस नाद से गूंज उठती हैं। रक्तबीज वध के प्रसंग में आता है कि घंटा स्वनेन तन्नादम अंबिका चोप ब्रिंघयत। माँ के चंद्रघंटा नाम का एक अन्य प्रकार से भी अर्थ किया गया है कि चंद्रम घंटायाह यस्याह सा, अर्थात आह्लादकारी चंद्रमा जिनके सिर पर स्थित हो, उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। या घंटे के आकार के चंद्रमा से जिनका मस्तक सुशोभित है, वे चंद्रघंटा माँ हैं। वे परम लावण्यमयी हैं, स्वर्ण के से वर्ण वाली त्रिलोचना वे माता चंद्रघंटा अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के दिव्य आयुध धारण करती हैं। वे सिंह पर सवार हैं और युद्ध में सत्वर प्रस्थान के लिए उद्यत हैं। वे वीर मूर्ति हैं, वीर रस से परिपूर्ण हैं। उनके चंद्र भयंकर घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट दैत्य दानव राक्षण गण त्रस्त होते हैं। वे माँ अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रस्य धारिणी हैं, क्योंकि उन्हें तो दुष्टों का वध करके दुराचरण का विघात करना है। वे विद्युत दाम समप्रभा हैं, अत्यंत भीषणा हैं। खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, गदा, चक्र, धनुष, बाण एवं घंटा धारण करने वाली वे माँ चंद्रघंटा पर अपर से भी बढ़कर सबकी परमेश्वरी हैं। परा पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी, वे ही अंबिका हैं, तीनों लोकों की आधारभूता हैं। पादौ धरित्री कटिरंतरिक्षम यस्या शिरो द्वौ अदितागदेशु अन्यद यथा योगमयोग दूरा सा चंद्रघंटा घटयत्वभीष्टम। क्योंकि उनके चरण कमल भूमि के रूप में, उनका मध्य भाग अंतरिक्ष के रूप में और उनका सिर दिव्य लोक के रूप में विस्तृत हुआ है। ऋग्वेद के वाक सूक्त की वाग देवी भी कुछ इसी रूप में स्वमहिमा का गान करती है। अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिः अप्सु अंतः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वा उतामूम द्याम वर्षमणा उपस्पृशामि। तब देवताओं ने भी उन अग्निवर्णा ब्रह्मचारिणी के रूप में किए गए अपने तप से अत्यंत देदीप्यमान माता का स्तवन किया। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम शिवदाम शिवाम। अर्थात हे पापनाशिनी, इच्छानुसार शरणागत भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली अंतरहित अर्थात अजरा

अमरा उन कल्याणकारिणी विजयदायिनी माँ को प्रणाम है। पुराण कथानुसार ब्रह्मचारिणी शिवा शिव की प्राप्ति हेतु तपस्या करती हैं। ब्रह्मचारिणी शिवा के मन में तपस्या के फल की लालसा इतनी प्रबल हो जाती है कि वे सुंदर मृदुल श्वेतांबरा किशोरी का रूप त्याग भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। उग्र और हिंसक जीव जंतुओं के साथ रहने से परम लावण्यमयी किशोरी भी उग्र रूपा चंद्रघंटा हो जाती है। गर्जन करते हुए सिंह को वाहन बनाकर अस्त्र शस्त्रों से लैस वह शिव की तलाश में चल देती हैं। अधरों का मृदुहास घंटे के मेघ गर्जन के समान कठोर निनाद से बंद हो जाता है। अब कोई बाधा उस सिंह वाहिनी दुर्गा को रोक नहीं सकती। जब शिव साधना के पथ पर सिंह पर सवार होकर समस्त विघ्नों को पार करती हुई चंद्रघंटा दुर्गा प्रयाण करती हैं तो शिव स्वयं उनके सामने आ जाते हैं। कहीं कहीं देवी चंद्रघंटा का ध्यान चंद्रखंडा दुर्गा के रूप में भी मिलता है। इस रूप में वे पक्षीराज गरुड़ पर सवार उग्र रूपा कोपशीला एवं रौद्र रूपा दिखाई देती हैं। देवी चंद्रघंटा का ये चित्रण साक्षी है कि भक्त के अंदर छिपी चट्टानी दृढ़ता साधक के व्यक्तित्व को वज्र से भी कठोर बना देती है, क्योंकि माँ के साधक जहाँ एक ओर फूलों से भी कोमल चित्तवाने हैं तो वहीं अवसर आने पर वे वज्र के समान कठोर चित्त वाले भी हो जाते हैं। वज्रादिव कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। माँ चंद्रघंटा कोप समन्विता है, अतः उनके पूजन में जल या दूध का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ओम आप्यायस्य समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम् भवा वाजस्थ संगमे। क्योंकि साधक को अपना जीवन दूध सा धवल स्वच्छ और उज्जवल जो बनाना है, माँ का दुग्धाभिषेक कर साधक को दिन भर उपवास रखना चाहिए। यदि न रह सकें तो दिन में एक बार अन्न खाएं अथवा फलाहार करें। प्रयास करें कि महिमामयी जगत जननी की पूजा के ये 9 दिन बिना क्रोध किए हुए बिना किसी को कष्ट दिए हुए निकल जाएं, क्योंकि आज मानव स्वयं दुखी है और पीड़ित संकटग्रस्त व्यक्ति तो जननी की ही शरण में जाता है। तो हम संकल्प करें कि स्थान स्थान पर घर घर में ग्राम ग्राम में वनों वनों में प्रत्येक व्यक्ति माँ जगदम्बा के चंद्रघंटा रूप का आवाहन करे और आदिशक्ति जग जननी माँ जगदम्बिका हम सब का कल्याण करें। भक्तों पर कृपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा माँ चंद्रघंटा हमें सब कुछ देने में पूर्ण समर्थ हैं। वे अपनी सामर्थ्य से जगत का सृजन और पालन करती हैं। कल्प के अंत में संसार का संहार भी वही करती हैं। आकार रहित वे माँ सर्वरूपमयी तथा सर्वव्यापक हैं। वे लाल रंग के वस्त्रों को धारण किए हैं, उनकी आँखों से लालिमा झलकती है, परंतु उनका शिव विग्रह सुंदरता की सीमा है। कोई ऐसा श्रृंगार नहीं जो उनमें न हो, अतएव सामर्थ्यानुसार सारी सामग्रियां जुटाकर उनकी पूजा करें और तब देखिए कि देवी माँ चंद्रघंटा दयालु होकर सिंह पर सवार होकर आपके घर के आंगन में भ्रमण कर रही हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष आराधना, भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम, आइए सुनते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार।
5: स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के मोरबी जिले में हुआ था। स्वामी जी बाल्यकाल से ही धार्मिक थे। स्वामी जी के बचपन में उनकी बहन एवं चाचा जी की आकस्मिक मृत्यु के कारण वे अत्यंत दुखी हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुक्ति पथ की खोज यहीं से आरंभ की। स्वामी जी ने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। स्वामी जी सामाजिक बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति के मार्ग की खोज ही था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भेंट मथुरा में स्वामी बिरजानंद से हुई। स्वामी जी को बिरजानंद का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। मूल शंकर स्वामी जी का प्रारंभिक नाम था। दयानंद सरस्वती के रूप में बिरजानंद के शिष्यत्व के बाद जाने गए। स्वामी जी ने वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। अपने गुरु विरजानंद से आज्ञा लेकर 1863 से धर्मोपदेश आरंभ कर दिया। स्वामी जी के उपदेश का केंद्र देश प्रेम, शास्त्रों के प्रति निष्ठा, सामाजिक समरसता इत्यादि रहा। धर्म प्रचार के दौरान 1874 में मुंबई महाराष्ट्र की यात्रा की। स्वामी जी ने यहीं पर सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी धर्मोपदेशक होने के साथ एक दार्शनिक, सामाजिक चिंतक एवं स्वतंत्र विचारक थे। स्वामी जी ने समाज एवं राष्ट्र का विकास वेदों के आधार पर किया। स्वामी जी का अटूट विश्वास था, यदि भारतीय जनमानस वेदावलंबी होकर अपने जीवन निर्वाह में सक्रियता से प्रतिभाग करेगा तो भारतवर्ष संसार के लिए आदर्श स्थापित करेगा। स्वामी जी बहुदेववाद के विरोधी एवं एकेश्वरवाद के समर्थक थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे। स्वामी जी के अनुसार वेद में धर्म के साथ वैज्ञानिक विचार भी स्पष्ट रूप से मिलता है। अपनी विचारधारा से देशवासियों के हृदय में नवजागरण का मंत्र दिया। स्वामी जी ने देश प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा, भारत एक ऐसा राष्ट्र है

0: सच्चा पारसमणि कह सकते हैं, क्योंकि जंगयुक्त लौह रूपी विदेशी इसे स्पर्श कर स्वर्ण के समान कीमती हो जाते हैं। स्वामी जी प्रथम हिंदू समाज सुधारक थे। वेदों के युग में लौटो स्वामी जी का प्रमुख नारा था। स्वामी जी ने हिंदू मत को इस्लाम व ईसाई मत के कट्टरवादी रवैये से अलग बतलाया। हिंदू पुनरुत्थान के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को जगाते हुए अंधविश्वास, रूढ़वादिता आदि का इन्होंने प्रबल खंडन किया है। आपने आर्य समाज के सामाजिक आचार और नैतिक सिद्धांतों की जो योजना बनाई उसमें भी जन्मना, जाति परंपरा, मनुष्यों में असमानता और स्त्रियों तथा पुरुषों में विषमता की गुंजाइश नहीं थी। स्वामी जी ने लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत की। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। स्वामी जी का विचार था देश में अपना राजा तथा अपने राजा का शासन ही सर्वथा उत्तम है। स्वामी जी ने कहा है मनोवैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यवसायिक संघर्षों को समाप्त कर सकता है। समस्त सामाजिक कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन किया है। स्वामी जी स्त्रियों के प्रति पूर्ण आदर का भाव रखते थे। वे स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने पर्दा प्रथा आदि का मुक्त कंठ से विरोध किया है। सत्यार्थ प्रकाश में आपने कहा है जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का विरोध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और फिर 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती विषय पर कोमल सिंह यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।

0: किसान भाई खेती किसानी के साथे साथे आज देखा कृषि विविधीकरण की और भाई जोर दिया जाता है कि भाई चार पैसा के आमदनी हो, ऐसे उपाय कृषि में हो चाहिए। तो भाई कृषि विविधीकरण का अगर बात आवत है तो हमें बागवानी एक महत्वपूर्ण एकर क्षेत्र बाटे। तो बागवानी जो फसल बाटे ओकर व्यावसायिक खेती कैसे की जाए, आज एके बिना जानकारी दे के खातिर हमारे बीच में कोमल सिंह यादव जी हैं। आप कुलभास्कर आसम पीजी कॉलेज में भी कार्यरत हैं और यह विषय के जानकार हैं। श्री कोमल सिंह यादव जी, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत
1: जी
0: बाटे।
1: धन्यवाद।
0: हम अपने किसान भाइन के लिए जानब कि जो बागवानी खास करके जो होता है व्यावसायिक खेती कैसे की जाए, एक के बारे में विस्तार से बता दें।
1: जी देखें, किसान भाई बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती से तात्पर्य फल है, सब्जियां हैं, फूल हैं, मसाले हैं या औषधीय खेती हैं, जिनका लाभ कमाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। इसमें क्या है, उत्तम जो उन्नत किस्मों का चयन करें, सिंचाई का प्रबंध करें, संतुलित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें, कीटनाशक नियंत्रण करें एवं आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करें, अच्छी पैकेजिंग। देखिए, इसमें किसान भाई इस बात का अवश्य ध्यान दें कि बागवानी फसलों में केवल फसल का उत्पादन करना ही नहीं महत्व है, उसके साथ उसकी पैकेजिंग करें, उसका भंडारण करें, समय से मार्केट में पहुँचाएँ, ये चीज़ें किसान भाई विशेष तौर से ध्यान दे
0: का
1: करके।
0: मतलब ये कि एकर एक जो व्यावसायिक रूप से उत्पादन के साथे साथे जो है ओका केह धरे से बाजार में

0: प्रस्तुत करैक बाटे, एकर भी विशेष ध्यान दे के आवश्यकता बाटे।
1: जी
0: तो एक देखें, किसानन के लिए भी हमेशा प्रयास किए जात है कि उनका आय दुगनी कैसे होए। तो बागवानी के जरिए वो अपन आय किस तरह से वृद्धि कर सकत हैं, इस पर प्रकाश डालें।
1: देखें किसान भाई, इस बात को आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर एक बात तो निकल कर आती है कि किसानों की आय दोगुनी हम कैसे करें, या किसानों की आय, एक सरकार हमारी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। तो किसानों की आय दोगुनी कैसे, उसको अगर किसान भाई थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान दे लें तो बहुत आसानी से उनकी जो है आय दोगुनी हो सकती है। सबसे पहला काम वो जो खाद एवं उर्वरक है, उर्वरक पर ध्यान दें। हम प्रायः किसान जब क्षेत्र में जाते हैं देखते हैं तो किसानों की सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं, अपने मिट्टी की जांच नहीं करवाएंगे और अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग करेंगे। जहां उनको चाहिए आवश्यकता है 10 किलो, वहां पे वो 20 किलो 25 किलो डाल रहे हैं। इससे उनकी जो लागत है वो बढ़ रही है। हर किसान के पास अमूमन क्या होता है कि पशु होते हैं दो चार, कुछ नहीं करना है किसान को, अपने यहाँ एक बर्मी कंपोस्ट अगर वो बना ले, बर्मी कंपोस्ट बना ले, कुछ नहीं केवल जो है एक 7 फीट का लंबा गड्ढा बना ले, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा बना ले, और गोबर को उसमें डाल करके उसको पानी के छिड़काव करके उसको ठंडा कर दे और फिर केचुआ डाल दे। उसके बाद वो लगभग 70 से 80 दिन में बर्मी कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाती है। उर्वरक की जगह पे आप उस बर्मी कंपोस्ट को प्रयोग करिए। उससे क्या होगा, बर्मी कंपोस्ट से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि एक तो फल की क्वालिटी अच्छी आएगी और उसमें कीड़े और मकोड़े, चूंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करता है, तो उससे क्या होता है कि कीड़े और मकोड़े भी कम लगते हैं, किसान की लागत कम आती है। तो इससे एक फायदा हुआ, उसके किसान की आय बढ़ गई। दूसरा, बागवानी अगर किसान ने किया है तो उसके बगल बगल आप पपीता की खेती कर लीजिए, वो आपकी एडिशनल अतिरिक्त इनकम आय हो जाएगी। या उसके बगल बगल आप गेंदा की खेती कर लीजिए। गेंदा की खेती करने से आपका फायदा क्या है किसान भाई, इसको समझें कि गेंदा जो होता है हमारा ट्रैप का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हो जिसको फंसा लेता है और हमारे पौधे उससे बच जाते हैं। तो इससे किसान भाई जो है लागत को कम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और दोगुना कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए जब बागवानी की बात आवत है तो भाई देखा है, और भी जब कृषि क्षेत्र का हम बात करी थी, चाहे अनाज उत्पादन का हो तो हम तो भाई एक अच्छा खासा क्षेत्रफल खेती के लिए होता है, लेकिन बागवानी के लिए उतना क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बिना जिसे भूमि कम है तो वहाँ किस ढंग से अधिक लाभ ले सकते हैं, कौन तरह से ऐसा पौधा है बागवानी में जिसका लगाए कि अपने किसान भाई लाभ से करते हैं।
1: देखिए हमारे आसपास जो खासतौर से जो देखा जाए तो जो हमारा रीजन है, जो हमारा क्षेत्र है, इसमें जैसे प्रतापगढ़ का आप क्षेत्र ले लेंगे तो वहाँ पे आंवले का अच्छा खासा जो है खेती होती है। दूसरा आप इलाहाबाद का रीजन, यहाँ पे अमरूद की खेती अच्छी होती है। तो आंवला और अमरूद, अगर उसी के साथ हम पपाया की खेती ले लें, पपीते की खेती ले लें, तो उससे जो है किसानों को लाभ मिल जाएगा। किसान भाई यहाँ पर ध्यान दें, गलती कहाँ करता है किसान, किसान जो है जैसे एक अंतरण होता है, अंतरण का ध्यान नहीं देता है। तो अंतरण का ध्यान जरूर दें। जो एक वैज्ञानिक हमने फिक्स कर रखा है कि आम 10x10 मीटर पे लगता है, या पपीता है 2.5x2.5 मीटर पे लगाते हैं, तो इस चीज़ का वो अवश्य ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू वैरायटी, जो अंतरण है वो वैरायटी पे भी वेरी करती है। आप पूसा नन्हा ले आएंगे तो उसका अंतरण दूसरा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है। तो उसका ध्यान रख करके स्पेसिंग का जरूर ध्यान दें। उससे क्या होता है कि उनको जो है किसानों को एक तो कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, सिंचाई की सुविधा होती है और उसकी जुताई भी अच्छे से कर सकते हैं, निकाई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। इस बात का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, ये बागवानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाई सिर्फ फल उत्पादन के साथ साथ तरह तरह के भी अवसर देते हैं, खास करके इसमें एक रोजगार का भी एक अलग क्षेत्र विकसित होते जाना है। तो इसमें किस तरह से रोजगार मिल सकता है, खास करके जो व्यावसायिक रूप से जो बागवानी खेती की गई।
1: देखिए व्यावसायिक खेती में अगर आप रोजगार के अवसर ढूंढेंगे तो बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। हम सबसे पहले तो यही करें कि जब हम अपना खेत जो बागवानी लगाते हैं तो बागवानी में जैसे आम का लगाएंगे तो 10x10 मीटर पे जो अंतरण होता है उसमें इतना जगह होता है कि उसमें आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जब आपने सब्जी की खेती किया तो उससे क्या हुआ, एक हमें लेबर की ज़रूरत होगी तो स्थानीय स्तर पे वहाँ पे लेबर का समायोजन हो गया, पहली बात। फिर जब हमारी फसल तैयार हो गई, मान लीजिए हमारी बाग तैयार हो गई, बाग तैयार होने के बाद हम फल की तुड़ाई करेंगे, फल की तुड़ाई करके उसको ले जाएंगे मार्केट में, तो जो फल की तुड़ाई करने और मार्केट में ले जाने में है उसमें भी रोजगार

0: के अवसर सृजन होंगे। इसके साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के जो क्या फ्रूट्स होते हैं उनको विदेशों में भी निर्यात किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: विदेशों में उसका निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, तो इसके माध्यम से जो है कई सारे रोजगार के अवसर और चीजें हैं। रोजगार के अवसर
1: बताना।
0: सृजन करने से एक तरी और चीजें हैं कि आप उसके बाय प्रोडक्ट बनाएं। जैसे आपका जो है आंवला है, आंवले से आपने अचार बनाया, ठीक है,
1: बिल्कुल
0: अचार की पैकेजिंग हुई, उसको आपने जो है ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेजा, फिर आप आंवले से मुरब्बा बनाया, मुरब्बे से भी आप जो है वही प्रक्रिया अपनाएंगे और मार्केट में भेजेंगे, मार्केट में उससे जो है हमें धनार्जन होगा। ऐसे आम है तो हर चीज़ के जो है बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उसके माध्यम से जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध
1: अच्छा,
0: होते हैं।
1: बागवानी से जो पोषण सुरक्षा खास करके बात, एक का तात्पर्य बाटे कैसे का सुनिश्चित करते हैं पोषण सुरक्षा?
0: देखिए, बागवानी से पोषण सुरक्षा खास तौर से देखा जाए, जो आप अगर उस बाग के बारे में पूछ रहे हैं तो पोषण के बारे में तो यह है कि हम सबसे पहले उसको संतुलित उर्वरक दें, एक जो चाहे प्रति पौधा हो या प्रति एकड़ हो, तो उसको हम संतुलित दें। जब हम कभी भी बागवानी में बागवानी लगाने के बारे में सोचें या बागवानी लगाएं, तो उसमें किसान भाई इस बात का अवश्य ध्यान दें कि हम जो है गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का अवश्य प्रयोग करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बर्मी कंपोस्ट है, तो बर्मी कंपोस्ट का जो है अवश्य प्रयोग करें।
1: खास करके देखा फल उत्पादन, भाई चाहे अमरूद हो, आंवला हो, ऐसे जो जुड़ा उत्पाद बनाता है, तो
0: जी,
1: यह का विदेशी जो मुद्रा अर्जित करे के बाद संभावना, एक कितना एक का दायरा बढ़ सका था, किसान के कितना इसे लाभ हो सका?
0: देखिए, इसका दायरा तो असीमित है विदेशी मुद्रा का, क्योंकि देखा जाए इस समय जो है हमारा खास तौर से उत्तर प्रदेश, मुझे जो एक्चुअल डाटा याद आ रहा है, शायद सब्जी के प्रोडक्शन में नंबर एक हो गया है। तो जब हमारे यहाँ या और फ्रूट का भी ठीक ठाक जो है प्रोडक्शन हमारे यहाँ उत्पादन होता है, तो जब हम इन सब चीज़ों को विक्री करेंगे विदेशों में, तो अच्छी मात्रा में जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकता है। उससे हमारे देश का तो साख बढ़े ही बढ़ेगा, साथ में हमारे किसानों की जो माली हालत है उसमें भी सुधार होगा।
1: बिल्कुल, हम कहे किसान भाई देखा बागवानी फसलों जो व्यावसायिक खेती बाटे उसे कई के कई तरह से लाभ अर्जित किया जा सकता है। यह विषय में आप इतनी बढ़िया जानकारी दें, आप जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती विषय पर कोमल सिंह यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता, हृदय रोग के लक्षण और होम्योपैथिक निदान।
1: हृदय, जिसे हार्ट या दिल भी कहते हैं, मांसपेशी से बना हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का केंद्र है। हृदय हमारे सारे शरीर को रक्त पहुंचाने का काम करता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इसके साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में जो अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकालने में प्रभावी होता है। इसके लिए हृदय का रोग शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। हृदय रोग के सामान्य लक्षणों में सीने में दर्द, दबाव या बेचैनी का होना, सांस लेने में कठिनाई या घुटन महसूस होना, थकान, चक्कर आना, पसीना आना, मतली तथा शरीर के निचले हिस्सों में सूजन आना इत्यादि लक्षण शामिल होते हैं। हृदय रोग के संबंध में हमें जिन 5 विशेष लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें से पहला, जैसे किसी व्यक्ति को अपनी सामान्य दिनचर्या में या रात भर ठीक से सोने के बाद भी अधिक थकान महसूस हो। नंबर 2, हल्की गतिविधि जैसे सीढ़ी चढ़ना या रोजमर्रा

0: के हल्के काम के दौरान सांस फूलने लगे, या तीसरा, अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के गर्दन या जबड़े में दर्द होने लगे, चौथा, पैरों या टांगों में सूजन दिखाई पड़े, और पांचवा, अनियमित हृदय गति मिलने लगे। इन सभी लक्षणों के होने पर हृदय संबंधी रोग के विषय में ध्यान देना चाहिए। इसके लिए चिकित्सक से परामर्श तथा इससे संबंधित जांचें करा लेना उचित है, जिसको करा लेने पर समय पर रोग का पता चल सके और उसका उचित निदान हो सके। होम्योपैथिक में हृदय रोग में कुछ विशेष दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसे कुशल चिकित्सक के परामर्श से ही लेना उचित है। इसमें ब्राइटामियोर, इस दवा में तेज धड़कन होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, थोड़े से काम करने में धड़कन होने लगे, अनियमित हृदय गति मिले, पल्स बहुत मुश्किल से मिलने, इन सब लक्षणों पर ब्राइटामियोर का इस्तेमाल करना उचित है। एक अन्य दवा है ऑरममेट। ये हाई ब्लड प्रेशर में हृदय की धड़कन बढ़ने पर या अनियमित होने पर, पल्स की अनियमितता होने पर और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट यानी हृदय के आकार में बड़ा हो जाने पर इस्तेमाल की जाती है। एक और लाभदायक दवा है कैक्टस, जो एंजाइना पेन की एक प्रमुख दवा है, जिसमें दम घुटने का एहसास होता है, अत्यधिक पसीना के साथ तेज दर्द मरीज को महसूस होता है जो बाएं बांह में भी होता है, रक्तचाप नियंत्रण और हार्ट अटैक के लक्षणों के मैनेजमेंट के लिए कैक्टस दवा का प्रयोग किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण दवा है क्रेटेगस, जो एंजाइना के दर्द में उपयोग में लेने के अलावा हृदय से संबंधित लक्षणों की एक महत्वपूर्ण दवा है और जिसे हार्ट टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत हल्की शारीरिक गतिविधि से भी अगर किसी व्यक्ति की सांस फूलने लगे, हृदय क्षेत्र में और बाईं तरफ गर्दन में दर्द महसूस हो, ब्लड प्रेशर की अनियमितता मिले और हाई कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक और उपयोगी दवा है डिजिटलिस। ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है और हृदय गति को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे हार्ट फेलियर के उपचार का इस्तेमाल किया जाता है। ये रक्तचाप को नियमित करके सूजन को कम करने में भी उपयोगी होती है। एक और दवा है स्पाइजीलिया, जो एंजाइना के दर्द में जहाँ अनियमित हृदय गति मिले, हृदय क्षेत्र में चुभने वाला दर्द हो जो जरा से भी हिलने डुलने से बढ़ जाता हो, पल्स की अनियमितता हो और पल्स बहुत वीक या कमजोर किस्म की पल्स मिले, सांस लेने में दिक्कत हो, मरीज को दाहिनी ओर और सिर ऊंचा रखने पर राहत महसूस हो, तो ऐसे लक्षणों में स्पाइजीलिया का प्रयोग किया जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता, हृदय रोग के लक्षण और होम्योपैथिक निदान। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित अनोखे लाल का तबला वादन, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर सिद्धेश्वरी देवी का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर ज्योति आनंद के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे विनीता तिवारी।

विकास श्रीवास्तव और वत्सला मनोहर देवधर। 11 बजे सुनेगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। दिन में 11:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। 12:30 पर आप सुनेंगे हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। महिलाओं का कार्यक्रम पनघट दिन में 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सूर्य प्रकाश पटेल और साथी युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राम सिंह पटेल के गाए लोकगीत के अलावा श्यामा चरण पांडे से रामायण पाठ। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर दीप्ति विष्णु की वार्ता दुर्गे देवी नमोस्तुते। सबरस कार्यक्रम रात 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा ये आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीटिंग वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म से भजन। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आशा फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और नरेंद्र चंचल को संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत है आनंद बख्शी का।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन, लीजिए अब सुनिए जय मां वैष्णो देवी फिल्म का ये भजन। अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में संगीत दिया है अमर उत्पल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रभावित किसानों के खातों में भेजा 493 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि, कहा 8 से 10 दिन के भीतर मुआवजा दे रही है डबल इंजन सरकार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषित किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़, अत्यधिक बारिश, ओले पड़ने और चक्रवात से प्रभावित प्रदेश के 9,18,091 किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अंतरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने महज 8 से 10 दिन में किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया है।
1: अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण प्रदेश ने पिछले एक सप्ताह पूर्व काफी बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारी जगह जन और पशु की भी हानि हुई है। आज डबल इंजन की सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को उनकी फसल क्षति, मकान क्षति, पशुधन की क्षति का ये आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मिशन शक्ति के छठे चरण के अंतर्गत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में महोबा, इटावा, श्रावस्ती और शामली में महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा जागरूकता का संदेश देने के लिए महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में ही गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित शिक्षक सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में बेहतर कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।
1: शिक्षकों के हित के लिए राज्य कर्मचारियों

0: के लिए हित के लिए जो अच्छा होगा सरकार उस प्रकार का कदम उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाएगी। हम आपके साथ में हैं, आपके हितों का संरक्षण करेंगे। जैसे हमने एक मुश्त पैसा दिया,
1: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पूरे सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य

0: में स्वास्थ्य सचिव पूरे सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। आनंद कुमार, आकाश समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
3: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है, और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
2: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में आज सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। गोरखपुर के बुढ़िया माई मंदिर, तरकुलहा देवी और झारखंडी मंदिर, बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ तथा मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में देवी भक्तों की भारी भीड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में मां चंद्रघंटा से प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार की कामना की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: बोर्ड के सचिव की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं एक साथ 5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होंगी। परीक्षा में कुल 52 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें तकरीबन 27,50,000 छात्र और 24,50,000 छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ होकर 11:45 तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 5:15 तक चलेगी। परीक्षा के पहले दिन हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के हिंदी और प्रारंभिक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2026 की परीक्षा तिथि और आवंटित परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट।
5: आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पेट 2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में संपन्न होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा जनपद की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र अलग से वेबसाइट पर यथासमय जारी किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार।

0: लखनऊ।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा ने खरीदारों से निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही धनराशि जमा करने की अपील की है। प्राधिकरण ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित परियोजना के कलेक्शन अकाउंट का विवरण यूपी रेरा के आधिकारिक पोर्टल से अवश्य सत्यापित कर लें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रभावित किसानों के खातों में भेजा 493 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि, कहा 8 से 10 दिन के भीतर मुआवजा दे रही है डबल इंजन सरकार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषित किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIRF पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, आइए सुनते हैं अनोखे लाल का तबला वादन 3 ताल में।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था

0: 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर

0: रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
0: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
2: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैव्य शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भशु और न्यायाधीश के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसी ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार।

0: सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। तीन नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नव भारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. The meeting underscores the shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. We have a report.
3: Extending a warm welcome to all the participating home ministers and member state delegations, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC members to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism and organized crime. In a social media post, Mr. Shah said that through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC, is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It aims to promote economic and technical cooperation among countries bordering the Bay of Bengal and its neighborhood. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
2: In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammed Faizan, Mohammed Ishtiaq, Mohammed

0: transaction risk. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu appoints 6 governors. Rajendra Vishwanath Arlekar moved to Tamil Nadu and O.P. Mathur to Kerala. India to host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voters left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 6 गवर्नरों की तकरीरी की है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु जबकि ओपी माथुर को केरलम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। भारत आज नई दिल्ली में बीमस्टेक वज़राए दाखला की अब तक की पहली मीटिंग की मेजबानी करेगा। इंतखाबी कमीशन ने मुल्की रसाई मुहिम शुरू की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी अहल राय दहिंदा वोटर फेरी से बाहर न रह जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल बारूदी सुरंग के धमाके में लश्कर ए तैयबा के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। भारत में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 111 करोड़ से तजावुज कर गई है। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज ओडेंस के मकाम पर शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 6 रियासतों में गवर्नरों की तकरीरी की है। जनाब ओपी माथुर जो फिलहाल सिक्किम के गवर्नर हैं, केरलम के नए गवर्नर होंगे। वो केरलम के मौजूदा गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह लेंगे जिन्हें तमिलनाडु का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जनाब दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जनाब ब्रिजमोहन राम को ओडिशा का गवर्नर, डॉक्टर सुधा यादव को कर्नाटक जबकि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इन गवर्नरों की तकरीरी उन तारीखों से मानी जाएगी जब वो अपने मुतालिका दफातर का चार्ज संभालेंगे। भारत आज नई दिल्ली में बीमस्टेक के वज़राए दाखला की पहली मीटिंग की मेजबानी करेगा। ये मीटिंग दहशतगर्दी, मुनज्जम जराइम, नारकोटिक्स, इंतहा पसंदी, गैर कानूनी तिजारत और साइबर खतरात से निपटने के तई मुश्तरका अज़्म की अलामत है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बिम्स्टेक के वज़राए दाखला और रुकन मुल्कों के वफूद का खैर मकदम करते हुए वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा कि ये तारीखी मीटिंग दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम समेत सिक्योरिटी से मुतालिक मुश्तरका चैलेंजों से निपटने में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने की खातिर बिम्स्टेक रुकन ममालिक के मुश्तरका अज़्म को जाहिर करती है। जनाब शाह ने कहा कि फैसला कुन तालमेल के जरिए रुकन ममालिक बिम्स्टेक खित्ते को मजीद महफूज और मुस्तहकम बनाने के तई पुरअज़्म हैं। कसीर जहती तकनीकी और इक्तसादी ताउन के लिए खलीज बंगाल पहल। बिम्स्टेक एक इलाकाई ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका मकसद खलीज बंगाल के साहिली और उसके पड़ोसी ममालिक में इक्तसादी और तकनीकी ताउन को फरोग देना है। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
2: इंतखाबी कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं कि हर अहल शहरी का नाम वोटर फहरिस्त में शामिल हो। इस मकसद के तहत कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं और वोटरों की मदद के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: इंतखाबी कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासतों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान सीईओज और जिले ही चुनाव अफसरान डीईओज वोटरों की रजिस्ट्रेशन में मदद फराहम करने, जाती तफसीलात को दुरुस्त करने और वोटर फहरिस्तों में मौजूद गलतियों और तजादात को दूर करने के लिए सरगर्म इकदाम कर रहे हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन और मालूमात को दुरुस्त कराने की सहूलतों को मजीद आसान और काबिल रसाई बनाने के लिए पोलिंग बूथों पर खसूसी कैंप

0: लगाए जा रहे हैं। अहल शहरी मदद के लिए बूथ सतह के अफसरान, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान और जिले ही चुनाव अफसरान से भी राबता कर सकते हैं। इस मुहिम का मकसद वोटर के इंदराज, समात के अमल और इंतखाबी रिकॉर्ड में मौजूद गलतियों से मुतालिक शिकायात को दूर करना है। इन इकदामात के जरिए इंतखाबी कमीशन का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी अहल भारतीय शहरी वोटर फहरिस्त से बाहर न रहे और वोटरों को अपने मसाइल हल कराने के लिए बरवक्त मदद फराहम की जा सके। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबी हुक्काम ने इस बात का इरादा किया है कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद इंतखाबी अमल में सभी की शमूलियत को यकीनी बनाना है। इसके साथ साथ अहल शहरियों को ऐसी सहूलियात फराहम करना भी है जिनके जरिए वो वोटर फहरिस्त में अपने नामों का इंदराज करा सकें या रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी किस्म की गलती को दुरुस्त करा सकें। नई दिल्ली से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: इंतखाबी कमीशन ने महाराष्ट्र के वोटर फहरिस्तों के मुसवदे पर दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दी है। वोटर फहरिस्तों का मुसवदा 31 अगस्त को शाये किया गया था। नजरसानी शुदा तारीखों के मुताबिक दावों और एतराजात को निपटाने का अमल 10 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्तें मुकर्रा प्रोग्राम के मुताबिक 16 नवंबर को शाये की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल बारूदी सुरंग के धमाके में लश्कर ए तैयबा के एक आला कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ये दहशतगर्द पुंछ जिले में भारत में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त लश्कर ए तैयबा के आला कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के तौर पर की गई है। ये तमाम अफराद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के हाजरा तहसील के इलाके मंडला मदारपुर के रहने वाले थे। दहशतगर्दों का ये ग्रोह कल सुपहर कृष्ण घाटी सेक्टर के नंगे टेकरी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तभी उनके कदमों से एक बारूदी सुरंग फट गई। जोरदार धमाके में चारों दहशतगर्द मौके पर ही हलाक हो गए। धमाके की असल जगह सतवाल नेकी का इलाका बताई गई है। ये इलाका सरहद पार से भारत की हदूद में खुफिया तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वाले अनासिर के लिए रिवायती तौर पर दरअंदाजी का एक मारूफ रास्ता रहा है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दुर्गा स्कीम के लिए डिजिटल पोर्टल का आगाज किया। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम के पहले मरहले में मजमू तौर पर 1300 पिंक ई ऑटो फराहम किए जाएंगे। इनमें से 1170 को खवातीन के लिए जबकि 130 को मुखन्नस अफराद के लिए निशानजद किया गया है। इस मौके पर मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि ये स्कीम खवातीन और मुखन्नस अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का मालिक और ड्राइवर बनाने के साथ साथ उन्हें इज्जत के साथ रोजी रोटी कमाने का मौका भी फराहम करेगी। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम के लिए खवातीन दरख्वास्त कुनंदगान की उम्र 20 से 40 बरस के दरमियान होनी चाहिए और वो दिल्ली की रिहायशी हों। इसके अलावा उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का मजाज लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज होना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि स्कीम के लिए एक खसूसी डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है ताकि इसके शफाफ और मुनज्जम अंदाज में नफाज को यकीनी बनाया जा सके। नई दिल्ली में अमन कानून की सूरत हाल के पेश नजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि दिन के दौरान कौमी राजधानी दिल्ली की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का इम्कान है। पुलिस ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर दिल्ली के बाद अहम चौराहे और सड़कों पर ट्रैफिक का रुख तब्दील किया जा सकता है। मुतासिर होने वाली सड़कों और मकामात में मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक के गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग और कनाट प्लेस का आउटर सर्कल समेत दीगर इलाके शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो अपने सफर की मनसूबाबंदी पहले से करें और सफर के लिए इजाफी वक्त रखें। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के इंटरनेट सारिफिन की तादाद इस साल जून के आखिर में बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि मार्च 2026 के आखिर में यह तादाद तकरीबन 109 करोड़ 28 लाख थी। गुज़श्ता सेमाही में ये 96% का इजाफा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत की टेली मवासलाती इंजबाती अथॉरिटी ट्राई ने अपने भारतीय टेली मवासलाती कारकर्दगी के अशारिये पर मबनी रिपोर्ट में कहा है कुल इंटरनेट सार्फिन में से वायर्ड इंटरनेट सार्फिन की तादाद 4,77,00,000 थी, जबकि 106 करोड़ 64 लाख

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी श्रोताओं को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है मोबाइल के दौर में खोते हुए रिश्ते। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ये सुविचार जो हमें आपने भेजा है। विष्णु जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। जिसके सिर पर अंबे माँ का हाथ होता है, उसके जीवन में मुश्किलों का अंधेरा भी देर तक नहीं रहता। माँ की शक्ति में इतनी शक्ति होती है, माँ की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि टूटता हुआ विश्वास भी फिर से जुड़ जाता है। बस सच्चे मन से माँ को याद करो, क्योंकि माँ अंबे अपने भक्तों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। खानदान की पहचान महलों से नहीं होती, बातों में छिपे अदब से होती।

होती है। दौलत तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन तहजीब हर घर की विरासत नहीं होती। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छा होने का विश्वास कर बैठते हैं। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें इतना प्यारा और अच्छा सुविचार भेजा। श्रोताओं, बातें हैं अपने विषय पर। आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनों के साथ खुशियों के पल बिता रहे होंगे। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, एक ऐसा विषय जिसने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अपनों के बीच की दूरियों को भी बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे मोबाइल के दौर में खोते हुए रिश्तों की। श्रोताओं, एक समय था जब घर के सभी सदस्य शाम को एक साथ बैठते थे, दिन भर की बातें होती थी, हंसी मजाक, दादा दादी की कहानियां सुनते थे और बच्चे दिन भर के अनुभव साझा करते थे। लेकिन आज तस्वीर कुछ बदल सी गई है। घर में सभी लोग मौजूद हैं, मगर हर कोई अपने अपने मोबाइल की दुनिया में व्यस्त है। कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देख रहा है, तो कोई अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातचीत कर रहा है। पास बैठे इंसान के पास बात करने का तो आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आज के समय की एक बड़ी विडंबना है यह। श्रोताओं, मोबाइल फोन विज्ञान की अद्भुत देन है, लेकिन इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपनों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे उनका चेहरा देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि आजकल कोई भी दुर्घटना हो, लोग उसकी मदद करने से पहले उसका वीडियो बनाते हैं, उसको अपने साथियों से साझा करते हैं और यह दिखाते हैं कि आज यहाँ पर ये हो गया है। क्या ये सही है? पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि पहले हमें उसे वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहिए।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोबाइल के दौर में खोते हुए रिश्तों की। आज हमारे पास हज़ारों दोस्त हैं जो मोबाइल के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं। हम मोबाइल के ज़रिए बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोबाइल हमारी ज़रूरत है या धीरे धीरे हमारी आदत बनता जा रहा है। क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि मोबाइल पर संदेशों का जवाब देते देते हम अपनों की बातों को अनसुना कर देते हैं। किसी अपने का हाल पूछना, उसकी परेशानी सुनना, उसके साथ बैठकर चाय पीना या बिना किसी खास वजह के दो पल हंस लेना, ये वही छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को खूबसूरत बनाती हैं। आज हमारे पास तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा है, लेकिन क्या हमारे पास उन पलों को जीने के लिए पर्याप्त समय है? हम जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन कभी कभी सामने बैठकर दो प्यार भरे शब्द कहना भूल जाते हैं। हम दूसरों की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन घर में किसी अपने की उदासी को पहचान नहीं पाते। मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। मोबाइल की दुनिया परिवार के प्यार, दोस्तों के साथ और रिश्ते के भरोसे की जगह नहीं ले सकती। यदि समय रहते हम मोबाइल के इस्तेमाल की समय सीमा तय नहीं करते हैं तो हम तकनीक में के मामले में बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन इंसानियत और रिश्तों के मामले में तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन को कम करिए और अपनों के चेहरों पर मुस्कान देखना शुरू कीजिए। अपने रिश्तों को समय दीजिए।

श्रोताओं, हम मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर तुरंत चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन रिश्तों में प्यार और अपनापन कम होने लगे तो क्या हम उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं? याद रखिए, मोबाइल को चार्ज करना जितना ज़रूरी है उतना ही रिश्तों को प्यार, समय और संवाद करने की ज़रूरत है। आइए आज संकल्प लें कि मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे लेकिन अपनों की अनदेखी नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रीन की दुनिया खूबसूरत हो सकती है मगर अपनों के साथ बिताए पलों की जगह कोई स्क्रीन नहीं ले सकती।

तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है, कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की।

0: हम अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओ लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए केके और शान की आवाजों में फिल्म 10 का ये गीत। संगीत दिया है विशाल शेखर ने, रचना है पंछी जलोनवी की।

श्रोता, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए मोहब्बतें फिल्म का ये गीत। उद्धव मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित और सोनाली की आवाजों में संगीत। जतिन ललित का है, रचना है आनंद बख्शी की।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को

0: बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और संभल जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
1: कुशीनगर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पूरे आदर और श्रद्धा के साथ मनाई गई। सभी सरकारी व निजी संस्थाओं सहित विद्यालयों में झंडारोहण किया गया तथा महात्मा गांधी व शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पुलिस लाइन में महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुलिस कर्मियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तमकुही राज क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरण की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों के फसलों के नुकसान का आकलन कर सरकार मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें अलग से मुआवजा राशि दी जाएगी तथा पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास भी मुहैया कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि
2: प्रदेश के अंदर और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि की भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा है। सामान्य दिनों में नारायणी नदी में 3 लाख से लेकर के 4 लाख क्यूसिक वाटर जल यहां से प्रभावित होता था। बाढ़ के दिनों में अचानक यह 5.5 लाख क्यूसिक वाटर तक पहुंचा, जिसके कारण ईपी तटबंध का यहाँ पर कई गाँवों में पानी आया।
1: कुशीनगर जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल के जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने तथा प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा ज्योति यात्रा विकसित भारत संकल्प सभा का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला स्टेडियम रविन्द्र नगर धूस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, सभी विधायक गण सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार, जिला स्तरीय अधिकारीगण व भारी संख्या में छात्र छात्राएं व आम जन उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वावधान में बीते दिनों राज्य स्तरीय भूकंप रासायनिक एवं अग्नि सुरक्षा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। जिला आपदा विशेषज्ञ रवि प्रताप राय के समन्वय में आयोजित इस अभ्यास में आपदा के में विभिन्न विभागों के बीच त्वरित समन्वय, बचाव, राहत एवं उपचार की तैयारियों को परखा गया। कुशीनगर में एक साथ आयोजित इस मॉक एक्सरसाइज में जिले की 4 तहसीलों पडरौना, कसया, हाटा एवं कप्तानगंज को शामिल किया गया। टीवी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कुशीनगर जिले में व्यापक जन जागरूकता एवं सक्रिय टीवी खोज अभियान को गति देने के उद्देश्य से जोश टीम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जनपद स्तर पर किया गया, जिसे जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं, स्वयं सेवकों एवं अन्य प्रतिभागियों ने देखा और सुना। इस दौरान जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक गण व जिलाधिकारी संजय चौहान के उपस्थित में टीवी उन्मूलन के संकल्प को दोहराते हुए जनपद को टीवी मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी की शपथ भी ली गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि कुशीनगर जिले में जोश टीम के माध्यम से टीवी के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा संभावित टीवी मरीजों की समय से पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। टीम के सदस्य गांव-गांव

0: घर घर पहुंचकर लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव, जांच एवं निःशुल्क उपचार के संबंध में जानकारी देंगे। साथ ही संभावित टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें जांच एवं उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। अभियान के माध्यम से टीबी से संबंधित सामाजिक भ्रांतियों एवं भेदभाव को दूर करने के साथ ही टीबी मरीजों को नियमित रूप से दवा लेने और अपना उपचार निर्धारित अवधि तक पूरा करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय से जांच, नियमित उपचार और जन भागीदारी के माध्यम से टीबी पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
2: संभल जनपद में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार बैजू में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन में जब कभी उलझन, संदेह या चुनौती महसूस हो तो महापुरुषों के भजनों एवं गीतों को सुनकर उनके विचारों को अपनी वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और समस्याओं के समाधान की दिशा भी प्राप्त होती है। जिला अधिकारी ने गांधी जी के जंतर का उल्लेख करते हुए कहा,
3: जो सबसे ज्यादा गरीब आपने अपने जीवन में देखा उसको याद करिए और ये पूछिए कि जो आप निर्णय लेना जा रहे हैं उस निर्णय से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए, उसको लाभ होगा या हानि होगी। जब आप ये सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपका संदेह दूर हो रहा है, आपको दिशा मिल रही है, आपको क्लैरिटी आ रही है, स्पष्टता आ रही है कि आपको करना क्या है। ये भी एक प्रयोग है।
2: उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का प्रेरणादायी नारा दिया। युद्ध एवं खाद्यान्न संकट के समय उन्होंने देशवासियों से एक समय का भोजन त्यागने की अपील की ताकि देश को खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि हमें देश के महान विभूतियों के जीवन, संघर्ष एवं विचारों को अवश्य पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। संभल जनपद में धान एवं बाजरा खरीद को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार बैजू में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश एवं अपर जिलाधिकारी सत्यप्रीत सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा एजेंडा बिंदुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी धान केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं एवं पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। समस्त मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया कि मंडियों में किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मंडियों में साफ सफाई की व्यवस्था विशेष रूप से बेहतर रखी जाए तथा शौचालय पूर्ण रूप से संचालित रहे। साथ ही सभी मंडियों में दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएं जिससे किसान आसानी से संबंधित क्रय केंद्र तक पहुंच सके। सभी क्रय केंद्रों पर फ्लेक्सी एवं बैनर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मंडियों में धान को सुखाने के लिए पर्याप्त स्थान एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जनपद में कुल 52 धान क्रय केंद्र संचालित हैं जिनमें खाद्य विभाग के 17, पीसीएफ के 18, पीसीयू के 15 तथा भारतीय खाद्य निगम के 2 क्रय केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में खाद्य विभाग द्वारा बाजरा खरीद के 10 क्रय केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। जनपद में धान खरीद 15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित है तथा बाजरा की खरीद 31 दिसंबर 2026 तक की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों के नाम एवं भूमि संबंधी सत्यापन की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित कराई जाए। संभल जनपद के भैजुई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण वित्त न्यूट्रिशियल घटक योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव, मिलेट्स किसान मेला 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामका यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू तथा पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक गुन्नौर अजीत कुमार राजू यादव रहे। महोत्सव में कृषि विज्ञान केंद्र से आई कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योति स्वरूप ने किसानों को मोटे अनाजों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूक किया। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ बंसल ने विभागीय योजनाओं एवं किसान हित में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को कोल्ड स्टोर में 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किराए पर मिलने वाले अनुदान की भी जानकारी दी। संभल जनपद में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत डीआर रिसोर्ट भैजुई में जनपद स्तरीय आंगन मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामका यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू एवं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी पहुंची रहे। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा विभागीय स्टॉल लगाए गए तथा नवीन पोषाहार से तैयार विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी एवं रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उत्साह वर्धन किया।

0: किया गया। जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के अंतर्गत संचालित भारत की मिट्टी गतिविधि के तहत बच्चों द्वारा तैयार मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां एवं बर्तन आदि प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में चयनित बच्चों को आमंत्रित कर मिट्टी से विभिन्न कलाकृतियां बनवाई गयी तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हेल्दी बेबी प्रतियोगिता के अंतर्गत 8 बच्चों को उनकी माताओं के साथ आमंत्रित कर वजन एवं लंबाई का परीक्षण किया गया। इनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों की माताओं को जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही 4 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी आयोजित की गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कुशीनगर और संभल जिलों की खबरें। मीडियम वेव 401.1।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

0: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कुशीनगर और संभल जिलों की खबरें। मीडियम वेव 401.1।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: समीन आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का आदाब। समीन बज़्म आज है 13 अक्टूबर, यानी एक ऐसा दिन जो मखसूस है दुनिया भर में दुनियावी आफात और कुदरती आफात को कम करने के लिए, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क। और समीन ये मनाया जाता है लोगों को हौसला, उम्मीद और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। और इस साल 2026 का जो थीम है वो है रेजिलियंस स्टार्ट्स एट होम, यानी आफात या मुसीबत के मुकाबले में हिम्मत, हौसला और संभलने की शुरुआत हमारे घर से है। तो आइए आज इस खास मौके पर आपको समाप्त कराते हैं ओबी पर मबनी ये खसूसी प्रोग्राम, इंसान है कितना मजबूर। ये बरको बरा, ये तूफान, ये जलजलों का शोर, कुदरत का एक जलवा है, इंसान है कितना मजबूर। जी हाँ सामीन, कुदरती आफात कुदरत का एक अहम मजहर है जिसका ताल्लुक रोए जमी की हर शय से है। तारीख गवाह है कि जिंदगी और आजमाइश का रिश्ता चौली दामन की तरह है। इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत आसमान की वसतों को छू लिया, समुद्र के सीने को चाक कर दिया और जमी के राजों को जाना। लेकिन जब भी कोई नागहानी, आफात, चाहे वो जमीनी हो या आसमानी हो, जलजला हो, सैलाब हो, तूफान हो या कोई वबाई मर्ज ही क्यों ना हो, तो इंसान को कुदरत की ताकत का एहसास हो जाता है। एक ही लम्हे में हंसते हंसते शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं, सालों से बनी इमारतें खाक में मिल जाती हैं और हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। आफात ये पैगाम लेकर आती हैं कि इंसान ख्वाह कितनी ही तरक्की कर ले, कितनी ही बुलंदियों पर पहुंच जाए, फितरत के उसूलों और कवानीन के आगे वो बहुत कमजोर है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या आफात, परेशानियां, तबाही सिर्फ बर्बादी का नाम है या ये कुछ और भी है? जी नहीं, आफात दरअसल इंसानी जमीर को झंझोड़ने और उसका इम्तहान लेने आती हैं। जब ये आफात आती हैं तो रंगो नस्ल, मजहब, अमीर गरीब का फर्क नहीं देखती। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। जब कोई आफत या मुसीबत आती है तो हम देखते हैं कि लोग अपनी जान की परवाह के बगैर दूसरों की मदद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अजनबी अजनबी का सहारा बन जाता है और खून का रिश्ता ना होते हुए भी एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही वो जज्बा है जो इंसान को मिटने नहीं देता और तबाही के बाद उसे दोबारा खड़ा कर देता है। साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जफर रिजवी साहब के इस पर ख्यालात।
2: मैं डॉक्टर सैयद जफर सुल्तान रिजवी, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैंने मेंटल हेल्थ पे वर्क करा है। आज का हमारा जो मौजू है वो है नेचुरल डिज़ास्टर, उसके प्रिवेंशन और उसके कॉजेस और उसके बाद उससे होने वाले आफ्टर इफ़ेक्ट्स, यानी कि नफसियाती परेशानियाँ, उसके इम्प्लिकेशंस। हम जो बात कर सकते हैं वो ज़्यादातर आम तौर पे देखा गया है, इसको हम हैं जैसे एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हद तक हो रहा है, जिसकी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का खला में मिलना और उससे सांस की बीमारी होना, उससे फेफड़े की बीमारी होना, उससे दिल की और कैंसर, कार्सिनोजेनिक होना, उससे इम्यूनिटी डिसऑर्डर होना, ये सब आम वजहें हो सकती है। उसके बाद उससे जहनी परेशानियाँ होना, फिर नज़र की प्रॉब्लम होना, इंसोमिया होना, ये सब वजहें हो सकती हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए और इसको रोकने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फॉरेस्टेशन करें, प्लांटेशन करें, बहुत ज़्यादा तादाद में पेड़ों को लगाना, जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेज में, रोड्स पे पेड़ों का लगाना, अच्छे से मैनेज करना। इससे अच्छा रेनफॉल हो सकता है और इससे काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। व्हीकल्स इलेक्ट्रिक यूज़ हो सकते हैं जिससे भी एयर पोल्यूशन के चांसेस, सपोर्ट सिस्टम को होना जिसमें काउंसलिंग सर्विसेज हो सकती है, जिसके अंदर हम हेल्थ केयर सिस्टम हो सकता है, अपडेशन हो सकता है, अपग्रेडेशन हो सकता है उसका, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नफसियाती

अभी आप देशकान सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: परेशानियाँ जैसे नींद ना आना, इंसोमिया होना, या फिर भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, या फिर आँख में जलन होना, या फिर इसके बाद चिड़चिड़ाहट, मूड डिसऑर्डर्स होना, ये सब चीज़ें आम बात होती है। तो ये हमें एक और डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं जिसको हम ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो ट्रॉमा या किसी परेशानी के बाद होता है, जिसको हम PTSD बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये जानी और माली नुकसान के बाद फ़ौरन हो सकता है। ये जब होता है, जब हमें इमीडिएट ग्रिफ होता है और हम इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको हम सप्रेस करते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक इसको हम इसके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इससे हम एक तरह से हम PTSD के की तरफ चले जा सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसका एक काउंसिल सर्विस सेंटर होना चाहिए, इसमें हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। टू का कम यूज़ करना, या फिर एक हेल्थ केयर बेस्ड सिस्टम बनाना, या फिर कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम बनाना, इन सब चीज़ों को बना के, इन सब चीज़ों से हम इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट और मैनेज कर सकते हैं। शुक्रिया।
1: आज सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम माहौलियाती शऊर को बेदार करें। इंसान ने अपने फायदे के लिए कुदरती वसाइल को बर्बाद कर दिया, उनका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से न जाने कितनी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसका सबक सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरू करना होगा। जैसा कि इस बार का हमारा मौजू है, कुदरती आपात के असरात को कम करने के लिए रेजिलियंस स्टार्ट एट होम, यानी साबित कदमी और मदाफात का आगाज घर से होता है। जब भी कोई परेशानी दरवाजे पर दस्तक देती है, तो सबसे पहले इसका सामना हमें करना होता है, हमारे घर को करना होता है, खानदान को करना होता है, और हमारे पड़ोसी करते हैं। रियासती इमदाद या रेस्क्यू टीम्स तो बाद में आती हैं। इसका मतलब ये है कि हमें तैयारी घर से करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्या खूब कहा किसी ने कि तूफान से वही बचा जो वक्त पे संभल गया, खतरे की एक खबर से जो पहले ही निकल गया। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कह रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर बेबी तबस्सुम।
2: मैं प्रोफेसर तबस्सुम, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर। 13 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का बुनियादी मकसद लोगों में ये शऊर बेदार करना है कि कुदरती या इंसानी आफात का मुकाबला सिर्फ उस वक्त ना किया जाए जब मुसीबत सर पर आ खड़ी हो, बल्कि उसकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल को ही देखिए, वहाँ पर नेपाल ट्रेजिडी, सैकड़ों बेगुनाह जाने चली गईं और पूरे इलाके का ढांचा ही बिखर गया। जब कुदरत का मिजाज बिगड़ता है तो इंसान कितना बेबस नजर आता है। यहाँ एक अहम सवाल ये है कि आखिर मौसम का मिजाज इस कदर बिगड़ ही क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज, आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह। जब हम एक दरख्त लगाते हैं तो हम न सिर्फ हवा को साफ करते हैं और ज़मीन के कटने से बचाते हैं, बल्कि उन बेजमान परिंदों को भी आशियाना देते हैं जो हमारी इकोलॉजी की रीढ़ हैं। आइए आज के दिन हम सब मिलकर ये अहद करें, हम मैनेजमेंट मायूस होने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामेंगे, क्योंकि जो मुआशरा आफत से पहले तैयार होता है वही आफत के बाद मजबूती से खड़ा रह सकता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जापान है। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी, आज की तैयारी कल की हिफाजत है, आज का शऊर कल की जिंदगी बचा सकता है। शुक्रिया।
1: जरा सोचिए, ये खतरा जो हादसे बन जाते हैं, सबसे पहले इनसे मुतासिब वो चीजें होती हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द नजर आती हैं, जो हर वक्त हमारे साथ होती हैं, जैसे ये आबो हवा, पेड़ पौधे, परिंदे और जानवर। क्योंकि इस कुर्रे अर्ज पर जीने का हक सिर्फ इंसान का ही नहीं बल्कि इन बेजुबान चीजों का भी है, क्योंकि दुनिया की खूबसूरती इन्हीं चीजों से है। ये आफात जिनका ताल्लुक कुदरती या इंसानी सरगर्मियों से पैदा शुदा खतरात से है, कभी कभी ये आफात बड़े पैमाने पर जानो माली नुकसान का सबब भी बनती है। सर्दियां आते ही हवा खराब होने लगती है, गिरता दर्जे हरारत और रुकी हुई हवाएं जहरीले धुएं को जमीन के पास रोक देती हैं, जिससे मैदानी इलाकों में दम घुटने वाली धुंध छा जाती है। शहर हो या फिर गांव हो, सभी जगह एक सा माहौल बन जाता है। साइंसदानों और दानिश्वरों का ये कहना है कि किसी भी शहर की हवा सिर्फ उसके अपने इलाके की आलूदगी से नहीं होती, बल्कि इसका सबब आसपास के शहर और कस्बे भी बनते हैं। और इसका माहौल जब ही साफ होता है, जब आसपास के इलाके मिलकर कोशिश करते हैं। कोई एक शहर अकेली अपनी हवा साफ नहीं।

0: नहीं कर सकता। इसीलिए सब मिलकर काम करेंगे तो तभी कुछ मुमकिन है। जब काम सभी का है तो फिर हुकूमत की ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सभी की ये जिम्मेदारी है। हमारी हुकूमत ने इस आलूदगी को कम करने के लिए एक ऐसी मुहिम शुरू करी सन 2019 में जिसे NCAP कहा गया, जिसने हवा की आलूदगी को काफी हद तक कम किया। इस बारे में अनुमिता राय चौधरी, डायरेक्टर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कहती हैं, हवा किसी सूबे या शहर की सरहद को नहीं मानती। इसके लिए सूबों को एक मुश्तरका साझा परिषद बनाकर आलूदगी पर काबू लगाने के लिए काम करना होगा। इसके बिना हवा को साफ रखना मुश्किल होगा। वाकई आज सबसे बड़ा खास मुद्दा बनता जा रहा है ये फजाई आलूदगी, जिसकी वजह से हर शहर मुतासिर हो रही है और बीमारियां देखते ही देखते दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम हालात में इंसान को कुदरत ये एहसास दिलाती है कि इंसान है कितना मजबूर। हमें मुश्किल हालात में सब्र, हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। कुदरती आफात हमें अपनी कमजोरी और कुदरत की ताकत का एहसास दिलाती है और ये भी एहसास दिलाती है कि अगर हमने कुदरत के कवानीन को तोड़ा तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा। हमने क्या ये कभी सोचा, कभी गौर किया कि हमारी जमीन कितनी तप रही है, इसका दर्जा हरारत किस तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसका असरात कितने वक्त तक रहते हैं। वो चिड़ियां कहाँ चली गईं जो कभी हमारे आंगन में चहकती थी। वो बेजान परिंदे कहाँ गुम हो गए जो दरख्तों पर बसेरा करते थे। वो तारे कहाँ चले गए जो रात को टिमटिमाते थे। तरक्की की अंधी दौड़ में हमने कुदरत के बनाए निज़ाम को इस कदर बिगाड़ दिया कि जब हमारी नज़र पड़ती है तो हम बस सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। जब आज हमारी ज़िंदगी पर सवालिया निशान लगने लगा तो हमें फिक्र हुई। कारखानों से निकलता हुआ ये धुआं, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, अंधाधुंध कटते जंगलात और प्लास्टिक का बेहिसाब इस्तेमाल। क्योंकि जब हम इस कुदरती ढाल को बेरहमी से काटते हैं तो यकीन मानिए कि सिर्फ एक दरख्त नहीं कटता, एक लकड़ी नहीं गिरती बल्कि परिंदों के घोंसले उजड़ जाते हैं, जमीन की नमी खत्म हो जाती है, नस्लों का मुस्तकबिल बिगड़ जाता है। इस बारे में बता रहे हैं माई भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर माहे आलम साहब।
1: हिंदुस्तान में हिमालय से लेकर समुद्र तक, रेगिस्तान से लेकर घने जंगलात तक, हमारे मुल्क में कुदरत की मुख्तलिफ सूरतें मौजूद हैं। इसी तनाव की वजह से हमारे मुल्क में सैलाब, जलजले, लेकिन आफत उस वक्त तक नहीं होती जब नुकसान हो जाए, आफत का ख़तरा उससे बहुत पहले हो जाता है। इसलिए आज के दौर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का महफूम सिर्फ आफत के बाद इमदाद पहुंचाना नहीं है, असल मकसद ये है कि खतरे से को पहले पहचाना जाए, रिस्क को कम किया जाए, लोगों को पहले से तैयार किया जाए। भारत सरकार ने इसी मकसद के लिए एक वसी और मजबूत निज़ाम कायम किया है। मैं सभी सामईन को बताना चाहता हूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी NIDM इसी निज़ाम के अहम सुतून हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का मकसद भी यही है कि मुल्क में आफतों के ख़तरे को कम किया जाए, तैयारी को मजबूत बनाया जाए और आफत के वक्त एक मुनज़्ज़म और मुअस्सर रिस्पॉन्स दिया जा सके। एंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के ज़रिए रियासतों की इमदादी कराई जाती है और जब आफत की नौयत और शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि रियासत के वसाइल काफ़ी ना हो तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी NDRF के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत मज़ीद मदद फराहम करती है। लेकिन हिंदुस्तान ने अब एक और अहम कदम उठाया है कि सिर्फ आफत के बाद पैसा खर्च करने के बजाय आफत से पहले उसके असरात को कम करने के लिए स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड और नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड का निज़ाम कायम किया गया। इसी सोच में असल कामयाबी छुपी हुई है। आज की डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कम्युनिटी

0: पार्टिसिपेशन यानी आवामी शिरकत को भी बहुत अहमियत दी जा रही है, और अगर उन्हीं आस पड़ोस के लोगों को एक आपदा मित्र बना दिया जाए तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आपदा मित्र स्कीम सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि मुआशरे को खुद अपनी हिफाजत के काबिल बनाने की एक कोशिश है। इसी सिलसिले में नौजवानों तक पहुँचाने के लिए युवा आपदा मित्र स्कीम शुरू की गई है। इसके जरिए NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र यानी माई भारत जो अब कहलाया जाता है, भारत स्काउट एंड गाइड जैसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नौजवान वॉलंटियर्स को डिजास्टर प्रिपेयरनेस और रेस्पॉन्स की तरबियत दी जा रही है। ख्वातीन की शिरकत को भी बहुत मजबूत बनाने के लिए आपदा सखी जैसे इनिशिएटिव के जरिए कम्युनिटी लेवल पर ख्वातीन को भी आफतों के मुकाबले में तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत अहम पैगाम है। आफत के वक्त कोई सिर्फ मदद लेने वाला नहीं होता, हर बशऊर शख्स किसी और के लिए मदद का जरिया बन सकता है। NDMA का सचेत पोर्टल और मोबाइल ऐप लोगों तक जियो टारगेटेड और मल्टीपल जबान में डिजास्टर अलर्ट्स पहुंचाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी UPSDMA रियासत में डिजास्टर मैनेजमेंट की अहम इदाराती बुनियाद है। UPSDMA की तरफ से हीट वेव एक्शन प्लान भी तैयार किए गए हैं। लू और शदीद गर्मी के दौरान बचाव के लिए आवाम को एहतियाती तदबीर बताई जाती है और मुख्तलिफ महकमों को पहले से तैयार रहने की हिदायत दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल तक ट्रेनिंग और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की गई हैं। मौसम की निगरानी और बावक्त खबर के लिए उत्तर प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस तहसील लेवल पर और 2000 ऑटोमेटिक रेन गॉजेज ब्लॉक लेवल पर कायम किए गए हैं। इनके जरिए मौसम और बारिश के बारे में ज़्यादा मुकामी और बर वक्त मालूमात हासिल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा 444 डिजिटल साइनेज स्क्रीन भी मुख्तलिफ सतहों पर लगाई गई हैं जहाँ अवेयरनेस मटेरियल और अर्ली वार्निंग आम लोगों तक पहुँचाई जा सके। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफ़ी नहीं, इंसान की तैयारी सबसे अहम है, इसलिए ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स भी बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। उत्तर प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ने, फायर सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग, यूथ को डिजास्टर प्लानिंग और रिस्पॉन्स में शामिल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को शामिल करने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी NDMIS के जरिए डिजास्टर डैमेज और लॉसेज रिलीफ फंड और मिटिगेशन फंड्स की मॉनिटरिंग को ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आम शहरी सबका मुश्तरका जिम्मेदारी है। आफत को हमेशा रोका नहीं जा सकता लेकिन आफत को तबाही बनने से बहुत हद तक रोका जा सकता है। इसलिए इस 13 अक्टूबर को हम सिर्फ एक दिन ना मनाएं कि हम अपने घरों को महफूज बनाएंगे, अपने फैमिली को तैयार रखेंगे, अपने बच्चों को आफतों के वक्त सही रवैये की तालीम देंगे, हुकूमत की वार्निंग्स को संजीदगी से लेंगे और अफवाहों के बजाय तस्दीक शुदा मालूमात पर भरोसा करेंगे और अपने मुआशरे में ज़रूरत के वक्त एक दूसरे का साथ थामेंगे। क्योंकि डिज़ास्टर रेजिलियंस सिर्फ कॉन्क्रीट दीवारों से नहीं बनती, बनती है इल्म से, तैयारी से, इत्तेहाद से, एक दूसरे की मदद से और इंसानी हमदर्दी से। तो 13 अक्टूबर का असली पैगाम यही है कि रेजिलियंस स्टार्ट्स एट होम। आफत के मुकाबले पहली तैयारी हमारे घर से है। महफूज घर, प्रिपेयर्ड फैमिली, बशऊर मुआशरा और मजबूत इंसान, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा अहद है। आइए इस अहद को पुख्ता करें। शुक्रिया।
1: आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इन कुदरती चीज़ों की हिफाजत करें। कुदरती आफात से निपटने के लिए मजबूत मंसूबा बंदी तैयार करें। हम इन आफात पर सिर्फ गौर व फिक्र करते हैं लेकिन उस पर अमल करें। दूसरों की मदद के मुंतजर ना रहें बल्कि खुद से इसकी शुरुआत करें, अपने घर से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि तैयारी का आगाज घर से हो। अपने घर को महफूज बनाएं, खुद को बाखबर बनाएं और अपने घर को महफूज रखें। अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को और अपने मुल्क को मजबूत बनाएं, क्योंकि हकीकी मदद ऊपर से और खुद से शुरू होती है। कुदरत के एक झटके ने ये राज खोल दिया, इंसान कितना मजबूर है वक्त ने ये बता दिया। आलमी यौमे आफात पर अभी आप समात फरमा रहे थे ये खुसूसी प्रोग्राम इंसान है कितना मजबूर। तहरीर और तरतीब थी आयशा राहत की और पेशकश थी विक्रांत चौधरी की। सामिन, ये प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर मरकज पर तरतीब दिया गया और इसको नशर किया जा रहा था आकाशवाणी लखनऊ मरकज से। अब अपनी मेज़बान आयशा राहत को

0: دیجیے اجازت۔ हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं ज्योति आनंद। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये भजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो

0: ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया के आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, कभी कभी किसी की मुस्कुराहट दिल को छू जाती है, तो कभी किसी की मौजूदगी दिल को और भी हसीन बना देती है। जब दिल किसी को अपना मान लेता है तो उसका एहसास बहुत ही प्यारा लगता है। इसी प्यारे एहसास को अपनी आवाज़ और संगीत के साथ सजाता है यह खूबसूरत नगमा। सुनते हैं जन्नत फिल्म का ये गीत के की आवाज़ में। संगीत प्रीतम का है और रचना है सईद कादरी की।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसके मुस्कान दिल को छू जाती है, उनकी चंचल अदाएं महफिल में चार चांद लगा देती हैं। श्रोताओ, फिल्म संगीत में भी ऐसे ही गीत हैं जो अपनी मधुर धुन और दिलकश अंदाज में सुनने वाले वालों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं। तो आइए सुनते हैं बागे फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अभिजीत ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और रचना है समीर की।

कुछ रिश्ते दिल के बहुत पास होते हैं और ज़िंदगी के हर रंग को और भी खुशनुमा बना देते हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं मीठे रंगों में रंगते हुए सुनते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का यह प्यारा सा गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और रचना है इरशाद कामिल की।

लीजिए अब सुनिए आपका सरोर फिल्म का ये गीत। हिमेश रेशमिया की आवाज है और श्रेया घोषाल की भी। संगीत हिमेश रेशमिया का है, रचना है समीर की।

294 यानी खसार 26 किलोहर्ट्स, FM 100.3 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं विनीता तिवारी, विकास श्रीवास्तव और वत्सला मनोहर देवधर। पहले आपको सुनवाएंगे विनीता तिवारी के स्वर में देवी गीत।

श्रोता, अभी आपने सुना विनीता तिवारी के स्वर में लोकगीत, लीजिए अब सुनिए विकास श्रीवास्तव के स्वर में ये गीत, देवी गीत। माफ कीजिएगा, ये है पचरा विकास श्रीवास्तव के स्वर में।

अभी आप वत्सला मनोहर देवधर के स्वर में झूमर सुन रहे थे। लोकगीतों का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी एफ एम 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है।

और प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज का प्रोग्राम कुछ खास है क्योंकि आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिनकी आवाज़ में मोहब्बत भी है, शरारत भी, जिनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ अलग ही था और उसमें दिल टूटने की आहट भी थी। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस नायाब नगीने की जिसे दुनिया ने किशोर कुमार के नाम से जाना। 4 अगस्त 1929 को खांडवा में जन्मे किशोर दा का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। दोस्तों, किशोर दा की हमेशा से ये खास बात रही कि उन्होंने खुद को कभी किसी एक रंग में नहीं बांधा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस गाने से जिसे सुनने से ही आपके चेहरों पे आ जाएगी मुस्कुराहट और उनकी आवाज़ की शरारत भी आपको दिखाई दे जाएगी।

हाँ जी, तो ये तो रही मस्ती मजाक की बात। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो इंसान अपनी मस्ती मजाक से पूरी महफिल का मूड बदल सकता है, उसके अंदर का रोमांटिक हीरो कैसा होगा? इस सवाल का जवाब मिला 70 के दशक में आई फिल्म आराधना के गानों से, जिसने हिंदी सिनेमा के रोमांटिक अंदाज को एक नई पहचान दी। यहाँ एक तरफ था राजेश खन्ना का वो डैशिंग चार्म, तो दूसरी तरफ थी शर्माई सी शर्मिला टैगोर की खूबसूरती। और गानों को चार चांद तब लगे जब किशोर दा ने अपनी जादुई आवाज़ से हर किसी को अपने सपनों की रानी ढूंढने पर मजबूर कर दिया।

दोस्तों, किशोर दा ने भारतीय सिनेमा को बस रोमांस करना ही नहीं सिखाया, बल्कि ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा भी समझाया। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ ख्वाबों और मंजिलों का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां हर मोड़ पर कुछ नयापन छुपा है। और किशोर दा तो इस सफ़र को अपने ही अंदाज में जीना जानते थे। उनकी आवाज़ में बेफिक्री थी, जो कभी हमें हंसा देती थी तो कभी गहरी से गहरी बातें भी बड़ी आसानी से समझा देती थी। 1971 में आई फिल्म अंदाज का ये गीत भी कुछ ऐसा ही है। तो आइए किशोर दा की उसी बेफिक्र आवाज़ के साथ कुछ पल जिंदगी के राम करते हैं।

0: दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ उस बेफिक्र राह की तरह थी, जहाँ हर मोड़ पर एक अलग सी ही धुन थी और ये समय समय पर हमें याद भी दिलाती रहती थी कि यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। लेकिन जैसे ही आप किशोरदा के इस मस्ताने अंदाज में खोने लगते हैं, वो अचानक ही अपनी गायकी का गियर ही बदल देते हैं। वो गाने को बस अपनी आवाज़ ही नहीं देते थे, बल्कि उसमें एक पूरा किरदार बसा देते थे। इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल था 1978 में आई फिल्म डॉन का वो आइकॉनिक गाना, जिसमें अमिताभ जी के बनारसी अंदाज और किशोर जी की अल्हड़ आवाज़ ने यूपी बिहार की शान, पान और गंगा किनारे वाली मस्ती को अमर कर दिया। लेकिन उस मस्ती की जान कौन था? वो थे हमारे अपने इकलौते किशोरदा।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

इस जबरदस्त ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं आज के प्रोग्राम के अंतिम गाने की तरफ। दोस्तों, किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं है, वो आज भी हमारे हर मूड, हर अंदाज और हर उम्र के साथी हैं। जब तक ये कायनात है, संगीत की धड़कने हैं, तब तक किशोर दा अपनी अनगिनत आवाज़ों और अनमोल यादों के साथ हमारे दिलों में सांस लेते रहेंगे। फिल्म सत्ते पे सत्ता के इस सॉन्ग के बाद मुझे दीजिए इजाज़त।

इसी गीत के साथ हमारा आज का एक ही कलाकार का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, कृपया प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त बस एक सही मौके के इंतज़ार में निकाल देते हैं? सही वक्त आएगा तो घूमेंगे, वक्त मिलेगा तो खुद को समझेंगे, और जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तब सुकून से ज़िंदगी जियेंगे। लेकिन फिल्म ये जवानी है दीवानी में नैना को सफ़र पर ले जाने वाला बनी हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी ज़िंदगी को महसूस करने के लिए बस घर से निकलने भर की ही देरी होती है। तो दोस्तों, अपनी कल्पना की सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ रास्ते खूबसूरत हैं और मुसाफिर का भी दिल आज़ाद।

0: दोस्तों, एक और दिलचस्प बात है। कभी-कभी जब हम दुनिया देखने निकलते हैं तो रास्ते में खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन फिर जब हम दोबारा खुद से मिलते हैं तब समझ आता है कि खुश रहने के लिए हर बार किसी बड़ी अचीवमेंट, किसी परफेक्ट रिलेशनशिप या फिर किसी बड़े ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी सुबह की वो कड़क गर्मा गर्म चाय, कभी दोस्तों के साथ वो अल्हड़ हंसी, तो कभी-कभी बस अपनी पसंद का एक गाना, बस इतना ही काफ़ी होता है। फिल्म डियर जिंदगी में आलिया भट्ट का किरदार भी हमें यही याद दिलाता है कि उलझनों के बीच खुद को समझना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना और छोटी छोटी खुशियों को अपनाना कितना ज़रूरी है। तो आज थोड़ी देर के लिए कंप्लेंट्स को रखिए साइड और थोड़ा सा मुस्कुराइए और सुनिए फिल्म डियर जिंदगी का ये गाना।
1: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

तो ज़िंदगी से प्यार करना तो सीख लिया, लेकिन क्या बस खुश रहना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छोटा सा ड्रीमर छुपा होता है, जो कभी दुनिया घूमना चाहता है, कभी कुछ हट के पहचान बनाना चाहता है। तो किसी की तो इतनी सारी ख्वाहिशें होती हैं कि एक ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। चलिए सुनवाते हैं आपको फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम का एक ऐसा ही गाना जो इन्हीं अनगिनत ख्वाहिशों को आवाज़ देता है।

दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे बात करने के लिए किसी टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका बस पास होना ही अच्छा लगता है, उनकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, उनकी छोटी छोटी अदाएँ अच्छी लगती हैं, और कभी कभी तो बिना वजह बस उनका ख्याल भर आ जाना ही अच्छा लगता है। और प्यार की सबसे प्यारी बात भी तो शायद यही है कि हर बार इस एहसास को बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं चाहिए होते, कभी कभी बस इतना कह देना काफ़ी है कि बस तुम्हारा होना सबसे अच्छा लगता है, बस इतना काफ़ी है। तो पेश है फिल्म आरक्षण से ये प्यारा सा गीत।

अब प्रोग्राम के अंतिम गीत के साथ आइए जगाते हैं अपने अंदर छुपी उस बंदास पर्सनालिटी को, और आज खुद से ही कह दीजिए कि दुनिया क्या सोचेगी ये बाद में सोचेंगे, पहले इस मोमेंट को तो एंजॉय कर लूँ। ये गाना उन सभी के नाम जो अपनी खुशियों को किसी की परमिशन और वैलिडेशन का मोहताज नहीं बनाते। तो चलिए लाइए अपने चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान और एंजॉय करिए फिल्म दिल धड़कने दो से हमारा अगला गीत।

इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम विविध भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर

0: समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 6:50 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, जो हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा बस कुछ ही देर में, यानी 12:15, जिसमें राग मिश्र भैरवी में सिद्धेश्वरी देवी का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। साथ ही रात 10:30 शास्त्रीय

संगीत के कार्यक्रम में भी इन्हीं के स्वर में सुनिएगा राग ठुमरी खमाज में ख्याल गायन। साढ़े बारह बजे श्रोता अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश सुनेंगे, जिसमें प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दोपहर 1:15 पर ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट प्रस्तुत होगा, जिसमें महिलाओं और डिजिटल दुनिया विषय पर शक्ति सक्सेना की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ के साथ प्रतिमा मिश्रा के गाए लोक गीतों का भी लुत्फ उठाइएगा। 2:30 से प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हम सांध्यकालीन सभा का शुभारंभ करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से, जिसमें आज के कलाकार होंगे सूर्य प्रकाश पटेल व साथी। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा 5:15 पर, जिसपे न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली विषय पर महावीर प्रताप सिंह जी की अभिनव प्रज्ञ पांडे के साथ बातचीत सुनवाई जाएगी। वहीं शाम 6:30 ग्रामीण भाई अपने कार्यक्रम पंचायत घर में आज सुनेंगे रामचरण पांडे जी का रामायण पाठ। साथ ही राम सिंह पटेल व साथियों की आवाज में विकास गीत भी सुनवाया जाएगा। शाम 7:30 का समय होगा संस्कृत कार्यक्रम का, जिसमें डॉक्टर दीप्ति विष्णु की वार्ता सुनवाई जाएगी दुर्गे देवी नमोस्तुते विषय पर। 7:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज की कलाकार होंगी अर्चना दास, उनके स्वर में आप सुनेंगे गीत और भजन। रात 8:00 का समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। वहीं रात 8:30 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सबरस का।

गज़लों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए लोगों के संदर्भ में जानकारी। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है। राकेश कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद थाना कोखराज कौशाम्बी से संबंधित हैं। ये सूचित करते हैं कि करीना देवी जिनकी उम्र 20 वर्ष है, इकहरा बदन है, चेहरा गोल है, रंग सांवला है, लंबाई लगभग 5 फीट 2 इंच है। ये विसारा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी से 30 अगस्त से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी हमें इस मोबाइल नंबर पर दीजिए 9569213833। मोबाइल नंबर कृपया फिर से सुन लीजिए 9569721383। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सिद्धेश्वरी देवी की आवाज़ में राग मिश्र भैरवी का ख्याल गायन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से और मैं हूं मधु आपके फरमाइशी गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: सुरेंद्र यादव बांका जलालपुर।
0: जी सुरेंद्र जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: अवतार फिल्म का नाम है। जी माता जी को बुलाया है।
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे। शारदीय नवरात्र के अवसर पर सुरेंद्र जी ने ये गीत पसंद किया है और इस समय तो सभी जानते हैं कि देवी की आराधना हर तरफ हो रही है। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी शुभकामनाओं के साथ सुरेंद्र जी लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोकर, पोस्ट रामगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी
0: गुलाब जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हम फिल्म खानदान का गीत सुनना चाहते हैं, बड़ी देर भई नंदलाला।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना गुलाब जी ने पसंद किया है। जी आपको दोस्तों के नाम लेने हैं?
1: जी
0: बोलिए।
1: मुन्ना मिश्रा
0: जी,
1: अजय कुमार मिश्रा, सुशील कुमार मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा, शिवम सत्यम, टिंकू सोटू, निखिल और भगु चंटू जट्टू, राजन यादव।
0: तो आइए सुनवाते हैं आपको खानदान फिल्म का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: मैं हंडिया मगराव प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहा हूं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी।
1: फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई
0: जी,
1: और गाने के बोल रहे तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, लेकिन सुनने से पहले सुनाना चाहता हूँ थोड़ा सा। चाहत का मजा पास लूं
0: तो भाई, प्रेमचंद जी आपने जिस गीत की फरमाइश की है उसे हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: परम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: दीदी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और इस वक्त माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना स्तुति वंदना की जाती है नौ दिन तक, और शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी प्रयागराज को। और ये पावन पर माता रानी दुर्गा सबका कल्याण करे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है नवरात्रि
0: जी,
1: और इसमें बहुत ही अच्छा आरती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे माँ खप्पर वाली, ये गीत सुनना चाहता हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से।
0: तो आपने जिस देवी गीत की फरमाइश की है, नवरात्रि का अवसर भी है, तो आइए आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: सोनू जायसवाल खाई पर प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: काला पत्थर।
0: काला पत्थर फिल्म का,
1: अमिताभ बच्चन की फिल्म है।
0: हाँ जी, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, कई सारे लोगों ने इसमें काम किया था।
1: शशि कपूर वाला जो गीत है।
0: अच्छा अच्छा जी जी जरूर, हम आपको शशि कपूर के ऊपर फिल्माया हुआ काला पत्थर फिल्म का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं। सोनू जी, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म का नाम है अमर खाने के लिए तेरा ये देवता
0: जी। आपको ये देवी गीत पसंद है मौसम जी, तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मधु कुमार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर

0: 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत ने दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज 3रा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
3: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
2: The Prime Minister said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said the GDP growth stood at 7.8%

0: ये तीसरे दिन मां चंद्र घंटा के रूप की पूजा की। वजीर आला ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि डबल इंजन हुकूमत का हर इकदाम खवातीन की इज्जत इज्जत नफ्स बावकार जिंदगी के लिए वक्फ है। वजीर आला ने लिखा खवातीन की ताकत की शान शौकत वकार और अनमोल हिम्मत की अलामत के तौर पर मां चंद्र घंटा हमें ये पैगाम देती हैं कि खवातीन की हिफाजत इज्जत और खुद एतमादी एक मजबूत और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। इस जज्बे को अपनाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत गुड गवर्नेंस के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मेले 2026 के 62वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बराए दस्तकारी के जेरे इत्माम इस मेले में 100 से ज्यादा ममालिक के खरीदार शिरकत कर रहे हैं। इस मेले में हिंदुस्तान में बनी 23,000 दस्तकारी मसनूआत की नुमाइश की जाएगी। EPCH के सदर डॉक्टर नीरज खन्ना ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में IHGF दिल्ली आलमी खरीदारों और हिंदुस्तानी बरामदर कुंदगान के लिए एक काबिल एतमाद सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। इलेक्शन कमीशन ने हर अहल शहरी को वोटर लिस्ट में शामिल करने को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। इस मकसद के लिए तमाम रियासतों और मरकज की जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1,77,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर खसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2027 के लिए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात का सरकारी शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसिल सेक्रेटरी भगवती सिंह ने कहा कि दोनों क्लासों के इम्तिहानात 5 फरवरी 2027 से एक साथ शुरू होंगे और 24 फरवरी 2027 को खत्म होंगे। बोर्ड के इम्तिहानात 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। अवामी खिदमत के जरिए कौम की खिदमत करना उनके सफर का बुनियादी मंत्र रहा है। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के इस विजन के साथ हुकूमत 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ को हासिल करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। आज इस खसूसी सीरीज में हम इस बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं कि किस तरह FDI पॉलिसी के जरिए इस विजन को अमली जामा पहनाया गया है।
1: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
2: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
1: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खरीदारों से अपील की है कि वो अपने फंड सिर्फ नामजद कलेक्शन अकाउंट में जमा करें। अथॉरिटी ने खरीदारों को मशवरा दिया है कि कोई भी अदायगी करने से पहले मुतल्लिका प्रोजेक्ट के जमा करने वाले अकाउंट की तफसीलात की सरकारी पोर्टल पर तस्दीक करें। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट।

0: पनघट सुने बैठी सब बहनियरन के गुंजा सरस्वती के
1: राम राम, राम।
0: दिखा गुंजा हाँ। और बतावा का हाल चाल बा नवरात्र में। आज हम सोचे कि पनघट पे
1: हाँ।
0: शुरुआत हम माता गौरी की स्तुति से करी।
1: बिल्कुल दिखा इतनी नीक के स्तुति रही और मन एकदम प्रफुल्लित होएगा। और वैसे भी नौ दिन तो हर जगह जगमग रौनक खुशहाली चारों तरफ मतलब सुगंधित वातावरण माता के आवे पे हो गवा है। माता अपने जैसे कि अपने घर बेटियां आवत हैं वैसे हमार देवी मैया आए हैं अपने सबके घरे घरे पंडालन में और सबके घर मोहल्ले सब जगह विराजमान है। तो कितना सुखमय दिन है कि का बताई आज है माता चंद्रघंटा देवी के दिन जौने के तृतीय नवरात्र है तीसरा दिन है माता।
0: बिल्कुल
1: के?
0: सही कहा तू। और जैसे कि माता के नाम है चंद्रघंटा तो माँ के नाद स्वर बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल
0: तो देखा अलग अलग भोग से हाँ। अलग अलग रंग के पुष्पमाला से
1: सुशोभित होते हैं। हाँ। बिल्कुल अब देखा जैसे तू कहो कि चंद्र घंटा उनके नाम में ही गूंजाता है घंटा तो उनके जो पसंद है वो है ध्वनि उनका स्वर और जो वाद यंत्र है उन्हें के प्रतीक है चंद्रघंटा।
0: अधिका माँ एक सौम्य रूप में आज के दिन आए हैं तो हम सबे के माँ के शरण में जाए के चाहिए सब जाबे ही करत हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जानत हूँ गुंजा कबो कबो जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाता ना कि हम सबका विश्वास कमजोर पड़ जाता है हम सबका धैर्य जवाब दे देता है ना। तो मैं नवरात्र भी ऐसे कबो कबो लगत ना जैसे कि माता हमार बात की नहीं सुनती लेकिन हम कहब कि देखा जब माता हमार बात सुनती सब कुछ अच्छा अच्छा चलत ना तब तो सब माता के शरण में जाते हैं है ना। तो जब हमें कभी लगे कि अब समस्या है हमारे आगे अब मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अब हम एकदम जवाब देवे वाला ही तो ऐसे परिस्थिति में हमें माता के शरण नहीं छोड़े के चाहिए बल्कि पूरे विश्वास के साथ पूरे समर्पण के साथ ये भावना से कि माता जौनों कुछ करी हैं अच्छा करी हैं हो हमके ई समझे के चाहिए हाँ। हो सकत है हमसे भी कोनो गलती हुई हो है ना और हम ना ही जानत थी कि का ऊंच नीच का चूक हमसे हो गए है
1: देखा
0: तो अपनी माँ के पास जाके शरणागत भाव से हम सबे के प्रार्थना करे के चाहिए कि हे माँ हमारे पजरे न भाव है न शक्ति है न श्रद्धा है कुछ ना ही है हम एकदम खाली है लेकिन हम तोरे शरण में आई है अब हमें क्षमा करा और हमारे जीवन के नया रास्ता खोला विश्वास करे जैसे इस संसार में हमारी जो माँ होता जैसे ऊ सहारा बन के ढाल बन के खड़ी होता वैसे जगत जननी पराम्बा आदि शक्ति माँ भी हम सब बदे जरूर खड़ी हुई हैं समय लागत है थोड़ा सा धैर्य चाहिए।
1: बिल्कुल काहे कि देखा कौनो भी पूजा जप तप और भी जितना भी हम अगर पुण्य से आधारित कौनो भी कर्म करत है तो कबो निष्फल नहीं हो तो कबो न कबो जीवन में मिलत है वो फल हमका जरूर मिलत है। तो बहनी अरेन अपने सत्य कर्म सत्य वचन और अच्छे जो है सोच के साथ माता के नौ दिन खुशहाली दें और खुद भी खुशी रहें ये कामना करत ही। और देखा अपने पनघटे पे और इतनी बढ़िया बढ़िया बातचीत होती मुला हम सोचत रहे कि जानत हो जौन अपने बिमला चाची हैं
0: हाँ हाँ।
1: मोहल्लवा के उनका देखा कि वो बड़ा सोचत रहे नहीं हम कह बहनी कुले तो सब मार धूम मची है माता के जागरण हर चीज करावत है मुलाई चाची का है उदास उदास है
0: अच्छा।
1: तो हम कहे बिमला चाची का हुआ तो का है इतना निराश बैठी है तो कहे कि देखा गुइया का करी कुछ दिन से हमका बड़ा चिंता बाटे हमार गदेलवा जो है तो सहरे का रहा कमाए

0: मुला कुछ दिन से ना ही उके चिट्ठी पाती आवता है, ना ही फोन आवता है। मुला उके बड़ा याद सतावता है। अब कुला घर में सब त्योहार के तैयारी बाटे, मुला उके कोई खबर नहीं ना आवत, ये बड़े चिंता करता है। तो हम
1: हाँ
0: कहावा समझावा कि चाची देखा चिंता जीन करा, हो सकता है कोनो कार्य में व्यस्त है। मुला ऊ तोहका जरूर चिट्ठी पत्री से या खुद आवे के तोहका एक अचानक से खुशहाली दें कि हाँ माई आए गए ही, तो चिंता तनाव ना लेवे के चाहिए।
1: तो गुंजा एकदम सही उनका समझाऊ, और उनके कठिन परिस्थिति में देखा तू कितना बढ़िया से उनका बल दियो। तो हम ये सोचे थी कि काहे नहीं पनघटे पे भी हम सब यही विषय से संबंधित एक ठे बात कह लीन जाए, एक ठे
0: अच्छा
1: चर्चा कह लीन जाए,
0: हाँ
1: जौने के विषय हवे
0: हाँ
1: महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और तनाव।
0: अच्छा
1: देखा जैसे तू बताऊ ना, वैसे ऊ तो एक तू बात देख बतावत हो जौन तू सामने से देखू। ऐसे हम देखत ही जगह जगह सुने में आवत है कि हर जगह आज जौन महिला हई है ना, वो मानसिक रूप से भी
0: प्रताड़ित
1: परेशान
0: हैं।
1: हई है ना उनका। और सबसे बड़ी बात बाकी उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं देते। देखा
0: बिल्कुल
1: अगर शरीर से वो बीमार हो जाएं तो परिवार उन पे ध्यान देते हैं, उनका
0: बिल्कुल
1: दवाई करवावत है, इलाज करवावत है, लेकिन जब वो चलत है फिरत है घर के सब काम करत है तब कोई ई नहीं सोचत कि उदास काहे
0: काहे
1: रहत है,
0: बाटे।
1: काहे बोलत नहीं बाटे है ना, कौन चिंता एक सतावत बाटे जब सब कुछ ठीक लागत बाटे। तो देखा आज उही विषय पे मानसिक स्वास्थ्य विषय पे हम सब बात करब।
0: तो जाना तो बहनी, जैसे तू कहो कि चला था है फिर आता है कुछ बहनी घरे घरे गुदुआरे काम कराता है, तो करा तो है। मुला उनका अपने से ही सतर्क रहे पड़ी। देखा कुल घर के जितने भी हमारे सदस्य हैं सबके अपन अपन काम धंधा अपन अपन परेशानियां रहा थी। मुला वो रोजगार के बदले चले जाते, हमार बहनी अरे अंदर सोचत विचारत रहा थे। उनका अपने से सतर्क रहे पड़ी कि हमका कोने चीज के चिंता है, हम उनका अपनी चिंता के सोच के ना ओ पे और अपन गहन अध्ययन करके अपने स्वास्थ्य के खराब करी। मुला उ चिंता से उ परेशानी से डट के सामना करे ताकि जो आवे वाली समस्या है उसे भी निजात पाए सकी। और बहनी इस अच्छी सोच के साथ काम करें कि जो भी तुम्हार जोने भी समस्या है, वो चाहे धन के हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे गदेला के हो, वो खुद हम सबे बहनियाँ इनके समझे के पड़े कि हमका कैसे उका दूर करना है वो परेशानी के।
1: तो गुंजा देखा कि घर के बुजुर्ग घर के लड़का है ना आपन ध्यान और बाहरे के काम धाम। देखा महिला खाली आजकल का महिला जो नहीं घरे तक सीमित ना ही,
0: बिल्कुल
1: बाहरे के भी काम करत थी। तो देखा परिवार के सब लोगन की एक अपेक्षा होता है
0: हाँ
1: कि जोन घरे के महिला हैं वो ई करी हैं,
0: हाँ
1: बुजुर्गन बदे
0: हाँ
1: ई करी हैं, लड़कन बदे ई करी हैं, हमरे बदे ई करी हैं। तो एक तो परिवार की अपेक्षा इतनी ज्यादा हो जाता
0: बिल्कुल
1: जे पर वो सोचा था कि हम खरी उतरी
0: सही
1: केहू
0: कहो
1: के ऐसे ना लगे कि जो ना हम ठीक से जिम्मेदारी ना
0: हाँ एकदम
1: निभावत
0: सही
1: है।
0: कहो बनी हाँ
1: और घरे के बाहरे जहाँ वो काम करत है ना, चाहे उकर खेत बाड़ी हो
0: हाँ
1: चाहे उकर
0: रोजगार
1: दफ्तर
0: संबंधित
1: हो
0: हो
1: है ना,
0: हाँ
1: वहाँ पे भी ओके बहुत तनाव होता, कार्य के अधिकता रहता, तो
0: हाँ
1: ओके दोहरी जिम्मेदारी हो जाता है, एक तो घरे के
0: सही
1: एक
0: कहो
1: ठे बाहरे के। ऊपर से समय समय पे मौसम बदलत रहता, तो खान पान में और रहन सहन में बदलाव की जिम्मेदारी भी वही का होता
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और
1: तो
0: देखा
1: ये सब के गुंजा बहनी संहारत संहारत करत करत वो कहीं ना कहीं अपने आप के भुलाई जाता
0: बिल्कुल
1: है ना। और
0: हाँ
1: ओकर देखा जब वो ब्याह के आए जाते दूसरे घरे ना,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: सब सोचते कि बस यहीं के संभारे,
0: बिल्कुल
1: जबकि ओकरे दिमाग में कहीं ना कहीं ओकर मायका भी होता
0: बिल्कुल
1: है ना, और वहां के बारे में भी चिंतित रहत है।
0: और देखा
1: और
0: बहनी
1: ये भावना के गुंजा बहनी
0: हाँ
1: कोई समझत नहीं,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहो
1: यही सब चीज मिलके ओकरे दिमाग पे दबाव बनावत है। और यहाँ तक कि कभी कभी वो घर में जौन आर्थिक सहयोग करे चाहत है
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: कर नहीं पावत, तो एकर भी बोझ ओकरे दिमाग पर रहत है। तो कहे के मतलब कि तरह तरह के बात ओकरे दिमाग में चलत है और
0: जिससे
1: कबो
0: तनाव
1: कबो
0: होता
1: वो अपने मन के बात बोल नहीं पावत या परिवार के लोग ओके सुनते नहीं, या तो वो जितना काम करत है उतने काम के ओकर सम्मान नहीं देवा जात
0: बिल्कुल
1: है। तो देखा इतना जब वो मेहनत करत है तो ना सिर्फ ओकर सम्मान दे बल्कि ओकर ध्यान भी रखे,
0: हाँ
1: अगर ओकर चेहरा से या ओकरे तौर तरीका से ऐसन कबो लागत है कि वो
0: हाँ
1: जो न ठीक नहीं बा, तो ओके बैठे बात करें और ओके भी मौका दे कि वो अपने शौक के पूरा कर सके।
0: बिल्कुल
1: तो देखा महिला जोन बहनी रहे हैं वो अपन ध्यान दे, ज्यादा काम के अपने जिम्मेदारी में न ले, जितना कर सकत हूँ

0: तो नहीं करे, काम धीरे धीरे धीरे निपटावे, सब काम के एक बेर में निपटावे के और
1: भार ना लेवे के
0: चाहिए। हाँ, बिल्कुल।
1: और देखा और... सरस्वती, हम तो एक बात और कहे चाहते हैं बहनी हरिन से कि जोने बहनी संकोचवश अपने जो शारीरिक क्रिया है उनकर जो वो मानसिक तनाव ले लेते हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या फिर उनका जैसे कि रजोधर्म है या फिर जैसे उनका गर्भावस्था के दौरान जो शारीरिक बदलाव होते हैं
0: उसे कोई समझता ही नहीं। हाँ, वो अपने परेशानी के सोचा थी कि कोई समझे तो है नहीं, तो हम क्या करें बताएं।
1: और सबसे बड़ी बात बहनी कि जब हार्मोनल बदलाव होते शरीर में तो उस समय बहनी हरन एकदम असमंजस रह जाते हैं कि मुला हमार सभ्य के साथ होत का है, लेकिन ये घबरा या डरे की कोनो चीज ना है, शरीर के परिवर्तन है बहनी। अगर शरीर का विकास होता है या अगर कोनो तरह के दिक्कत होती है तो उनका डॉक्टर भैया बहनी हरन से जरूर खुल के बतावे अपने तकलीफ का और उनके सही समय पर इलाज करें, ना कि उनके तनाव ले से बहनी वो

0: के साथ होत का है, लेकिन ये घबरा या डरे की कौनो चीज ना है, शरीर के परिवर्तन है बहनी। अगर शरीर का विकास होता है या अगर कोनो तरह की दिक्कत होती है तो उनका डॉक्टर भैया बहनी हरे से जरूर खुल के बतावे अपने तकलीफ का और उनके सही समय पे इलाज करें, ना कि उनके तनाव ले से बहनी वो और ज्यादा रोग ग्रसित हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तू बहनी, देखा तनाव जब लेती ना हम सब ये सब चीजें के, जब जिम्मेदारी संभर नहीं पावत, कोई हम सब के समझत ना है, तो एकर असर जो है शरीर पे पड़ा था। तो अच्छा खान पीन खाए के रहा था ओके छोड़ दे थे, जितना हमके पानी पी के चाह था हम ओका
0: छोड़ दे थे।
1: तो देखा ये सब
0: शरीर पे तो पड़ा था,
1: बिल्कुल शरीर मस्तिष्क पर निर्भर है, मस्तिष्क शरीर पर निर्भर है, है ना। तो देखा सब आपस में
0: एक दूसरे से जुड़ा है,
1: एक चक्र की तरह बांटे। तो अपन ध्यान रखें, टहले जाएं, व्यायाम करें,
0: बिल्कुल,
1: ताकि जो मानसिक स्वास्थ्य तुहार बना रहे, कबो भी तू दूसरे पे आश्रित न रहा,
0: बिल्कुल। और देखा बेटी अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें, अगर चिंता करते हैं तो देखा ब्लड प्रेशर के कहीं ना कहीं जो ब्लड के जो
1: रक्तचाप
0: बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो इस सब के यही सब चिंता ही कारण होते है, एक ही तनाव ही प्रभाव पड़ता है, जो कि महिलाएं अधिकतर हृदय रोग के भी शिकार हो जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: ये सब स्थिति ना बने दे, हो सके तो समय पे अपना इलाज करावे और कोनो तरह के रोग प्रतिरोधक अगर क्षमता के अनुसार कार्य कराते हैं तो वो अच्छी बात है। मुला
1: देखा अपन जो ना ये समझ के रखें कि पहला सुख निरोगी काया,
0: बिल्कुल,
1: है ना, दूजा सुख घर में हो माया। हाँ। तो पहले निरोगी रहे के प्रयास करें,
0: कि सबसे बड़ा धन तो हमारा शरीर है मुला, अगर हम सब स्वस्थ ही तो सब कुछ कर सकते है।
1: बिल्कुल सही कहा तू, तो चला काहे ने इतनी बढ़िया बात करे के बाद में चला देवी माता के शरण में चला जाए और एक बढ़िया से तो का देवी गीत सुनवा थी प्रतिमा मिश्रा जी से।

0: सरस्वती देखा कितनी नेक के गौने ही रही मैया के।
1: बिल्कुल हम बताई गुंजा।
0: हाँ?
1: बिना या प्रेम बस भाई भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी। देखा बिल्कुल सही देवी गीत में कहा गया कि देखा प्रेम से विनय से अगर हम सबे माँ के शरण में जाती तो माँ भावुक हो जाती।
0: देखा माँ के खुला दरबार है, कुल मैया के सब बच्चे हैं और सबके प्रेम स्नेह से माँ के गोद की आशीष मिला थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तू, बस पुकारे के तेरे। हाँ। अगर देखा ना हम तोरे पजरे कुछ वस्तु ना आई बा अर्पण करे बदे। हाँ। तोरे पास पुष्पमाला ना आई बा, तोरे पजरे सुंदर सुंदर भोग अर्पित करे के ना आई बा, है ना, तो परेशान मत हो बिल्कुल भी। तू बस जाके बैठ तो जा और माँ के निहारा प्रेम से और उनकी आंखों में आंख डाल के माँ से कहा, बस पुकार दो उनके माँ।
0: बस माँ का हृदय कमल प्यारा है तुहार।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तू, और कैसे ना ही सुनी है माँ, आज ना ही सुनी है तो कल सुनी है, कल ना ही सुनी है तो परसों सुनी है। और फिर बताइए कि देखा एक विचार हमरे मन में प्रेषित करी है कि देखा का कमी हमरे अंदर रही, काहे माता हमसे रुष्ट है। तो देखा पुकारा तो सब कुछ धीरे धीरे पता चली, बस पुकार के तो देखा। तो चला।
0: हाँ?
1: अब इतना सुंदर देवी गीत सुने के बाद में तो का एक ठे वार्ता सुनाई दी थी शक्ति सक्सेना के, और विषय महिलाएं
0: और डिजिटल दुनिया मोबाइल रोजगार तक।
2: महिलाओं को सशक्त बनाने व उनके सपनों को एक नई दिशा देने का, वो सपने या आकांक्षाएं जो परिवार के दायित्वों को निभाते निभाते खो गई हैं, उन्हें फिर से जगाने का, एक नए सिरे से लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में डिजिटल तकनीकी ने महिलाओं की भरपूर मदद की है। आज जब हम अपना मोबाइल मनोरंजन के लिए उठाते हैं तो देखते ही देखते न जाने कितना समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मित्रों, तब एहसास होता है कि यही समय हमने किसी और काम में दिया होता तो शायद हमारा समय सार्थक हो जाता। मोबाइल जो दूर बैठे किसी अपने को बहुत करीब ले आता है, मोबाइल जिसमें हम मनोरंजन के तमाम साधन देखते हैं, स्क्रीन पर आंखें गड़ाए न जाने कब मिनट घंटों में तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन यही मोबाइल किसी महिला के लिए रोजगार का रास्ता भी बन सकता है, उसके किसी कौशल को वैश्विक मंच दे सकता है और उसकी प्रतिभा को पहचान भी दिला सकता है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई हो या परिवार के ऐसे बहुत से खर्चे जिनको पूरा करने के लिए किसी एक की कमाई पर्याप्त नहीं होती, ऐसे में महिलाएं घर बैठे ऑन स्क्रीन अपने उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स को कैटलॉग बना सकती हैं, तस्वीरों के साथ कीमतें और जानकारी साझा कर सकती हैं तथा ग्राहकों से बातचीत कर सकती हैं। बस ये छोटा सा प्रयास आपका एक बढ़िया ऑन स्क्रीन स्टार्टअप बन सकता है। आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके हाथ में स्वाद है अचार बनाना, पापड़ बरी बनाना, परिवार रिश्तेदार आस पड़ोस आपके हाथ के बनाए किसी खास व्यंजन की तारीफ करते नहीं थकते। सोचिए जब यही स्वाद लोगों की जबान तक पहुंचेगा तो आपको भी इसका फायदा होगा। शुरुआत अपने परिचितों और आसपास के ग्राहकों से की जा सकती है। धीरे धीरे यदि आपकी बनाई चीजें यानी वो अचार या पापड़ बरी

अगर लोगों को पसंद आने लगे, कहने का अर्थ ये है कि जो पारंपरिक स्वाद है वो लोगों को पसंद आने लगे तो ग्राहकों का भरोसा भी बनेगा और काम भी आगे बढ़ेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता, शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत भी अधिक करनी है और लागत भी लगानी है। कोई भी व्यवसाय हो, मेहनत और लागत दोनों ही जरूरी है। डिजिटल मार्केट में सफल होने के लिए तकनीकी की समझ के साथ एक बहुत जरूरी चीज ये है, ग्राहकों की जरूरतों और उनसे बातचीत करने की तरीके भी आपको आने चाहिए। जरा सोचिए, जो महिलाएं परिवार के खर्चे में अपना योगदान देती हैं, परिवार और समाज दोनों में उनका सम्मान बढ़ जाता है। ये कहना कि केवल शिक्षित महिलाएं कमा सकती हैं या पैसा कमाने के लिए उच्च शिक्षा का होना जरूरी है, ये एक मिथक भी तो है। आज के समय में बहुत सारे हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, नक्काशी, जरदोजी जैसे परंपरागत या किसी स्थानीय समुदाय से जुड़े हथकरघा या हस्तकलाएं, ये शिल्प भी ऑन स्क्रीन अच्छी कमाई कर रहे हैं। हुनर या कौशल मनुष्य की कलात्मक अभिव्यक्ति है। एक छोटा सा स्टूडियो तैयार करें, अपनी बनाई चीजों के विषय में बताने के लिए स्क्रिप्ट लिखें, परिवार के लोगों की मदद से वीडियो बनाएं और लगातार सोशल मीडिया पर डालते रहें। फिर धीरे से इन्हें ऑन स्क्रीन बेचने का नेटवर्क तैयार करें। लोगों को पसंद आ गया तो बढ़िया है, नहीं रील्स डालकर भी आप पैसा और नाम दोनों कमा सकते हैं। जरा सोचिए, जिस कला की सराहना पहले घर के लोग करते थे, वो कलाएं जो आज बहुत कम दिखाई देती हैं, वही कला अगर दूर बैठे ग्राहक तक पहुंच जाए तो महिलाओं का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। ऑन स्क्रीन व्यापार की एक सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं घर बैठे ही अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान दे सकती हैं, यानी घर का काम भी कर सकती हैं और अपने व्यवसाय को भी चला सकती हैं। घर से दूर महानगरों में निवास करने वाली जनता हमेशा घर जैसा स्वाद तलाशती है। दिन भर काम से थका हारा इंसान चाहता है कि उसे बिल्कुल वैसा स्वाद मिले जैसा घर में बनता है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिले। ऐसे में महिलाएं क्लाउड किचन नाम से अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। यहाँ ग्राहक आपके पास नहीं आएगा और आपको भी कहीं नहीं जाना, केवल आपके द्वारा बनाया हुआ शुद्ध भोजन ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए लोगों की थाली तक पहुंचेगा और उन्हें संतुष्ट करेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर खाना परोसने का चार्ज आपको मिले ना मिले, लेकिन बाहर खाना भेजने से एक निर्धारित मात्रा में आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाती है। आपको किचन का मेन्यू ऑनलाइन, बहुत से ऐप्स हैं जिस पर आप उसका मेन्यू भेज सकते हैं, या खुद की वेबसाइट पर आप मेन्यू डाल सकते हैं। ग्राहक ऐप पर मेन्यू चेक करके ऑर्डर देते हैं। आपका काम ऑर्डर तैयार करना और उसे सुरक्षित रूप से पैक करके भेजना है। आपके घर या किचन से भोजन पिकअप करते और ग्राहक तक पहुंचाते हैं। प्लेटफॉर्म अपना 18 से 30% तक काटकर बाकी पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है ना, ये बड़ी काम की बात। या केवल आप अपने लेवल पर यानी व्यक्तिगत रूप से भी ऑनलाइन मेनू बनाकर चुनिंदा लोगों को सोशल मीडिया पर जोड़कर ये व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इस व्यवसाय के लिए कुछ जरूरी बातें भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तय कीजिए कि आप सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं, आपके एरिया में या आप किस तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन बना रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं, तो आप घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन, जिसे आप होम स्टाइल लंच थाली कहें, वो आपके मेन्यू में शामिल हो सकता है। यदि आपके घर के आसपास डिग्री कॉलेज है, स्कूल है, तो सुबह का नाश्ता, शाम के नाश्ते का कोई प्रबंध या उस तरह की व्यवस्था आप अपने मेन्यू में कर सकते हैं। किसी भी तरह का स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं अपने घर के आसपास के माहौल को देखते हुए। देखिए, भोजन केवल पेट नहीं भरता है, बल्कि ये मनुष्य की तृप्ति और स्वास्थ्य से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। आज समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो शुद्ध देशी भोजन ही खाना चाहता है, भले ही लोग स्ट्रीट पर जाकर स्ट्रीट साइड फूड खाते हों या होटल में जाके तरह तरह के डिशेस खाना पसंद करते हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े सचेत हैं। ऐसे में आप कम लागत या कम निवेश में अपना क्लाउड किचन चला सकती हैं,
भारतीय रसोई में पकने वाले किसी खास व्यंजन।

0: ये एक बहुत बढ़िया बात है जो किसी विशेष अवसर या आयोजन, उत्सव या त्योहार से जुड़े होते हैं। इन्हें भी बनाकर इनका भी ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू कर सकती हैं। होली पर बनाए जाने वाली गुजिया और भी पकवान ये तो होटल में मिल जाते हैं, ये तो किसी रेस्टोरेंट में या किसी हलवाई के यहाँ मिल जाते हैं। बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन है ठेकुआ, जो छठ के महापर्व का महाप्रसाद ही नहीं है, आज के समय में ये एक बड़ा ब्रांड भी है। यानी लोकल से ग्लोबल तक का सफर है ये एक सफल व्यवसाय है। ये अधिक दिनों तक टिक सकता है, यानी आप इसे अगर डिब्बे में बंद करके ऑनलाइन बेचती हैं तो ये काफी दिनों तक टिक सकता है, जिससे देश विदेश में इसकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है और ऑनलाइन माध्यम से यह स्वाद सीधे उनके घर तक पहुंचता है। कम लागत और मुनाफा अधिक है। आपको दो उदाहरण देती हूँ। बिहार की दो महिलाएं हैं जो ठेकुआ बना करके उसकी ऑनलाइन डिलीवरी करके पैसा कमा रही हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और यही नहीं, ये शुद्ध स्वाद लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो ऑनलाइन डिलीवरी करके, ऑनलाइन बिजनेस करके आप अपने सपनों को साकार करें, जमीन से आसमान तक का सफर तय करें। हुनर आपके हाथ में है, बस इसे पहचानने की, तराशने की और इसके सीधे प्रयोग करने की जरूरत है, इनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा ढोलक बजाती हैं। ये छिपी हुई प्रतिभा भी आपको पहचान दिला सकती है। आप ऑनलाइन इन कलाओं को सिखा सकती हैं, जो आय का, कमाई का एक अच्छा स्रोत है। मार्केट में हमेशा से ही माना जाता है कि महिलाएं जब किसी उद्यम या व्यवसाय से जुड़ती हैं तो वे पूरी ईमानदारी और न्याय से, पूरे समर्पण के साथ अपना काम करती हैं। ग्राहक उन पर भरोसा भी करते हैं। कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर धन अर्जित कर सकती हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस में क्यों नहीं हो सकती? ऐसी महिलाएं जो घर बैठकर स्टेटस पर तस्वीर लगाकर ही कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो इससे सस्ता और सरल कमाई का जरिया और क्या होगा? ध्यान दीजिए कि महिला उद्यमियों के लिए ऑनलाइन व्यवसाय बेहतरीन तो है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनका जानना भी बहुत जरूरी है। अक्सर निजी जानकारी ऐसे में लीक हो जाती है, पेमेंट के मामले में फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अपने व्यापार के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए लोन लेने में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इंटरनेट पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस की जिम्मेदारी, ये दो जिम्मेदारियां एक साथ महिलाओं पर आती है तो बोझ बढ़ जाता है, थकान बढ़ जाती है। इसके लिए आप सुरक्षित पेमेंट या लेन देन करें, पर्सनल यूपीआई आईडी के बजाय आप अलग तरीकों से लेन देन करें, उनका प्रयोग करें। साथ ही अगर आप ऑन स्क्रीन व्यवसाय कर रहे हैं तो 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अकाउंट चालू कर दें या उसे बना लें, अपने अकाउंट को हैक होने से आप बचा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी और जरूरी नियमों के पालन के साथ ऑनलाइन बिजनेस महिलाओं को आत्मनिर्भर तो बनाता ही है, साथ ही आत्मविश्वास के साथ उन्हें जीना भी सिखाता है।
1: एकदम बढ़िया शक्ति सक्सेना बहनी वार्ता कहीं कि महिलाएं और डिजिटल दुनिया में मोबाइल से रोजगार तक।
2: और देखा आजकल के ये जरूरत है ना, तो देखा कितना सुरक्षित तरीके से आगे बढ़े के तरीका बताए ही है ना, 2FA दो तरीके से अपने आप को सुरक्षित करा जा सकते हैं, बिल्कुल है ना।
1: देखा आज के जो डिजिटल लाइफ है, कुल सभी चीजें ऑनलाइन पेमेंट पे होता है। जब बहनी हरिन के अपन कोनो तरह के ऑनलाइन या तो पे कर रहे हैं या फिर आप ले रही हैं, तो उनकी सतर्कता बहुत
2: जरूरी है। हाँ, देखा हम सब ऊपर रोजगार करे निकले है, हमें आगे बढ़े के बाद तो ओकरे बदे सुरक्षा के तमाम तरीका भी हैं। तो शक्ति सक्सेना बहन इतना बढ़िया से बताई, तो चला अब एक ठा लोकगीत सुना जाए प्रतिमा मिश्रा जी से।

0: गुंजा
1: हाँ
0: देखा कैसन बढ़िया कहरवा रहा ना।
1: मुला देखा बहनी,
0: हाँ
1: ऐसे बलम के बिगड़ी
0: हाँ
1: तो देखा नाराज और ऐसे बिगड़ा जीन
0: मिजाज।
1: काहे
0: हाँ
1: कि देखा
0: बिल्कुल
1: अगर हम सबे हंसी टिटोली के साथ और प्रेम पूर्वक साथे रहे सबे
0: हाँ
1: बहनी के बदे
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो जीवन कितना खुशहाल और मंगलमय बीत जाते।
0: बिल्कुल सही कहा तू। और थोड़ा बहुत खटपट हो तो जीवन का आनंद बढ़ जाता है।

0: बिल्कुल
1: बस ज्यादा खटपट ना हो पावे, है ना।
0: बिल्कुल काहे कि देखा जो हमारा रिश्ता है उके जो है तो लेबल जो बाग डोर है
1: हाँ,
0: बराबर रहे के
1: संतुलित
0: चाहिए।
1: बना के
0: बिल्कुल
1: रखे, है ना। तो चला यही बात पे चला तो कि रसोई घर में ले चला थी, और हमार सब बहनियरन जो थी कि आज गुंजा रसोई घर में का खवाई।
0: देखा सरस्वती, आज हम रसोई घर से लाए बटे पनीर मखाना करी।
1: अरे जल्दी बतावा,
0: तो
1: देरी ना
0: देखा
1: करा।
0: पनीर मखाना करी एक बेहद स्वादिष्ट और मसाला करी है जौने भारतीय लोगन का बेहद पसंद बाटे। ई व्यंजन के घरे में आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बहनी अरे सामग्री लिख लें, पनीर ले लें 200 ग्राम, पीस में काट लें चाकू चाहे जौने अपने हिसाब से, और मखाना 2 कटोरी ले लें, काजू 10 से 12 थोड़ा पानी में भिगोए के रखें, अदरक हरी मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ तेल या घी ले लें 2 से 3 बड़ा चम्मच, जीरा 1 छोटी चम्मच, धनिया 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच छोटा, नम पानी 1 से 2 गिलास, हाँ छोटा गिलास है, नमक स्वाद अनुसार, हरी धनिया बारीक कटा हुआ ले लें। अब भैया बहनी अरिन बनावट विधि जान लें। एक कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच घी गर्म कराएं, ओमा मखाने डालें और धीमी आंच पर कुरकुरे हो तक भून लें। अब कौनो बर्तन में निकाले, अब करी बनावे बदे मसाला बनावे, टमाटर हरी मिर्च अदरक और काजू डाल के महीन पीस लें। अब कढ़ाई में बचा हुआ घी गर्म करें, उमा जीरा मिला लें चलावें, अब उमा हल्दी पाउडर धनिया जोने मसाला बटे तैयार किए हैं सबे के टमाटर काजू के पीस के उमें सब मिलाएगी अच्छे से भून लें। हाँ तब तक मसाला, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़े लगे। अब करी बनाए बदे भुना हुआ मसाला 1 से 2 कप पानी थोड़ा से डाल दें उमें और थोड़ा सा उबले दें। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें। जब तक रस बन के तैयार हुए तब तक पनीर के टुकड़ा के भुना हुआ मसाला मिलाए के एक कढ़ाई में ढक के धीमी आंच में 3 से 4 मिनट तक पकाए लें, जैसे हमारा पनीर अच्छे तरह मखाना और पनीर में मिल जाए। और देखा हमारा पनीर मखाना करी बन के तैयार बटे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चला यही बात भी तो का एक ठीक बढ़िया सा गीत सुनाई देती ही फिल्म तराना से, चला सुन लीन जाए।
0: अब नहीं अरे भी सुन।

0: देखा बहनी कितनी नीक की गुनाई रे मुला देखा। अब एक संदेश सुने के
1: समय हो
0: समय
1: गया
0: होता है
1: तो सुन लीन जाए।
2: जहाँ बातन में होता अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली।

0: है और आपन सुख दुख बांटित है। ई हम सबके आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
1: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजे।
2: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
2: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन, देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही
5: इंतजार रहेगा।
6: गुंजा, अब बहनी हरन से विदा लेवे की समय हो गया है।
5: बिल्कुल।
6: तो बहनी हरन अपन ध्यान रखी और खूब बढ़िया से नवरात्र में पूजन पाठ करी और हम सबे फिर मिला जाए।
5: शुभ नवरात्रि।
6: राम राम
5: राम राम बहनी हरन।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम पनघट। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: greater opportunities for India.
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं. करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं. 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं. हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है. अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है. और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर.
0: The Prime Minister said, whenever the world needs a steady pillar, India extends its hand in support, recognizing its responsibility. Mr. Modi said today, India is home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world. Mr. Modi said, India is the mother of democracy and it has over 100 languages, around 80,000 registered newspapers and publications, and more than 1,000 satellite television channels. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
1: Power ke purpose par jo focus hai, yahi soch governance mein bhi zaruri hai. Sarkar ke paas authority hai, lekin iska uddesh ye nahi hona chahiye ki desh ka nagrik system par hi nirbhar ho jaye, balki iska maqsad ye hona chahiye ki desh ke nagrik saksham ho, sashakt ho. और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है. इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.
0: The Prime Minister said India's startup ecosystem has expanded significantly since 2014, with the number of startups crossing 2,50,000.
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते. अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई. करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं. 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है. यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं.
0: India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. Speaking on the occasion, Home Minister Amit Shah said, BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Reaffirming India's policy of zero tolerance towards terrorism, the Home Minister called for a collective commitment to ensure that no terrorist network finds space within the region for shelter, recruitment, training, financing or activities against neighboring countries.
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर
3: टेररिस्ट, देयर एसोसिएट्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स, फाइनेंशियल चैनल्स एंड क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, द टाइमली एक्सचेंज ऑफ वेरीफाइड एंड एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन ऑन दीज कैन स्ट्रेंथन आवर कलेक्टिव सिक्योरिटी. द मिसयूज ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांसफर, ट्रेड बेस्ड चैनल्स एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल नेटवर्क्स फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द फ्लो ऑफ इलिसिट प्रोसीड्स. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द एक्सचेंज of financial intelligence and investigative expertise can further help us.
2: हमें और मदद रूप हो सकता है.
0: UPI merchant discount rate MDR on select person to merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post-Diwali. It said the date will be notified separately. All person-to-person UPI transactions will remain free regardless of amount. The MDR charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. Around 96% of person-to-merchant UPI transactions will remain unaffected. Small merchants, including street vendors receiving up to 1 lakh rupees per month through UPI QR codes under the person-to-person merchant category, will continue to enjoy zero MDR on all transactions. Prime Minister Narendra Modi

0: has been shot dead in broad daylight, allegedly by a chemist in Mansa today, when he went to the chemist's shop to object to him for allegedly selling drugs. During the argument with the anti-drug activist and his companions, the chemist opened fire on Parvinder. He received 3 bullet shots. He was taken to the civil hospital where the doctors declared him dead. Leaders from various political parties, including the BJP, SAD and Congress, have condemned the incident and blamed the state government for deteriorating law and order situation. In Nepal, more than 100 foreign trekkers are stranded at various locations after flooding over the weekend swept away hiking trails and bridges in the country's central region. Authorities rescued 321 people, including 12 foreigners, today after a pre-dawn landslide in Gorkha district, about 100 kilometers west of Kathmandu. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands today, IMD said. Heavy rainfall and thunderstorm accompanied by hailstorm are also likely to prevail over Jammu and Kashmir and Ladakh till tomorrow. Indian opener Shefali Verma was named the ICC Women's Player of the Month winner for September 2026 following incredible title-winning outings in the Women's Asia Cup and the Asian Games with the bat and clutch contributions in high-stakes matches. On the other hand, Indian captain Shubman Gill was named ICC Men's Player of the Month for a record 5th time following his outstanding performance in the one-day international series against the West Indies. Denmark Open badminton tournament kicks off in Odense today. PV Sindhu will take on Yvonne Lee of Germany in the women's singles round of 32 match this evening, while Tanvi Sharma will be up against Natsuki Nadera of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty, addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today, and Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच ₹2,000 से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर, और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें

0: जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
0: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
0: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7

0: प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारेल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को

0: के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है।
1: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज सोडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। IMF ने 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए ICC महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से, और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा

उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियाँ। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं। डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। ये जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हों और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ, 19वीं शताब्दी में फॉस्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी। और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना? खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओं, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए

एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
2: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
4: जवानों,
5: जी सर,
4: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
5: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
4: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
6: जी सर।
4: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
6: जी जनाब।
4: हाथ गोला हाथ में लो।
6: ले लिया जनाब।
4: अब पिन रिलीज करो।
7: फेंको,
6: फेंको जनाब।
8: अरे ये क्या हुआ,
9: ये क्या हुआ?
8: अरे
9: बचो बचो बचो,
8: फट जाएगा, फट
9: जाएगा, सभी साथ पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ,
8: धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा
3: है। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ

0: गिरा
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
4: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
5: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर।
3: Well done, Addy. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
5: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल,
2: और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे

0: टैंक पर।
1: यस सर।
0: वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
0: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को है। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। मध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत।

धरती के गीत कार्यक्रम में आज श्रोतागण आनंद लेंगे सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों द्वारा गाए गए लोक गीतों का।

साथियों, ग्रामीण अंचल में गाए जाने वाले इस लाचारी गीत को सुनिए। आपने सुना, अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वर में यह दादरा।

कार्यक्रम के अंत में पेश है सूर्य प्रकाश और साथियों का ही यह कहरवा गीत, सुनिए और आनंद लीजिए।

0: 800-001-4242।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।

नमस्कार, आदाब और एक बेहद शानदार शाम का सलाम आप सभी को। दोस्तों, कभी गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिना किसी अनाउंसमेंट के ही बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं? जैसे किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो जाना, किसी अनजान जगह पर अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाई दे जाना, या फिर किसी बिल्कुल ऑर्डिनरी से दिन में कुछ ऐसा हो जाना जो उसे यादगार बना दे। वैसे दोस्तों, रेडियो की एक बात ना मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ ना किसी को तैयार होके आना पड़ता है, ना कोई फॉर्मल इनविटेशन चाहिए, बस एक फ्रीक्वेंसी पर मिलिए और बातचीत का सिलसिला शुरू। और इस मुलाकात की सबसे खूबसूरत बात यही है कि भले ही हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन विचारों, किस्सों और संगीतों के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी खुशनुमा अंदाज के साथ मैं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी प्रयागराज के आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। तो अपने रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि शाम अभी बाकी है और बात

का सिलसिला तो बस अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताइए, क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो रोज़मर्रा की प्लानिंग में मौसम की जो भूमिका है यानी रोल है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। घर से निकलने से पहले हम सिर्फ ये नहीं देखते कि रास्ते में ट्रैफिक कितना है, बल्कि ये भी चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, बारिश की कोई वार्निंग तो नहीं है, और बाहर निकलना कितना कंफर्टेबल रहेगा। अब मान लीजिए कि किसी शहर में लगातार तेज़ गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग अपने काम का टाइम जो है वो बदलने लगते हैं, और हमने देखा भी है कि स्कूल्स के टाइमिंग में बदलाव करना पड़ता है, और बाहर काम करने वाले लोगों को अपनी डेली रूटीन तक एडजस्ट करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर अगर अचानक बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो कहीं सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, कहीं दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, तो कहीं किसानों की तैयार फसल को नुकसान पहुँचाता है। यानी मौसम में होने वाला बदलाव केवल टेम्परेचर या रेनफॉल तक लिमिटेड नहीं रहता, उसका असर हमारी लाइफस्टाइल, हमारे इनकम और कई बार हमारे पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, अगर पर्यावरण की परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो क्या हम केवल उनके बदलने का इंतज़ार करते रहें, या फिर प्लानिंग, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने रहन सहन के तरीकों में भी कुछ बदलाव करें। और इसी सवाल से जुड़ा है आज की चर्चा का हमारा विषय, पर्यावरण अनुकूलन और इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इतना भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा आपको, पर्यावरण अनुकूलन यानी एनवायरमेंटल अडैप्टेशन है क्या। आसान शब्दों में कहें तो एनवायरमेंट में हो रहे या संभावित बदलावों के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल, काम करने के तरीकों, रिसोर्सेज के इस्तेमाल और व्यवस्थाओं में ऐसे चेंजेस करना जिनसे नुकसान को कम किया जा सके और हम बदलती परिस्थितियों का बेहतर सामना कर सकें, यही है अडैप्टेशन। अब एग्जाम्पल के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना क्लाइमेट चेंज के कारणों को सीमित करने का प्रयास है, जिसे मिटिगेशन कहते हैं। वहीं बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए शहरों में शेड, ड्रिंकिंग वाटर और हीट एक्शन प्लान्स की व्यवस्था करना अडैप्टेशन का एग्जाम्पल है। यानी एक तरफ हम प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी तरफ उसके मौजूदा और संभावित जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे निपटने की तैयारी भी करते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, किसान कम पानी वाले फसलों को अपनाकर, बेहतर इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, वेदर अपडेट्स के अनुसार बुआई और समय तय करके, या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से भी रिस्क कम करने का प्रयास कर सकते हैं, और ये एनवायरमेंटल अडैप्टेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। लेकिन अब ज़रा सोचिए, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। अगर किसान बदलते मौसम के अनुसार अपनी खेती को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाता है तो फसल खराब होने का रिस्क थोड़ा स्लाइटली कम हो जाता है। इससे उसकी इनकम को अधिक स्टेबल बनाने में मदद मिल सकती है। और दूसरी ओर अगर किसान के पास नई टेक्नोलॉजी, पानी या फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो अडैप्टेशन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। यही इसका सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। किसी बड़े और सुविधाजनक घर में रहने वाला व्यक्ति गर्मी से बचने के लिए कई ऑप्शंस अपना सकता है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डिलीवरी वर्कर या सड़क किनारे काम करने वाला व्यक्ति घंटों तेज धूप में काम करने के लिए मजबूर हो सकता है। अब सोचिए, अगर गर्मी के कारण उसकी वर्किंग आवर्स कम हो जाएं तो इसका सीधा असर उसकी इनकम पर पड़ सकता है। वहीं अत्यधिक गर्मी के कारण हेल्थ अपडेट्स बढ़ें तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी परिवार के बजट को प्रभावित कर सकते हैं। पूरा बजट हिल जाता है हमारा, कभी भी हम हॉस्पिटल जाएं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो हमको, तो तुरंत पूरा महीने का बजट हिल जाता है। यानी क्लाइमेट चेंज केवल एनवायरमेंट का मुद्दा नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा विषय भी है। इसलिए अडैप्टेशन में सोशल इक्विटी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग पहले से ही फाइनेंशियली वीक हैं उनके पास बदलती सिचुएशन से निपटने के रिसोर्सेज भी अक्सर लिमिटेड ही होते हैं। अब ज़रा सोचिए कि मान लीजिए किसी शहर में हर साल मानसून के दौरान वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, दुकानों में पानी भर जाता है, ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है और कई लोगों को अपने काम पर पहुँचने में परेशानी होती है। ऐसे में अगर शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर मैनेजमेंट, फ्लड वार्निंग और सुरक्षित अर्बन प्लानिंग की व्यवस्था की जाए तो नुकसान को कहीं ना कहीं थोड़ा कम किया जा सकता है। दरअसल प्रभावी अडैप्टेशन मेजर्स पर आज किया गया इन्वेस्टमेंट कई सिचुएशंस में फ्यूचर के इकोनॉमिक लॉसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि हर प्लान का बेनिफिट उसकी क्वालिटी, लोकल कंडीशंस और सही इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है, और इसका असर परिवारों, बच्चों की

एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर और शहरों में अवेलेबल रिसोर्सेज पर भी पड़ सकता है। यानी एनवायरमेंट में बदलाव कभी कभी सोशल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर माइग्रेशन केवल क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स टू बी प्रिसाइज, जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब आपसे एक और सवाल, क्या एनवायरमेंटल अडेप्टेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट या बड़ी इंस्टीट्यूशंस की है? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बड़े स्तर पर प्लानिंग, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी उतना ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, किसी गांव में वाटर कंजर्वेशन के लिए जो लोकल लोग हैं उन्होंने मिलकर काम किया, किसी शहर में हीट वेव के दौरान बुजुर्गों और ज़रूरतमंद की मदद भी करी हमने, या किसी क्षेत्र में आपदा से पहले लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, ये सारे प्रयास अडेप्टेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और यहाँ यूथ की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। केवल सोशल मीडिया पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस की पोस्ट शेयर कर देना इनफ नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिकल एक्शन भी जुड़ता है, जैसे पानी का जिम्मेदार इस्तेमाल, लोकल कंडीशंस के अनुसार पौधे और हरियाली का संरक्षण, रिसोर्सेज की बर्बादी कम करना और कम्युनिटी लेवल पर बेहतर प्लानिंग में सहयोग देना। इसके साथ बेहतर बिल्डिंग डिज़ाइन, वेंटिलेशन, शेड और अर्बन ग्रीन स्पेसेस जैसे उपायों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। यानी हमें ऐसे सोल्यूशन तलाशने होंगे जो एनवायरनमेंट के साथ साथ सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए भी उपयोगी हों। और दोस्तों, शायद यही आज की चर्चा का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एनवायरमेंटल अडेप्टेशन केवल बदलते मौसम के अनुसार खुद को एडजस्ट करने की बात नहीं है, ये इस बात से भी जुड़ा है कि हमारे किसान कितने सुरक्षित हैं, हमारे शहर कितने तैयार हैं, हमारे वर्कर्स किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और समाज के कमज़ोर वर्गों तक सुरक्षा और फैसिलिटीज़ कितनी पहुंच रही है। इसके लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ सही पॉलिसीज़ और कम्युनिटी सपोर्ट भी चाहिए। इसीलिए ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट को केवल पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों तक सीमित करके ना देखें। एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ, हमारी इकोनॉमी, हमारे एम्प्लॉयमेंट और हमारी आने वाली फ्यूचर की पीढ़ियों से भी जुड़ा हुआ है। और इसी विचार के साथ दोस्तों, आज की चर्चा यहीं पे ख़त्म होती है। पूरी चर्चा नहीं, केवल चर्चा सेगमेंट। अभी आपको भी पता है कि हमारे प्रोग्राम में है बातचीत सेगमेंट, प्रेरणापूर्ण सेगमेंट। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, बट वी प्रॉमिस यू इन्फोटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। सो आपके लिए ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में यानी कि कल के कार्यक्रम में हमने न्यूट्रिशन, जिम और हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात की थी। हमने समझने की कोशिश की थी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए केवल एक्सरसाइज करने सफिशिएंट नहीं है, बल्कि हमारी डाइट, डेली रूटीन और दूसरी हैबिट्स का बैलेंस होना भी ज़रूरी है। लेकिन फिटनेस से जुड़े कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन पर और डिटेल में बात करना ज़रूरी है। आखिर किसी व्यक्ति को अपने फिटनेस गोल्स तय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, और लंबे समय तक हेल्दी हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत का दूसरा भाग, न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली। न्यूट्रिशनिस्ट और व्यावसायिक जिम ट्रेनर महावीर प्रताप सिंह से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत।
4: बहुत ही अलहदा और बहुत ही जरूरी प्रोग्राम लेकर के हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है महावीर सिंह जी को, जो कि एक प्रोफेशनल कोच हैं, प्रोफेशनल जिमिंग कोच हैं और न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट भी हैं। महावीर सिंह जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: सभी को नमस्कार।
4: महावीर जी, ऐसा भी है क्या कि आप जितना ज्यादा प्रोटीन यूज करेंगे या प्रोटीन इंटेक करेंगे उतना ज्यादा मसल्स आपकी बनेंगी?
5: नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हमारे बॉडी को एक मिनिमम अमाउंट जो होता है, जैसे लड़कों को, अगर लड़का जिम कर रहा है, एक्सरसाइज करता है, उसका मसल बिल्डिंग गोल है, तो मैक्सिमम 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट वो ले सकता है। यही अगर लड़की है, जिम कर रही है, उसका मसल बिल्डिंग गोल है, तो वो 1 से 1.5 ग्राम तक मैक्सिमम ले सकती है, डिपेंड करता है।

0: इंडिविजुअल गोल पर। और अगर हम जिम नहीं करते हैं तो एक लड़का 1 kg बॉडी वेट पर ले सकता है सिंगल ग्राम ऑफ प्रोटीन, और अगर लड़की नहीं करती तो हाफ ग्राम, मतलब ऐसे 50 वेट है तो 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन वो डेली ले सकती हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या नहीं, तो सब तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके चीज़ों को समझेंगे। जनरली जो हेल्दी रेंज है वो यही है। अब जैसे कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर इंसान 120 kg का है तो क्या वो पर केजी बॉडी वेट पर लेगा, तब तब वहाँ पर थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर हम बॉडी मास के हिसाब से प्रोटीन को चूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं कि वो 120 kg का है तो वो 240 ग्राम प्रोटीन लेगा। अब डिपेंड करता है उसके बॉडी में बॉडी मास कितना है, मसल मास कितना है, तो वो मसल मास के वेट के हिसाब से फिर प्रोटीन को इंटेक करेगा। कम वेट का है देन ओके, ज़्यादा वेट का है तो फिर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पहली बात तो नहीं कर पाएगा अगर वो फैट है, और उतना ज़्यादा वो प्रोटीन को मेटाबलाइज नहीं कर पाएगा, या फिर उसका प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में उतना ज़्यादा नहीं होगा।
1: कोई भी जिम कर सकता है।
0: कोई भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि अगर उसे कहीं कोई इंजरी ना हो, उसके कोई बॉडी में प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें जिम करना है, मान ली एज वाइज अगर हम पूछे तो सभी कर सकते हैं। अगर कोई इंजरी है या कहीं फ्रैक्चर है या कोई लिगामेंट वगैरह टेयर है, तो वो प्रॉपर एक अच्छे कोच से गाइडेंस लेके उस हिसाब से मूवमेंट को कंसीडर करके स्टार्ट कर सकता है। बट जिम कोई भी कर सकता है, योगा कोई भी कर सकता है, मैटर नहीं करता। अगर किसी को स्टंट लगा है, पेसमेकर लगा है, तो वो कोच कंसीडर करेंगे उसकी एक्सरसाइजेज, उनकी इंटेंसिटी, उनकी एक्सरसाइज की वॉल्यूम, ताकि उससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।
1: अच्छा, बहुत सारे लोग जल्दी मसल्स बनाने के चक्कर में हैवी वेट वो जल्दी उठाने लगते हैं, ये ठीक है टेंडेंसी?
0: नहीं, ठीक तो नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में जाते हैं जिम में, पहला काम होता है हमें एक्सरसाइज के पोस्चर को समझना। सबसे पहला, अगर हम गलत पोस्चर में हैवी वेट उठाते हैं तो हमें वहाँ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हमें इंजरी ही होगी, साथ में प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती हैं, है ना, हमारे मसल्स टूट सकते हैं। ठीक है, अगर हम ओवर वेट उठा रहे हैं और उसको रिकवर नहीं कर रहे, तो मसल्स में हमारे माइक्रो टीयर तो डेली हो रहे हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे वो मैक्रो टीयर हो जाएंगे, रिकवरी हो नहीं रही है, तो हम बिल्ड करने की जगह लॉस करने लगेंगे।
1: रिकवरी मतलब प्रोटीन।
0: रिकवरी मतलब सारा कुछ। अगर हम रिकवरी का सेंस ये नहीं है कि हम जाएं जितना भी हैवी कर लें और प्रोटीन खा लें हमारी रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक ऑप्टिमल वॉल्यूम होती है किसी भी काम, किसी भी मशीन या किसी भी इंसान के काम करने की एक क्षमता होती है ना, वर्कआउट वॉल्यूम बोलते हैं, सर वॉल्यूम होती है किसी के, कि हम कितने वॉल्यूम में वर्कआउट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे डेली और हम ओवर ट्रेन करेंगे, तो हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फटीग कर लेंगे, जिससे हमारा बॉडी सही से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा ऑर्गन के साथ, और रिकवरी नहीं होगी हमारी।
1: अच्छा, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज क्या है? दो अलग अलग चीज़ें हैं।
0: बिल्कुल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, है ना, मसल्स को बहुत स्ट्रांग हो जाती है हमारी, और साथ में बिल्ड भी होती है ना, बॉडी का शेप भी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। और कार्डियो हमारा हार्ट को ट्रेन करता है, हमारे कार्डियो का मतलब कार्डिक मसल्स को हमारे स्ट्रांग करता है। साथ में वेट ट्रेनिंग में भी बेनिफिट है। अगर हम केवल वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो अवॉइड करते हैं, तो सही नहीं है, हमें दोनों को ही करना है। अब ऐसा नहीं कि पतला इंसान है तो कार्डियो नहीं कर सकता, मोटा इंसान है तो उसको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए, वेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, सबका एक बैलेंस होता है। हमें ट्रेनिंग पैटर्न पूरा डिज़ाइन करना होता है इंडिविजुअल गोल के अकॉर्डिंग, तो कार्डियो करना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनर हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट। कार्डियो करने से हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो ब्लड जब हमारे बॉडी में, हम ब्लड फ्लो इसलिए इतना बार बार बता रहे हैं, ब्लड फ्लो जब हमारी बॉडी में अच्छा होता है तो ब्लड अपने साथ कैरी करता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, जो जगह जगह हमें पहुंचाकर हमें रिकवर करता है, हमें हील करता है। तो इसलिए ये वेट ट्रेनिंग अलॉन्ग विद कार्डियो बेस्ट है।
1: बहुत सारे लोगों को जिम करके आते हैं, उसके बाद हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं। क्या तुरंत कुछ खाना या प्रोटीन लेना ये ज़रूरी है
0: नहीं,
1: एक्सरसाइज के
0: ऐसा
1: बाद?
0: आफ्टर वर्कआउट ऐसा नहीं है कि हम तुरंत प्रोटीन ले लें तभी हमारे बॉडी में हम प्रोटीन ले लें, हमें टोटल रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना है कि हमें डेली कितना रिकमेंडेड डोजेस, हमारी डेली हमें कितना प्रोटीन खाना है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ब्रेकफास्ट ज़्यादा खा लिया, लंच कम खा लिया या डिनर कम खा लिया, ये मैटर नहीं करता। डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइम बॉडी ज़्यादा एक्टिव है, किस टाइम हम ज़्यादा कैलोरी को बर्न कर लेते हैं। रात में इसीलिए हम कम खाते हैं क्योंकि हम रात में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, तो हम उतना बर्न नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं फूड को, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रात में हम अपना जो एक पिरामिड होता है ना, जैसे
1: जी जी जी
0: ब्रेकफास्ट
1: जी
0: हमारा शुड बी हैवी एंड देन

0: लंच मिड होना चाहिए और डिनर थोड़ा सा लाइट, तो उस पर ज़्यादा, और साथ में टाइमिंग भी देखिए क्या है ना, ज़्यादा कम अलग चीज़ हो गई। वो तो हम टोटल कैलोरी मान लीजिए, हमारी कैलोरी 2000 कैलोरी है या 2500 कैलोरी है, हम उसके हिसाब से मील को डिवाइड करके खा रहे हैं, बट हमारी न्यूट्रिएंट टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किस टाइम हम क्या खाना खा रहे हैं। अब जैसे रात में हम खाना खाते हैं, अगर हम बहुत हैवी रात में खाना खा लिए हैं तो वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, अगले दिन हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो हमें हो सकता है वोमिटिंग हो जाए या फिर बहुत डेजीनेस सा फील हो, हमारी वर्कआउट इम्पीड हो सकती है क्योंकि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है खाना। तो हमें टाइम देना होता है, हर मील को प्रॉपर गैप देना होता है, सही टाइम पे सही चीज़ खाना होता है ना।
1: महावीर जी, ज़रूरी क्या है? हमारे पास समय लगभग ख़त्म होने को है। शरीर को स्वस्थ रखना, फुर्तीला रखना, या फिर मसल बनाना, एक्सरसाइज करना। और एक जो स्वस्थ युवा है, उसकी एक आइडियल फिटनेस रूटीन कैसी हो सकती है और क्या हो सकती है?
0: देखिए ज़रूरी अगर बोला जाए तो ज़रूरी तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम अगर मसल्स बना रहे हैं, जैसे कोई अब ओल्ड एज है जो जिम नहीं करते हैं, आज वो वापस से जिम कर रहे हैं, रीज़न इस वजह से, अब जितने भी हैं बहुत ओल्ड एज हैं आजकल जिम ज्वाइन कर रहे हैं, रीज़न यही है ना कहीं डॉक्टर उनको सजेस्ट किया कि आपकी मसल लॉस हो रही है,
1: बिल्कुल।
0: आप एक्सरसाइज करिए अदरवाइज आप अपने ऑर्गन को सही से मूव नहीं कर पाएंगे। तो मसल्स बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम जैसे जिम जाते हैं। अब हमारे लिए सिर्फ मसल बनाना ज़रूरी नहीं है ना, हमें प्रॉपर डाइट भी करना है, हमें अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को खाना है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी कहने पे कुछ भी खा लें या किसी कहने पे कोई भी सप्लीमेंट ऐड कर लें, हमें थोड़ा सा अवेयर होना है कोई भी चीज़ को लेने से पहले। जैसे आपने बोला ना ब्रांडिंग कर दी, उस पर लेबल पे लिख दिया, नहीं, सबसे पहले हमें किसी भी फूड को अगर खाना है उसके लैब टेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे, प्रॉपर उस कंपनी को देखेंगे, उसका क्या क्या न्यूट्रिशन फैक्ट है सारी रिपोर्ट को देखने के बाद हम उस चीज़ को कंसल्ट करके डॉक्टर से फिर यूज़ करेंगे अगर हमें नीड है। तो मसल्स बनाना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा कार्डियो करना जिससे हमारा स्टैमिना इंप्रूव रहे। मतलब सिंपल में बोले तो हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टैमिना भी चाहिए, और ये तब होगा जब हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होगा और मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें बताई महावीर जी आपने, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे साथी, जो युवा साथी हैं, हम आपको हमारे माध्यम से सुन रहे होंगे, वो बिल्कुल इन बातों को सुनेंगे, गुनेंगे और उतारेंगे अपने जीवन में। अंत में, इतनी लंबी बातचीत के बीच में अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो, या आप हमारे माध्यम से जो हमारे साथी हैं, जो युवा हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहें या सुझाव देना चाहें।
0: हाँ, युवा को हम सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी 18+ हैं या फिर 25 के अंडर हैं, तो अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला काम है, आप जिम ज्वाइन करते ही सबसे पहले आप अपने ट्रेनिंग को समझेंगे, ना कि वहाँ जिम, जनरली आजकल हम बताते हैं सभी जिमों का ये हाल है, जिम ज्वाइन करते ही पहले सप्लीमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जाते ही मान वो प्रोटीन के डिब्बे दे देते हैं या फिर प्री वर्कआउट दे देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि डोजेस पता नहीं होती जनरली। कई कई लड़के, अभी हम वो कार्डिक अरेस्ट वाला हम आपको बताते हैं, जैसे कि किसी को मान लीजिए हार्ट, कोई मोटा है बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, ब्लॉकेज है, अब वो गया जिम में और उसको ट्रेनर ने एक बहुत ज़्यादा हैवी प्री वर्कआउट पिला दिया, देन उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। एक्सरसाइज जब उसने किया उसको हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, ब्लड फ्लो कर नहीं पाया, वहाँ
1: ओवर
0: ब्लॉकेज था,
1: ट्रेनिंग।
0: तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो गई। अब ये सारी चीज़ें और भी, अब जैसे कोई लड़का आया जिसका, अब ऐसा नहीं कि वो मोटे कोई हो सकता है, जिसका बैकग्राउंड पहले से वो वीक है, हो सकता है उसका हार्ट वीक हो, इमोशनली भी बहुत सारे लोग वीक होते हैं, अब फिजिकली भी वीक होते हैं, स्ट्रेंथ वाइज भी वीक होते हैं, अब उसको हमने बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग करा दी, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका हार्ट रेट नहीं संभाल पाया, तो उसे भी, तो हम इतना कहेंगे कि जब भी आप लोग जिम जाएँ पहले दिन से ही आप लोग ये ना सोचे कि आपको आज ही पहले दिन से ही बॉडी बना लेनी है या कुछ भी ऐसा सप्लीमेंट ना लें या कुछ भी हैवी ट्रेनिंग ना करें, एक प्रोसेस को फॉलो करें। अगर आपको नहीं समझ में आता, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे कोचेज हैं जो चीज़ों को सही वे में बताते हैं, आप उनको फॉलो करें और उनसे चीज़ों को सीखें, और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप कोई अच्छा कोच हायर करें, उस कोच के अंडर रहकर ट्रेनिंग करें जिससे आप सेफ रहेंगे।
1: एक्सरसाइज सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, एक लाइफ सेविंग स्किल भी है। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें, खासतौर से जिम, ट्रेनर का, एक अच्छे ट्रेनर का चुनाव करना, और आपके लायक ज़रूरी जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है, आपको ये जानना चाहिए। खैर, जैसा कि महावीर जी ने बताया कि केवल फिट दिखना ही ज़रूरी नहीं है, फिट रहना भी ज़रूरी है हर तरह से।

0: तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिम जाएं, जिम से बाहर करें, कहीं भी करें पर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कुछ समय अपने लिए आजकल निकालना। बहरहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये थी न्यूट्रिशनिस्ट और व्यवसायिक ट्रेनर महावीर प्रताप सिंह की अभिनव प्रज्ञ पांडे के साथ विशेष बातचीत। शीर्षक था न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली भाग दो। तो दोस्तों, ये बातचीत से हमको लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अपनी फिटनेस, न्यूट्रिशन और डेली लाइफस्टाइल को आपने और बेहतर तरीके से समझा होगा। आखिरकार अच्छी हेल्थ केवल कुछ दिनों की मेहनत का रिजल्ट नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की हैबिट्स और लंबे समय तक अपनाए गए बैलेंस्ड रूटीन से जुड़ी होती है। और दोस्तों, अब समय आ गया है म्यूजिकल ब्रेक का, तो आइए सुनते हैं ये एक और गीत। गीत के बाद लौटेंगे युवाणी के प्रेरणा पुंज में, जहां हम याद करेंगे एक ऐसे महान एनवायरमेंटलिस्ट को जिन्होंने नेचर की रक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था।

तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने प्रेरणापुंज सेगमेंट पे। तो ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि अगर किसी गांव के आसपास एक जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो सबसे पहले उसका असर किस पर पड़ेगा? शायद हमारे मन में सबसे पहले पेड़ों, पशु पक्षियों और वाइल्ड लाइफ का ख्याल आएगा। ऐसे जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान एनवायरमेंटलिस्ट थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। दोस्तों, आज के प्रेरणापुंज में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही महान एनवायरमेंटलिस्ट, गांधीवाद विचारक और समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा जी की। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को तत्कालीन टिहरी रियासत के मारोड़ा गांव में हुआ था, जो आज उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। हिमालय की गोद में पले बड़े बहुगुणा जी ने बचपन से ही पहाड़ों, जंगलों और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को करीब से देखा था। उन पर महात्मा गांधी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और ग्राम विकास के विचार आगे चलकर बहुगुणा जी के सोशल और एनवायरमेंट वर्क का महत्वपूर्ण आधार बने। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने वाली है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का सोशल वर्क केवल जंगलों को बचाने तक लिमिटेड नहीं था। वो समाज में मौजूद इनइक्वालिटी, रूरल लाइफ की प्रॉब्लम्स और सोशल रिफॉर्म से जुड़े मुद्दों पर भी एक्टिव रहे हैं। उन्होंने अस्पृश्यता के विरोध, ग्रामीण शिक्षा और शराबबंदी जैसे सोशल कैंपेन्स में भी योगदान दिया। उनकी पत्नी विमला बहुगुणा भी एक समर्पित गांधीवाद सोशल वर्कर थी। दोस्तों, दोनों ने मिलकर रूरल डेवलपमेंट और अवेयरनेस के लिए काम किया। दरअसल 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों की कॉमर्शियल कटिंग को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। वहाँ रहने वाले रूरल कम्युनिटीज़, विशेषकर महिलाएं, जंगलों पर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए निर्भर थीं। जंगलों से उन्हें चारा, ईंधन और दूसरे ज़रूरी रिसोर्सेज मिलते थे। इसके अलावा वन पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और वाटर सोर्सेज के कंजर्वेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जंगलों की अंधाधुंध कटाई केवल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं थी, ये ग्रामीण लोगों की लाइवलीहुड और उनकी सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी जुड़ा मुद्दा था। इसी बैकग्राउंड में 1973 के आसपास शिपको आंदोलन का उदय हुआ और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी इसका नॉन वायलेंट तरीका। जब पेड़ों को काटे जाने का खतरा होता तो ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते। और दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट का उल्लेख करना ज़रूरी है कि चिपको आंदोलन किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और अनेक स्थानीय ग्रामीण महिलाओं तथा एक्टिविस्ट ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेष रूप से 1974 में रैणी गांव की महिलाओं द्वारा जंगलों की रक्षा के लिए किया गया ये विरोध इस आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। चिपको आंदोलन से जुड़ा दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। दोस्तों, ज़रा इस विचार की गहराई पर गौर करिए। आमतौर पर हम किसी जंगल की इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे सामने टिम्बर, लकड़ी या दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन बहुगुणा जी ने सोच को एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने जंगलों के महत्व को केवल उनके कॉमर्शियल यूज से नहीं, बल्कि जीवन को बनाए रखने वाले नेचुरल सिस्टम से जोड़ के देखा। यही वजह थी कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी के बीच गहरे कनेक्शन पर वो जोर देते थे। उनका प्रसिद्ध विचार था कि इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, यानी एनवायरमेंटल बैलेंस ही स्थायी इकोनॉमी का आधार है। इस विचार का अर्थ ये था कि अगर हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार नुकसान पहुँचाते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सुंदरलाल

बहुगुणा जो थे दोस्तों, उन्होंने अपने विचारों को केवल स्पीचेस तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत प्रभावशाली तरीके से पद यात्रा की। 1981 से लेकर 1983 के बीच उन्होंने हिमालय क्षेत्रों में लगभग 5,000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा तय की, और इस पदयात्रा का उद्देश्य था फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हिमालय के संवेदनशील नेचुरल बैलेंस के प्रति जागरूकता बनाना। और इसी के साथ दोस्तों, बहुगुणा जी थे, इन्होंने प्रोजेक्ट्स कई संभावित इन्वायरमेंटल से जुड़े थे उन पे काम किया, उन पे गंभीरता से विचार भी किया। और जब बात होती है डेवलपमेंट की, तो इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स में जो हमारी आम जनता है उनको भी, लोकल जो पीपल हैं उनको भी डिस्प्लेसमेंट और काफ़ी अनकंफर्टेबलनेस या अनईजीनेस का सामना करना पड़ता है। उस समय उन्होंने उनकी उन दिक्कतों पर ध्यान दिया। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2009 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, 21 मई 1921 को 94 की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन दोस्तों उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के मूवमेंट्स तथा सोशल अवेयरनेस के प्रयासों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम के एंड पे हैं नियरली, और आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम के एंड में Q&A सेशन लेके आते हैं। कल का हमारा प्रश्न था, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे हुई थी, और इसका उत्तर है 1835 में काले मिनट से। और आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आप अपने उत्तर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com एंड आर फोन नंबर 8004926250, और इन्हीं पे आप अपने आज के प्रोग्राम के रिव्यूज़ भी भेज सकते हैं। तो आपको टाटा बाय बाय करने से पहले दोस्तों, सुना जाते हैं आपको इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन

समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस की निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स। और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी प्रयागराज में। प्रस्तुत है आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले एक नज़र आज के प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर में शाम 6:30 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम पंचायत घर का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा हमारे लखनऊ केंद्र से। इसका समय होगा शाम 7:20 पर। शाम 7:31 पर हम संस्कृत कार्यक्रम में वार्ता सुनेंगे दुर्गे देवी नमस्तुते। वार्ताकार होंगी डॉक्टर दीप्ति विष्णु। सुगम संगीत में हमारे श्रोतागण आनंद ले सकेंगे अर्चना दास द्वारा गाए गए गीत और भजन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात 8 बजे तथा रात्रि 10 बजे। रात 8:30 पर आप सुनिएगा गीतों का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 8:45 से हिंदी अंग्रेजी और उर्दू भाषा में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का आनंद ले सकेंगे आज रात 9:30 से। आज रात्रि 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत सिद्धेश्वरी देवी का ख्याल गायन प्रस्तुत किया जाएगा राग आसावरी में। रात 11:00 समाचारों का पुनः प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। यह थी झलक आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना नवरात्रि के विशेष अवसर पर नए कलेवर से प्रस्तुत होगा प्रातः 6:30 पर। हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण होगा कल प्रातः 6:35 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हम सर्दी जुकाम का आयुर्वेदिक उपचार विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर मोनिका अग्रवाल से। श्री रामचरितमानस के संगीतमय पाठ का प्रसारण होगा 7 से। फिल्मी भजनों का प्रसारण होगा प्रातः 7:10 पर। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का प्रसारण होगा कल 8:45 पर। प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा कल सुबह 7:30 पर, दोपहर 12:15 पर तथा रात्रि 10:30 पर, जिसमें हम विभिन्न कलाकारों का गायन पवादन प्रस्तुत करेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण होगा प्रातःकालीन सभा में 9:00, शाम 5:00 तथा सायंकालीन सभा में 8:00 तथा रात्रि 10:00। उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 9:30 पर होगा। सुगम संगीत कार्यक्रम सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे करिश्मा द्वारा गाए भजन तथा रात 8:30 में संगीता भरद्वाज के गीत और भजन। लोकगीत कार्यक्रम में मैहर दीन और साथियों के गीत सुनेंगे सुबह 10:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम गृहलक्ष्मी जाएगा दोपहर 1:15 पर। वॉइस ऑफ प्रयागराज में डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञा पांडे की

बातचीत सुनिएगा सुबह 10:05 पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार का प्रसारण होगा सुबह 11 बजे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 2:30 बजे। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम प्रसारित होगा युववाणी सायंकालीन सभा में शाम 5:15 पर। ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम पंचायत घर का प्रसारण समय होगा 6:30। नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के स्वर में सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। लीजिए अब प्रस्तुत है देशगान।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं
3: आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वैश्विक अनिश्चिततानां मध्येपि भारतस्य आर्थिक विकासः सुदृढतया प्रतिष्ठितः। अत्रावसरे नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग आर्थिक मञ्चम् असौ संबोधितवान्। दीपावलीपर्वणः अनन्तरं चयनितेषु P2M व्यवहारेषु MDR शुल्कं प्रवर्तिष्यते। लद्दाखः भारतस्य अभिन्नमङ्गम्, चीनस्य प्रत्याख्यानेन न परिवर्तते यथार्थमिति नवदिल्ल्याः दृढप्रतिपादनम्। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषेण 2000 27 वर्षाय भारतस्य आर्थिकविकासानुपातः 7% यावत् वर्धितः। अपि च अन्ताराष्ट्रियक्रिकेटसमित्या सितम्बरमासस्य मासोत्कृष्टक्रीडकपुरस्काराय शेफालीवर्मा, शुभमन् गिल् इत्येतौ चितौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् केन्द्रसर्वकारेण स्वकीये शासनदृष्टिकोणे कार्यसंस्कृतौ च सशक्तिकरणाय सामर्थ्यम् इति सिद्धान्तः अङ्गीकृतः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम इति आर्थिकमञ्चं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् जागतिक अनिश्चिततानां मध्येऽपि भारतस्य आर्थिकप्रगतिः अतीव दृढावस्थायाम् अग्रेसरा वर्तते। सः अवोचत् यत् भारतस्य विकासः सामूहिकप्रगतौ सहभाग्यवसरेषु च आधारितः अस्ति। प्रधानमन्त्री अग्रे अवदत् यत् सर्वकारस्य निरन्तरप्रयासः अस्ति यत् भारतस्य सामर्थ्यं विश्वस्य अन्यदेशेभ्यः अपि अवसराणां नूतनद्वाराणि उद्घाटयेत्। सः अवोचत् यत् सामर्थ्यं केवलम् अग्रे गमनस्य क्षमता नास्ति, अपि तु अन्येषां सशक्तीकरणस्य क्षमता वर्तते। श्रीमोदिना उक्तं यत् वर्तमाने युगे अङ्कीयशक्तिः अस्य रूपान्तरणस्य प्रमुखचालकरूपेण उदिता, या अस्य दृष्टिकोणस्य विस्तारे महतीं भूमिकां निर्वहति, यथ च भारते विपुलान् अवसरान् सृजति।
4: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
3: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् यदा कदापि विश्वस्मै स्थिरस्तम्भस्य आवश्यकता भवति तदा भारतं स्वदायित्वम् अनुभूय साहाय्यहस्तं प्रसारयति। श्रीमोदिना सूचितं यत् अद्य भारते 2000+ वैश्विकक्षमताकेन्द्राणि सन्ति, यानि सम्पूर्णविश्वस्य वाणिज्यिकसंस्थाभ्यः सेवाः प्रयच्छन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, यत्र शतसङ्ख्याधिकाः भाषाः, प्रायः 80,000 पञ्जीकृतानि समाचारपत्राणि प्रकाशनानि च, 1,000+ च उपग्रह दूरदर्शनवाहिन्यः सन्ति। श्रीमोदिना विशेषतया प्रतिपादितं यत् विगते दशके भारतेन 25 कोटिजनाः निर्धनरेखातः बहिः निष्कासिताः।
4: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर, यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है ग्रामीण भाइयों के पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर का, तो प्रस्तुत है पंचायत घर।

पंचों राम राम। पंच भाई का हाल चाल बा? देखा भैया, गांव गांव माई का दरबार सजा बा, भक्ति में, शक्ति में, आस्था में, विश्वास में। लड़का से लेके बच्चा तक, बूढ़ पुरनिया तक, सब डूबा है भैया भक्ति में। और देखा भारत की है संस्कृति आ, कितना बढ़िया सामाजिक ताना बाना बुना गाबा माई के दरबार में। न कोनो गरीब बा, न कोनो अमीर बा, न कोनो छोट बा, न कोनो बड़ा बा, न कोनो ऊपर बा, न कोनो नीचे बा। कितना बढ़िया बस श्रद्धा का ज्वार बा, और विश्व कल्याण के कामना के साथे साथे धर्म की जय का उद्घोष बा, विश्व का कल्याण बा। तो देखा पंचायती में ये सब बातचीत आज शुरू होए, उसी पहले भैया एक बात बता दी। देखा धान का कटवही शुरू हो गया है, और यह समय पराली जो निकली ओका कौनो भी कीमत पे जलाया ना, और अगर कौनो जलावा जात हो तो पहले नौका टोंक्या कि देखा भैया पराली का खेते में खाद बनवा जा सकत है। और वो खाद का इस्तेमाल न सिर्फ फसल को बढ़िया उत्पादन ले जाई, बल्कि खेते के माटी को बहुत मजबूत दे दी। तो देखा बातचीत तो होत रही, लेकिन अपने पंचायती की शुरुआत हमेशा से हो था कि लोग गीते के साथे। तो देवी माई का दिन बा, तो आवा सबसे पहले श्रीमती सुमन सिंह लोकगीत कवत, यहाँ देवी गीत आवा सुना जाए।

0: बड़ा बदलाव, चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: देवी गीत सुना गवा, और आज देखा मंगलवार का दिन, पूरा पंचायत में और हर किसान भाई इंतजार करा थे कि रामायण पाठ को होए, तो पंचायती में देखा श्यामाचरण पांडे भैया आए हैं और रामायण पाठ करे जाता है। अब अपन जो भाई सब जने मिलकर सुना जाए।

भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यंती

गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। गोस्वामी जी कहते हैं, अक्षरों, अनेक अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ज्ञान से परिपूर्ण शिव स्वरूप श्री गुरुदेव जी की मैं वंदना करता हूँ। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाए ब्रह्म भवन

गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम सहित स्तुति करके सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दीन दयालु भगवान, हे करुणाधान, हे स्वामी, भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भरत और मेरे बीच कोई अंतर नहीं है। श्री भरत जी प्रभु के चरण पकड़ करके कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे स्वप्न में भी कुछ संदेह, दुख या मोह नहीं है, यह केवल आप ही की कृपा है।

श्रीमुख तुम पुनि की न बड़ाई तिन्ह पर प्रभु।

विषय अलम्पट शील गुणाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमद।

ये सब लक्षण बसहि जासूर जानहु तात संत संतन फुर समदम नियम नीति नहीं डोलही पर।

0: श्री भरत जी कहते हैं, हे शरणागत पालक, हे प्रभो, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, संत और असंत दोनों के भेद अलग अलग समझा कर कहिए। श्री राम जी कहते हैं, हे भाई सुनो, संतों के लक्षण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की ऐसी करनी है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी की होती है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन उसे अपना गुण देकर के सुगंधित कर देता है। इसी से चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में गर्म करके घन से पीटा जाता है, उसे यह दंड प्राप्त होता है। संतों का चित्त कोमल होता है। हे भाई, वे दीनों पर हमेशा दया करते हैं, वे शांत, वैराग्य, नम्रता और शीतलता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, यह संत की परिभाषा है। हे भाई भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं।
1: हाँ भैया, देखा आप सब सुना श्यामाचरण पांडे का रामायण पाठ। अब देखा चला चली के बेला हो गया है भैया, तो पंचों राम राम।

0: यह था कार्यक्रम पंचायत घर। अब आप सुनिए कि
1: इस
0: कार्यक्रम
1: कार्यक्रम
0: किसान
1: के
0: वाणी
1: प्रायोजक हैं
0: हमारे लखनऊ
1: कृषि
0: केंद्र
1: एवं
0: से।
1: किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: सरला बहनी,
2: हाँ रियाज भैया,
1: देखो जब बात आवत है खेती पाती के, तो खेती पाती में कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि वहाँ जो है पैसा की जरूरत जब पड़ता है, अपने हाथ में जब पैसा नहीं रहा था तो ये लागत है कि कहाँ से पैसा आवा है, कैसे अपन काम चले।
2: बिल्कुल सही कहे भैया। और खेती पाती में भैया कबू खेत के जुताई करे का है, कबू बुआई करे का है, बीज खरीदे का है, तो सिंचाई खातिर इन सब की खातिर अगर पैसा नहीं मिलता भैया तो खेती अपन पिछड़ जाते हैं।
1: मोला भी हमें जो है चिंता करे की जरूरत नहीं रहते हम पंचन का, कहे से सरकार तमाम तरीके की योजना चलावा करत है कि हम किसान पंचन का कोनो परेशानी का सामना न करे पड़े। वही में से एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
2: यह योजना की मदद से पात्र किसान जो है बैंक से खेती की जरूरत के हिसाब से कर्जा ले सकत है, और ऐसे बीज खाद और कीटनाशक होएगा और खेती के अन्य चीजें हैं वो खरीद सकत हैं।
1: और सबसे अच्छी बात यह है यह हमें बहुत मामूली ब्याज दिया पड़ता है, इतना रहता है कि हम पंच आसानी से वका वहन कर सके थे।
2: और जैसे आवेदन में कुछ भैया पहचान पत्र जरूरी है ताकि अपन एक प्रमाण रहे।
1: बिल्कुल ऊका सबके तो जरूरत पड़ता है, सीधे हम पंच बैंक में जाए और अपन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए के अपने खेती पाती की जो जरूरत है वह के लिए अपन कर्जा लेके अपन काम निकाला जाए। मूल एक चीज की ध्यान रखा जाए, समय से अगर हम पंच पैसा को वापसी कर दी थे तो आगे अपन सम्मान बना रहा था, आसानी से अपने सबका कर्जा मिल जाता है। सरला बनी, खेती पाती की जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यही लिए और सुन लीजिए आज की खबरें।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 493 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रदेश के 9,18,091 किसानों के खातों में यह धनराशि भेजी जा रही है। यह सहायता बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने और आपदा के समय उन्हें राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके साथ ही अतिवृष्टि और चक्रवात से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
2: रियाज भैया,
1: हाँ सरला बहन,
2: आज की बातन में आज जाना जाए रबी में दलहन उत्पादन के बारे में, बता रहे हैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, रबी में जहाँ आपका खेत खाली है और दलहन उत्पादन करना चाहते हैं तो दलहन उत्पादन की क्या कुछ संभावनाएं हैं और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर LB यादव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां रबी में दलहन उत्पादन की योजना बनाए हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
5: किसान भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। दलहनी फसलों का हमारे खाद्यान्न में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
4: तो डॉक्टर साहब, मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी में उगा सकते हैं किसान भाई बहन?
5: इसमें मुख्य रूप से जो है चना, मटर, मसूर की खेती जो है बहुतायत रूप से जो है हमारे बुंदेलखंड के इलाके में किसान भाई बहुत बृहद रूप से जो है इसकी खेती करते हैं।
4: तो इसकी खेती फर्दा भी हो सकती है और सफसली भी हो सकती
5: है? हाँ, देखिए ट्रेडिशनल में जो है किसान भाई पहले जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग ही करते थे, लेकिन अब जो है सिंगल क्रॉप लेने लगे हैं। दलहनों का काफी कम उत्पादन होता है जो हमें विदेश से आयात करना पड़ता है, तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो है आत्मनिर्भर दलहन मिशन की जो है इस साल से शुरुआत की गई है। इसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों को जो मसूर की जो बीज है 100% अनुदान दिया जा रहा है, किसान भाई से एक पैसे नहीं लिया जाएगा, उनको फ्री में भी बांटा जाएगा। और चना और मटर पर जो है 75% अनुदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा जो मिलकर के जो है दिया जा रहा है।
4: डॉक्टर साहब, जहां किसान भाई बहन चना, मटर, मसूर की तैयारी में हैं, तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ करें?
5: चूंकि दलहनी फसल है इसमें बहुत ज्यादा खेत की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक बार जो है मिट्टी पलटने वाले हर से अगर किसान भाई जुताई कर दें खेत की तैयारी के लिए पर्याप्त होता है।
4: बुआई का उपयुक्त समय क्या है डॉक्टर साहब?
5: मुख्य रूप से दलहनी फसलों की बुआई का समय जो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है,
4: यानी समय एकदम उपयुक्त चल रहा है।

0: एकदम उपयुक्त समय चल रहा है, कहीं कहीं रेनफॉल ज़्यादा हुई है तो वहाँ पर थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो उसके लिए लेट प्रजातियाँ जो हमारे पास उपलब्ध हैं किसान भाई उसका लेट प्रजातियों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: उन्नत प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं जिनका चुनाव करें किसान भाई बहन, चना मटर और मसूर में?
0: चना में मुख्य रूप से कंचन है, कुबेर है, अटल है, सिवा है, केशव है और एक पूसा पार्वती, ये जो है बहुत ही लेटेस्ट प्रजातियां जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ईजाद की गई हैं। किसान भाई चना के रूप में इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। अगर मटर की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए अपर्णा, शिखर और हरित, ये मुख्य रूप से ये मटर की प्रजातियां हैं। इसी तरह से मसूर में जो है पूसा श्वेता और कोटा, कोटा 4 और कोटा 5 मसूर की प्रजातियां जो किसान भाई जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, एकदम लेटेस्ट प्रजातियां हैं ये। इसके अलावा GNG 2171 है, IPC 2005-62 है, ये जो चना की प्रजाति है। इसी तरह से मटर में जो है IPFD 18-3 है, IPFD 19-3 है, पंत मटर 347 है, पंत मटर 250 है। इसी तरह से मसूर में भी जो है पंत मसूर है, IPL 230 है, IPL 311 है, IPL 315 है और कोटा मसूर 4 और 5 मैंने पूर्व में ही बता दिया है।
1: डॉक्टर साहब, बीज दर क्या होगी प्रति एकड़ के हिसाब से?
0: चना में जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़,
1: जैसा दाना है उसके हिसाब।
0: हाँ, दाने के हिसाब से, चूंकि अगर दाना छोटा है तो इसकी जो है
1: बीज की मात्रा कम
0: हो जाती है, और दाना बोल्ड है बड़ा है तो बीज की मात्रा थोड़ा 40 किलो हो जाएगी प्रति एकड़।
1: और मटर में?
0: मटर में मुख्य रूप से जो है 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है मटर, इसमें चूंकि यूनिफार्म होती है, इसमें कोई छोटा बड़ा दाना नहीं होता है, तो इसमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मसूर में जो है 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसान भाई बीज जो है डाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बुआई के पहले बीज शोधन और बीज का उपचार भी जरूरी है?
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि हमारे किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं। जैसा आप जानते हैं कि उर्वरकों का रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ों को बताते हैं। जैसे जानते हैं वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन हमारे ऊपर उपलब्ध है, इसका मतलब 80,000 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है,
1: यानी तैर रही है।
0: हाँ, वायुमंडल में। और उसी को हम कैसे अपनी जमीन में फिक्स कर लें, इसके लिए राइजोबियम कल्चर एक आता है जो 200 ग्राम का पैकेट होता है, 50 ग्राम गुड़ ले लें और 50 लीटर पानी में घोल बना करके इसको मिला लें, और मिलाने के बाद जो है किसान भाई उससे बीज को उपचारित कर लें, और इसको छाए में सुखाना चाहिए, धूप में इसको नहीं सुखाना चाहिए। उसके बाद जब खेत में बुवाई करते हैं तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसके जड़ में जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके जो है जड़ में स्थिरीकरण करता है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो जीवाणु खाद जैसे राइजोबियम कल्चर और फास्फेटिका कल्चर से बीजोपचार के पहले किसी फफूंदी नाशक से बीज शोधन भी करना होगा?
0: हाँ, बीज शोधन करने के लिए जैसे ट्राइकोडर्मा विवेरिया वैशियाना है, कार्बेंडाजिम है, थीरम है, हमारी ये जो बायोपेस्टिसाइड और केमिकल रसायन है, अगर इन केस किसान भाई को इन तीनों से फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम तीनों से अगर प्रयोग करना हो तो इसके लिए FIR एक शब्द आता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इस सीक्वेंस में जो है उसका बीज शोधन करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: इसके लिए जैसा आप जानते हैं बेसल ड्रेसिंग के रूप में जब खेत में बुआई करते हैं हम बीज की, उसी समय जो है 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटास की मात्रा जो है बेसल ड्रेसिंग के रूप में हम डालते हैं। मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन की जो है जो यूरिया वगैरह जब डालते हैं उससे DOC पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को फोलियर रिफ्रेइंग के रूप में भी जो है फ्लावरिंग और पार्टिंग के समय जो है जब उसमें फल आते हैं, फलियाँ आती उस समय जो इसका प्रयोग जो है टॉप ड्रेसिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन दलहनी फसलों में कैसे हो, चना मटर मसूर में?
0: जो भी हमारे जमीन में पोषक तत्व उपलब्ध है 33% का प्रयोग जो है खरपतवार करते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर जो है अगर हमने खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया तो हमारी उपज कम से कम 50% उपज कम होने की संभावना बनी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, क्या कोई प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग चना मटर मसूर में हो जाए?
0: हाँ, प्री इमरजेंस के रूप में दवा आती है प्रिटिलाक्लोर, बहुत फेमस है और पेंडीमेथ्रिन काफ़ी कॉमन है, किसान भाई इसको भली भांति जानते हैं। इसके बारे में बुआई के 2-3 दिन के अंदर ये कम से कम जो है 1.25 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में अगर बना करके घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो खरपतवार जो है काफ़ी हद तक जो है कम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रबी में दलहन उत्पादन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें

0: या आपके कृषि निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7017736775।
0: हिंदी में
1: 70 17 36 3 7 7 5 7017736775। इसके अलावा भी जैसा आप जानते हैं भारत सरकार का किसान कॉल सेंटर है 1551 1551 नंबर पर भी किसान भाई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर भी जो जानकारी किसान भाइयों को जो है भरपूर मिलती रहती है।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का रबी में दलहन उत्पादन के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: किसान भाई दलहन फसलों का अधिक से अधिक बुआई करें और इसका उत्पादन लें, क्योंकि इस पर MSP भी भारत सरकार ने जो है काफी बढ़ा दिया है। खाद्य पदार्थों में भी जो दलहन का बहुत महत्व है
0: और खेत की सेहत भी बढ़ानी है तो रबी में दलहन उत्पादन करना पड़ेगा। डॉक्टर लाल बहादुर यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी में दलहन उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: सरला बहनी,
6: हाँ रे अजबिया,
5: देखो नवरात्र चल रहा है और हर आदमी जो है देवी की स्तुति में मगन है, तो कहे ना देवी की स्तुति में एक बढ़िया साजा पचरा गीत सुन लीन जाए। सुनाए रहे हैं विवेकानंद व्यास, तो आओ सुना जाए।

0: सरला बहनी,
1: भैया
0: देखो रबी के मौसम आ रहा है और इमा हम पंच आलू के जोन उत्पादन करी थे वह के बारे में एक जानकारी ले ली जाए।
1: बिल्कुल भैया, तो आज के किसान हैं बता रहे हैं आलू बीज उत्पादन के बारे में, भंवरपाल सिंह भैया।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं कानपुर नगर जनपद के सरसौल ब्लॉक के महुआ गांव, जहां आलू बीज उत्पादन से जुड़े भंवरपाल सिंह भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। भंवरपाल सिंह भैया नमस्कार।
3: नमस्ते राम साहब।
2: भैया आप आलू बीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस बार क्या योजना है आपकी आलू उत्पादन की?
3: सब आलू उत्पादन की जो योजना जो पूर्ववत रही है वही है, और अब हमारी खेतों की तैयारी हो गई है, गोबर की खाद और जिप्सम वगैरह पड़ गए हैं और गहरी जुताई हो गई है, और उसके बाद हम करीब 20-21 तारीख से जब हमारा टेम्परेचर अनुकूल आ जाएगा तब तो हम आलू बीज की बुआई करेंगे।
2: आप चूंकि लगातार कई दशकों से आलू उत्पादन से जुड़े हैं, आलू की बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या मानते हैं आप?
3: देखिए आलू का जो उपयुक्त समय है ना सर, वो 20 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक, और हमारा जो टेम्परेचर है उस समय ये होना चाहिए 22 से और 32 के बीच में, जो दिन का तापमान है वो 32 के आसपास होना चाहिए और रात का तापमान 22 के आसपास होना चाहिए, तो जो टेम्परेचर है वो ना सर हमारा 24-25 होना चाहिए दिन रात का मिला करके।
2: इस साल कितने पैमाने पर आपकी बीज उत्पादन की योजना है?
3: हमारी बीज उत्पादन की योजना 80 से 100 एकड़ के बीच में लमसम नसा वही रहेगी।
2: यानी अपने साथ साथ आप लीज पर लेकर के बीज उत्पादन कर रहे हैं?
3: जी मेरा साहब, जो हमारी खुद घर की जमीन है वो करीब 40 एकड़ के आसपास है, और करीब 40 से 60 एकड़ के बीच में सब हम जमीन लीज पे लिए हुए हैं।
2: यानी संपूर्ण परिवार और लीज मिला करके आपका
3: 100 एकड़ के आसपास है हमारा एरिया।
2: कौन कौन सी प्रजातियां चुन रहे हैं इस बार?
3: अगेती आलू का भी काम करते हैं, उसके लिए हम पुखराज है, मोहन है, ख्याति है, सुख्याति है, इन प्रजातियों को पसंद करते हैं। और अब जब हम टेबल पे आ जाते हैं तो टेबल में हमारी बहार है, ज्योति है, चंद्रमुखी है, हिमालनी है, आनंद है, इन वैरायटियों का बोते हैं। और प्रोसेसिंग में चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, चिप्सोना 5 अभी नई नई आ गई है, और साइसोना है, और कुछ जैव संबंधित वैरायटियां हैं जैसे आपकी मानिक है, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी जमुनिया है, ये कुछ वैरायटियों का भी बीज उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कुछ ही टैलेंट्स की वैरायटियां हैं जैसे किरण है, और अभी बहुत लेटेस्ट आई है तेजस है, ये 2-3 वैरायटियां जो है जो ही टैलेंट्स वाली, इनका भी सीड उत्पादन करते हैं।
2: तो जिन प्रजातियों का आपने जिक्र किया इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं?
3: जैसे हम अगर अगेती में जाएंगे तो जो हमारी

0: अनाज है ये बहुत कम समय में 60 दिन में 60-70 क्विंटल का एकड़ दे देती है और उसमें किसान को अच्छे रेट मिल जाते हैं। अगर हम मीडियम वैरायटी में चले तो हम बाहर सब हमको हमारे यहाँ से जो कानपुर आगरा आपका अलीगढ़ का जो मंडल है उनमें पहाड़ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। साउथ में इसकी बहुत डिमांड है, बहुत कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए उसको हम लोग इसलिए पसंद करते हैं। अब प्रोसेसिंग में किप्सोना 1, किप्सोना 3, किप्सोना 5 और बायो 45 जैसे कुफरी नीलकंठ है, कुफरी मानिक है, कुफरी जमुनिया है, इनको भी कर रहे हैं।
1: तो खेत की तैयारी में क्या कुछ खास कर रहे हैं?
0: खेत की तैयारी में सब हम तो दलहनी फसल का समावेश करते हैं। फसल चक्र में हम आलू के बाद उड़द मूंग करते हैं, उड़द मूंग के बाद ठेचा करते हैं और गोबर की सड़ी खाद साल में या 2-3 साल में एक बार जो है सब सॉइलर से गहरी जुताई कर देते हैं और गहरी जुताई करके खेत को हम तैयार कर लेते हैं।
1: बुआई में कौन कौन सी बारीकी है और बुआई की तकनीक क्या अपनाते हैं, अंतरण क्या रखते हैं?
0: देखिए डॉक्टर साहब, बुआई में सबसे तो अच्छा है सीड, चाहे आप सीड के लिए बोल रहे हैं, कहने की कोई बात ही नहीं है, आप टेबल के लिए भी बोल रहे हैं तो आपका सीड जो है थोड़ा गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। हो सके तो आप उद्यान विभाग या आलू अनुसंधान केंद्र या जो पंजीकृत सीड उत्पादक हैं आलू के वहां से आप बीज लें। दूसरी एक कि आप अगर सीड में हैं या हम सीड का काम करते हैं तो हम आलू बीज को काटते नहीं है, तो आलू बीज काटने में वायरस फैलने की स्प्रेड होने की बहुत संभावना रहती है। अगर एक चाकू में एक आलू में हमारे वायरस है तो वो अपने आलू में चला जाएगा, वो वायरस फैलता चला जाएगा,
1: यानी तो संक्रमण का खतरा रहता है।
0: हाँ, अगर हम सब अगेती बुआई कर रहे हैं पुखराज की, मोहन की, छाती की, तो हमारा नसब एनपीके का रेशियो रहेगा 180 नाइट्रोजन, 50 फास्फोरस और 100 नसब पोटाश।
1: ये 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर की मात्रा है?
0: हाँ, ये नसब 1 हेक्टेयर की मात्रा है। अगर हम टेबल के लिए कर रहे हैं तो नसब हमारा 180-120 रहता है
1: नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश।
0: हाँ, जैसे अगर सीड के लिए भी हम कर रहे हैं, जैसे हम सीड के लिए करते हैं तो हमारा नसब रेशियो रहता है 180-50-100 जो हम अगेती आलू के लिए करते हैं।
1: जी,
0: जैसा प्रोसेसिंग में हमको थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स बढ़ाना होता है, उसमें खास करके हमको जो नाइट्रोजन है वो 270 तक हम ले जाते हैं तत्व के रूप में
1: जी,
0: और फास्फोरस 80 रहेगा और हमारा जो कैल्शियम है पोटास 150 रहेगा।
1: मोरपाल भैया, बुआई के पहले बीज शोधन भी महत्वपूर्ण है?
0: बीज शोधन ऐसा बहुत महत्वपूर्ण, 10 दिन पहले बीज को निकाल करके छाया में सुखा लेते हैं, उसकी स्टार्टिंग ग्रेडिंग कर लेते हैं, जो आलू डैमेज है या जिसमें आंखें नहीं है उनको निकाल करके सुखा करके उसमें जो है एक अच्छे कवकनाशी फंगिसाइड का हम जो है एक बार पहले तो पॉलिथीन सीट पर बिछाते हैं, तो उस पर डाल देते हैं एक बार मशीन से, फिर उसको पलट करके दोबारा डाल देते हैं और उसको छाया में सुखा करके 1 हफ्ते रखे रहते हैं। जब उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है तो उसकी हम सब बुआई करते हैं।
1: तो आप बुआई पोटैटो प्लांटर से करते होंगे?
0: जी साहब, हमारे पास ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है जो कि एक प्रेसिजन टाइप की है, बिल्कुल एक सटीक गहराई पे सटीक दूरी पे जो है, जैसे कि सब हमको 40-50 ग्राम का आलू बोना है तो उसकी सब दूरी भी ज्यादा रहेगी, लाइन से लाइन की दूरी हमारी 60-65 सेंटीमीटर रहती है सीड की और आपकी जो है अगेती आलू की।
1: और पौध से पौध?
0: पौध से पौध सब जो है 5 से हमारी रहती है 10 सेंटीमीटर। ये सीड हमारा 25-30 ग्राम का है, अगर सीड हमारा 40-50 ग्राम का है तो वो दूरी सब 10-15 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी
1: जी,
0: और यही रेशियो सब गहराई पे रहता है। छोटा सीज है तो उसकी गहराई 5-7 सेंटीमीटर होगी, अगर बड़ा बीज है तो उसकी गहराई 8-10 से लेकर 15 सेंटीमीटर रहेगी।
1: कुल मिला जुला करके आलू बीज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं?
0: जी, हम खुशहाल हैं। हमारे हर आलू उत्पादक किसान को सलाह है कि कभी भी रेट में आकर के घबराए ना कि रेट इस साल बहुत कम है या बहुत नुकसान हो रहा है। रेट कभी कम होते हैं और रेट कभी ज्यादा होते हैं, ये कम ही रेट कभी ज्यादा होंगे, इसलिए आप अपना आलू उत्पादन अच्छे ढंग से करते रहे, जरूर आगे भविष्य में आपको लाभ होगा।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-157-23-975, 94-157-23-975, 94-157-23-975।

भोरपाल सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप 100 एकड़ आलू बीज का उत्पादन कर रहे हैं और उसकी सारी तैयारी है और बुआई शुरू करने वाले हैं। जो आपका तजुर्बा था उससे और किसान भाई बहन सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: रियाज भैया।
7: हाँ सरला बहन,
6: अब जान लीजिए मौसम के हाल।
7: बिल्कुल, तो सुना दियो कि मौसम के काम इजाज है।
6: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो प्राप्त जानकारी है वह के अनुसार आज यानी 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और 17, 18, 19 तारीख में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए भैया, तो 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मौसम शुष्क, और बीच में 16 तारीख में कहूँ कहूँ बरसात होने की संभावना है।
7: अब अपने पंचन की बता दी कि अपन कार्यक्रम किस लागत है, एक बारे में अवगत जरूर करावे, तो उसके लिए कार्यक्रम के पता है कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001। ईमेल आईडी बता दी जाए
6: farmandhome@lko@gmail.com।
7: यही के साथ माँ घड़ी इशारा कर रही है कि अपने कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो पंचन से लीन जाए आज्ञा।
6: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी, ग्रामीण भाइयों ने जाना अपने लाभ की बातें। अब वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे बस थोड़ी ही देर में। तब तक बने रहिए आकाशवाणी प्रयागराज से।

लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का

0: मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा। परिवारों को भी मिलेगा 5,00,000 रुपए सालाना कैशलेस इलाज। दीपावली के बाद लागू होगा यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का अहम फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए लिया फैसला। और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है आराधना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली से प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाने और उनके परिवारों को 5,00,000 रुपए सालाना कैशलेस इलाज की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया। मानदेय में एक मुश्त 40% की वृद्धि से अब ग्राम प्रहरियों को 2,500 की बजाय 3,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों और लगभग 1,00,000 राजस्व गांवों में ग्राम प्रहरियों की सजगता महत्वपूर्ण है। गांव सुरक्षित होंगे तो विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा।
1: जब भी आप सजग होंगे, सचेत होंगे, गांव सुरक्षित होगा। गांव सुरक्षित होगा तो गांव आत्मनिर्भर होगा। गांव आत्मनिर्भर होगा तो आपका जनपद भी आत्मनिर्भर भी होगा और विकसित भी होगा। और जनपद अगर हमारा आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा तो यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता है। यूपी आगे बढ़ेगा और यूपी आगे बढ़ गया तो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको पूरा करने में सफल हो सकता है।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय और राज्यसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया है। श्री मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने इस्तीफे में कहा है कि वह तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत माता और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प निर्यात IHGF दिल्ली फेयर 2026 का उद्घाटन किया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय मेले का उद्देश्य देश के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश के हस्तशिल्प कारोबार को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है।
2: पूरी दुनिया में की लड़ाई भी छिड़ी हुई है, आवाजाही में दिक्कत है, फिर भी भारत के अंदर 125 देशों से लोग आए, 23% 24% नए लोग आए और 26-27 अप्रैल से जुलाई मेरा एक्सपोर्ट भी लगभग 25% बढ़ा है और हमारा टारगेट है कि हैंडीक्राफ्ट का $1 बिलियन तक ले जाने का।
0: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री जैन ने आकाशवाणी के

0: श्रोताओं की संख्या बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकाशवाणी से जुड़ सकें।
1: आज रिव्यू करने की कोशिश की कि हमारी दशा और दिशा, हम केंद्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, केंद्र कहाँ पर है, किस तरह के प्रोग्राम्स हों, कैसे लोगों से और जुड़ाव करने की कोशिश की जाए और किस तरह से इंजीनियरिंग सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
3: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
2: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
4: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है।
2: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में आज सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। गोरखपुर के बुढ़िया माई मंदिर, तरकुल्हा देवी और झारखंडी मंदिर, बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ तथा मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में देवी भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां विशालाक्षी को श्रृंगार सामग्री अर्पित की गई। सीतापुर के नैमिषारण्य में स्थित शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में कई जिलों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: नैमिषारण्य में शारदीय नवरात्रि के मौके पर मां भगवती के दर्शन पूजन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंडला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं ने चुनरी, नारियल, फल फूल और मिष्ठान अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि महोत्सव को लेकर मंदिर को आकर्षक झालरों से सजाया गया है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के खास इंतजाम किए हैं। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर।
0: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होंगी। और अंत में एक बार फिर मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय ₹1,000 बढ़ाने की घोषणा। परिवारों को भी मिलेगा ₹5,00,000 सालाना कैशलेस इलाज। दीपावली

के बाद लागू होगा यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का अहम फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए लिया फैसला। और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है आराधना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8

की भीड़, माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है आराधना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, वक्त हो चला है संस्कृत कार्यक्रम का। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर दीप्ति विष्णु की वार्ता दुर्गे देवी नमोस्तुते।
1: या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।

अभी हम संस्कृत वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था दुर्गे देवी नमस्तुते। वार्ताकार थी डॉक्टर दीप्ति विष्णु। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का।

आप सुन रहे थे दुनिया जब दीवानी, अर्चना दास का यह बेहद खूबसूरत गीत। अब सुनिए अर्चना दास की ही आवाज़ में रूप कुमार रूप का लिखा गया नदी रे नदी।

0: छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत का। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगा

गीगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत बस कुछ ही देर में। फिल्म संगीत को सुनने वाले प्यारे श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त आदित्य का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम सफ़र करेंगे 2010 के खूबसूरत दशक का। ये वही दौर था जब हिंदी फिल्मों में संगीत के नए प्रयोग हुए। सूफियाना अंदाज ने दिलों को छुआ और एक नए तरह के रोमांटिक गीतों ने युवाओं के बीच अपनी खास जगह बनाई। तो इसी क्रम को शुरू करते हुए बिना देर के आइए ले चलते हैं आपको अपने पहले गीत पे।

दोस्तों, संगीत का वह रूप जो हमें ज़िंदगी की मुश्किलों के पार उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाता है। इस गीत को सुनकर आपको यकीन होगा कि एक बेचैन कलाकार की अभिव्यक्ति भी कैसे हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। गीत को गाया है मोहित चौहान ने, कंपोज

हर कहानी का अंत मिल जाना ही नहीं होता, कभी कभी बिछड़ जाना ही प्यार की परिणति होती है। दो लोग मिलते

और मिलकर बिछड़ जाते हैं। आधुनिक युग में रिलेशनशिप्स को समझना जितना ही मुश्किल है, उसको बयां करता है यह अगला गाना, जो कि फिल्म मर्डर 2 का है, जिसको गाया है मोहम्मद इरफान अरिजीत सिंह ने और सईद कादरी ने। संगीतकार हैं मिथुन।

कभी-कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और खुद को पहचानने की एक खूबसूरत कहानी गानों के रूप में आ जाती है। इंसान आज के समय में कितना खोया हुआ है, जहाँ पर उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कई संघर्ष हैं, वहीं पर वो अपनी खुद की भी तलाश कर रहा है, और ये तलाश उसके प्रेम तक भी जाती है। आदमी उहापोह की ज़िंदगी जीते हुए सोचता है कि वह क्या है, क्यों है, और इसी अस्मिता को खोजते हुए यह अगला गाना। फिल्म है अजब प्रेम की गजब दीवार कहानी, कंपोज़र हैं प्रीतम, लिरिसिस्ट हैं इरशाद कामिल और सिंगर हैं आतिफ असलम।

दोस्तों, गाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी 2 का यह गाना, जिसको गाया है तुलसी कुमार और के ने। लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, कंपोज किया है जीत गांगुली ने।

दोस्तों, अगला गाना और कार्यक्रम का अंतिम गाना, जो सफ़र हमारा शुरू हुआ था कभी कभी, अदिति राशिद अली के गाने से, जो फिल्म थी जाने तू या जाने ना, से हमारा सफ़र पहुंच चुका है एक ऐसे गाने की ओर जो 2010 में तो नहीं आया, लेकिन उसके पहले आया, और उस गाने ने रातों रात धूम मचा दी और भारत के चार्ट लिस्ट को टॉप किया। तो सुनते हैं अगला गाना फिल्म गैंगस्टर से, जिसको गाया है के ने और म्यूज़िक दिया है प्रीतम ने।

फिल्म संगीत, समय आपके साथ कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। आपको यकीनन यह फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने रेडियो दोस्त आदित्य को दीजिए इजाज़त, ताकि फिर से आपके लिए कुछ नए और बेहतरीन प्रोग्राम हम तैयार कर सकें। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम सबरस का, जिसमें आपको सुनवाते हैं कुछ गीत और भजन। इसी क्रम में बलबीर निर्दोष का लिखा गया और सोनू निगम के द्वारा गाया गया यह पहला भजन पेश है।

इसमें आपको सुनवाते हैं कुछ गीत और भजन। इसी क्रम में बलबीर निर्दोष का लिखा गया और सोनू निगम के द्वारा गाया गया यह पहला भजन पेश है।

वक्त हो चला है कतील शिफाई का लिखा हुआ और तलत अजीज का गाया हुआ यह गजल छाए उन रेशमी।

सबरस के कारवां को आगे बढ़ाते हुए कफील आज़र का लिखा गया और जगजीत सिंह जी की अमर आवाज़ में बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज

0: सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: आई वॉन्ट स्ट्रेंथन माई पार्टी टू तमिलनाडु।
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: टू स्ट्रेंथन द पार्टी।
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक

0: राज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
1: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक,
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
3: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
5: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
6: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
5: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
7: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
5: 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई

0: आर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, गज़लों की इस बेहद खूबसूरत महफिल कहकशा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ आवाज़ें सीधे दिल तक पहुंचती हैं, कुछ अल्फाज हमारी खामोशियों को जुबान देते हैं, कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते हुए हम अपनी ज़िंदगी के किसी भूले बिसरे किस्से में लौट जाते हैं। गज़ल महज शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि यह एहसासों की दुनिया है, जहां मोहब्बत भी है, जुदाई भी, शिकवे भी, और ज़िंदगी को मुस्कुराकर देखने का अंदाज़ भी। तो आइए, आज के संगीतमय सफ़र में हम भी शामिल होते हैं। मैं हूं आपका साथी और मेज़बान, आपका रेडियो दोस्त आदित्य, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज का कार्यक्रम कहकशा। तो बिना देर करते हुए हम पहली गज़ल जगजीत सिंह साहब की जब से हम तबाह हो गए सुनते हैं।

जब से हम पना हो गए, तुम जहां पना हो गए। दोस्तों, रिश्तों की दुनिया भी कितनी अजीब है। कभी एक छोटी सी बात दिलों के बीच फासले पैदा कर देती है, तो कभी एक छोटी सी मुस्कान बरसों की नाराज़गी मिटा देती है। लेकिन सवाल यह है कि जब अपना ही कोई रूठ जाए तो उसे मनाया कैसे जाए। जब दिल ही खामोश हो जाए तो उसकी बात सुनी कैसे जाए। गजलें शायद इन्हीं अनकहे सवालों का जवाब हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेशकश की ओर और आवाज़ के एहसासों को नया रंग देते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल, कैसे रूठे दिल से।

दोस्तों, जिंदगी का नाम सिर्फ अंधेरों से जूझना नहीं, बल्कि उन अंधेरों में रोशनी तलाशना भी है। हर दौर में कुछ लोग पुराने रास्तों पर चलते हैं और कुछ नए रास्ते बनाते हैं। कुछ लोग बुझते हुए चिरागों का मातम मनाते हैं, तो कुछ नए चिराग जलाने का हौसला भी रखते हैं। इस उम्मीद और नएपन के एहसास के साथ अब पेश है अगली संगीतमय प्रस्तुति। इस गजल को अपनी आवाज से सजाएंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

श्रोताओं, किसी ने सच ही कहा है कि दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका दर्द बहुत दूर तक सुनाई देता है। मोहब्बत में शिकायतें भी होती हैं, उम्मीदें भी, और कभी कभी ऐसे जख्म भी जिन्हें वक्त भरने की कोशिश तो करता है मगर उनकी यादें कहीं ना कहीं बाकी रह जाती हैं। इन्हीं जज्बातों को अपनी आवाज़ देने के लिए आ रहे हैं मनहर उदास और अनुराधा पौंडवाल की सुरीली जोड़ी। तो आइए सुनते हैं अगली गजल, दिल तोड़ के हंसते हो।

श्रोताओं, अब तक की महफिल में हमने मोहब्बत की कसक सुनी, रिश्तों की उलझन महसूस की और उम्मीद की रोशनी भी देख ली। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हर एहसास को गंभीरता से लेने के साथ साथ कभी कभी मुस्कुराने की वजह भी तलाश ली जाए। आखिर एक मुस्कान कई बार वह काम कर जाती है जो लंबी लंबी बातें नहीं कर पाती। तो अब माहौल को थोड़ा हल्का और दिलचस्प बनाने के लिए है अगली पेशकश। अपनी खास अदायगी के लिए पहचाने जाने वाले रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज में सुनिए गजल नर्म जोक से।

दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी यह संगीतमय महफिल कहकशा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। आज के सफर में हमने मोहब्बत की कसक सुनी, टूटते रिश्तों की कहानी महसूस की, उम्मीद के चिराग जलाए और मुस्कुराहटों के कुछ पल भी अपने नाम किए। गजलों की खासियत ही यही है कि वे खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका असर हमारे भीतर देर तक बना रहता है। कोई शेर यादों में ठहर जाता है, कोई धुन मन में गूंजती रहती है, कोई आवाज़ दिल में किसी कोने में बस जाती है। उम्मीद है कि आज की इन संगीतमय प्रस्तुतियों ने आपके दिन को कुछ और खूबसूरत बनाया होगा। अपने इस रेडियो दोस्त आदित्य को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम।

नमस्कार, आदाब, बहुत सुस्वागतम। आकाशवाणी के इस खूबसूरत मंच पर उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी आदित्य, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फिल्म संगीत कार्यक्रम। दोस्तों, कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। कुछ धुनें बीते हुए समय की याद दिलाती हैं, तो कुछ गीत हमारे जीवन की उन भावनाओं को आवाज़ देते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। हिंदी सिनेमा का पुराना संगीत प्रेम, विरह, उम्मीद और जीवन की खूबसूरती का ऐसा अद्भुत संसार है जिसमें हर किसी की अपनी कहानी का कोई ना कोई हिस्सा मिल जाता है। तो आइए आज के संगीतमय सफर में चलते हैं उन सदाबहार गीतों की ओर जिन्होंने समय की सीमाओं को पार करके श्रोताओं के दिल में अपनी खास जगह बनाई। इस श्रृंखला में पहला गीत है फिल्म वो कौन थी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने, और गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान।

दोस्तों, जीवन में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनमें दोबारा होने का भरोसा नहीं होता। ऐसे में मन चाहता है कि उस एक पल को पूरी शिद्दत से जिया जाए और अपने प्रिय व्यक्ति को अपने करीब महसूस किया जाए। प्रेम की इसी नज़ाकत और बिछड़ने की आशंका को अपनी आवाज़ में पिरोया है स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने। मदन मोहन का भावपूर्ण संगीत और राजा मेहंदी अली खां के शब्द इस गीत को एक अमर प्रेम गीत बना देते हैं। तो ऐसा था कुछ हमारा लग जा गले। प्रेम की दुनिया भी कितनी अनोखी है। कभी दो अनजान दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो कभी कोई रिश्ता हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। और जब प्रेम को संगीत का साथ मिल जाता है तो वह एहसास हमेशा के लिए यादों में बस जाता है। प्रेम

फिल्म एक दूजे के लिए गीत तेरे मेरे बीच में प्रेम को ऐसे ही एहसास को व्यक्त किया गया है। कमल हासन और अति अग्निहोत्री पर फिल्माया गया यह गीत अपनी मधुर धुन और भावपूर्ण गायकी के कारण आज भी लोकप्रिय है। तो सुनते हैं तेरे मेरे बीच में।

श्रोताओं, अब सुनिए आप हमारा विशेष कार्यक्रम मिर्जा गालिब पर आधारित है, जो नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के स्वर में है।

0: वाह, बेहद उम्दा मानिक हेज, दिल नशीन गजल।
1: देखिए नेहा जी, आप तारीफ गजल की कर रही थी तो वाकई कमाल की गजल थी
0: जी।
1: लेकिन फिलहाल पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके दिमाग के घोड़े कहाँ तक दौड़े और क्या कुछ पता करके आए हैं, जरा मुझे जल्दी जल्दी फटाफट बताइए।
0: दोस्तों देखिए, दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं धीरे धीरे और ये समझती है ना तुरंत, ये क्या कोई सुपर फास्ट गाड़ी है क्या, है ना। लेकिन फिर भी चलिए, जितने मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े हैं मैं थोड़ा अंदाज लगाती हूँ, है ना। हाँ, पकड़ पे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है वंदना जी।
1: क्यों,
0: ठीक है,
1: आगे निकल गए क्या?
0: आपके दिए क्लू को डिकोड करना मुझे थोड़ा सा दुश्वार तो लग रहा है। कंफ्यूज भी हूँ कि आप बात किसकी करना चाहती हैं, किस्सा कोई कार्यक्रम के अंतर्गत जगजीत सिंह साहब की गजल सुनाती हैं, अदब की बात करती हैं। अदब से एक बात मुझे याद आ रही है।
1: अच्छा,
0: एक तस्वीर उभर आई है।
1: ओहो,
0: मैं बोलूं
1: तस्वीर है, जरा ये बताइए।
0: मैंने जो जहन में सुना देखा जो तस्वीर बन चुकी है उनकी अदब के नाम से, वही लंबे से जिनके माथे पर टोपी है और कुछ गोरे से हैं और जब चलते हैं तो कुछ लोग उनसे बिल्कुल खौफ खाते हैं और कुछ करुणामय स्वर और शब्द उर्दू के अल्फाज फारसी की भी बातें करते हैं।
1: मुझे ये लग रहा है नेहा जी,
0: जी,
1: कि क्लू कुछ कुछ जो है वो राज जो था, वो रहस्य जो था, वो पर्दा थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। आप पहुंच रही हैं।
0: पहुंच गई। सच में?
1: हाँ, क्योंकि देखिए बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और हमारे दोस्तों ने तो तुरंत पकड़ लिया होगा जब गजल सुनी होगी, और बात किस्सा गोई की हो रही है, बात अदब की जा रही है। और ये गजल किसकी थी जिसकी आपने तस्वीर अभी अभी उकेरी है ना?
0: मिर्जा गालिब साहब की।
1: क्या बात है, तो आपने पकड़ लिया।
0: शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि गालिब साहब को जैसे आप हम और सभी लोग जानते हैं, एक जहन में पाक साफ तस्वीर उभर आती है ना, और ऐसा लगता है जैसे पन्ने दर पन्ने खुलते जा रहे हैं सदियों के जीवन के। नहीं
1: तो देखिए, जब आपने पहचान ही लिया है और हम दोस्तों को खैर ये भी बताते चलें कि जिक्र होगा आज दोस्तों मिर्जा असदुल्लाह बेग खान साहब का, जो अपने तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं और जो उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान शायर रहे हैं और फारसी कविता के एक प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करने का जो श्रेय है नेहा जी, वो भी उन्हीं को दिया जाता है, यानी गालिब साहब को। और जो मजेदार किस्सा है, देखिए वो आमों के शौकीन थे,
0: आम खाने के,
1: बिल्कुल आम के बहुत शौकीन थे, और आमों के लिए तो वो कहाँ कहाँ से उनके लिए आम मंगाए जाते थे, और आमों को लेकर भी बहुत दिलचस्प किस्से इनके

0: जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल आज एक अदब की जब दुनिया की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं नेहा जी, तो कुछ उससे जुड़ा कुछ किस्सा आपको याद आ रहा है?
1: एक मिनट, ये आम वाली बात जानकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई आया याद आया क्योंकि दिमाग पे जोर डालना पड़ता है भाई
0: लेकिन बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते
1: दोस्तों अब हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए सुनाते हैं वो हिस्सा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि अदब की दुनिया में गालिब साहब का नाम स्वर अक्षरों में क्यों झिलमिला रहा है। दोस्तों बात उन दिनों की है जब दिल्ली सल्तनत पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज था। बहादुर शाह जफर साहब खुद भी बड़े शायर थे और उनके उस्ताद थे मशहूर व मारूफ शायर शेख इब्राहिम ज़ौक। और कहते हैं कि गालिब और ज़ौक साहब के बीच प्रतिद्वंद्विता उर्दू साहित्य के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है।
0: सच कहा नेहा जी,
1: याद आया?
0: बिल्कुल याद आया
1: जी, आगे की बात।
0: तो दोस्तों हुआ यूं कि एक बार गालिब साहब अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसी ठिठोली कर रहे थे
1: जी।
0: और ज़ौक साहब पालकी में बैठे हुए वहां से गुजर रहे थे।
1: फिर
0: हुआ यूं कि ज़ौक साहब को आता देख कर गालिब साहब खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि वो हाजिर जवाबी जो तंजिया अंदाज था उसके लिए भी गालिब साहब बड़े मशहूर हुआ करते थे
1: जी।
0: तो उन्होंने एक मिसरा कहा, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। हालांकि उस समय ज़ौक ने मियां गालिब को कुछ कहा नहीं। हाँ। पर इस तंज की शिकायत नेहा जी बताइए उन्होंने किससे की होगी?
1: बहादुर शाह जफर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने गालिब के नाम शाम की दावत और मुशायरे के लिए न्योता भी भिजवा दिया। असल में इस न्योते के जरिए ज़ौक गालिब को बादशाह सलामत के सामने भेजत करना चाहते थे।
0: लेकिन गालिब साहब भी कम नहीं थे, उन्हें इस बात की भनक तो लग चुकी थी कि दरअसल मामला क्या है, आखिर मरता क्या ना करता। गालिब साहब पहुंचे मुशायरे में और उनके पहुंचते ही बादशाह सलामत ने सवाल दागा
1: जी
0: कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता कहकर आपने गालिब साहब ज़ौक साहब का मजाक क्यों उड़ाया?
1: और उसके बाद दो घड़ी मिर्जा गालिब साहब सोचे और घबराए, जान बचाने के लिए कह दिया कि ये उनकी नई गजल का एक मिसरा था। असल में दोस्तों मिसरा गजल के एक हिस्से को कहते हैं। इस पर बादशाह ने मिसरे को पूरा करने के लिए कहा। अपनी ही बात में खुद को फंसता देख मियां मिर्जा ने मिसरे को कुछ ये कहकर पूरा किया कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है।
0: क्या बात है, क्या हाजिर जवाबी है नेहा जी।
1: मतलब उन्होंने ये कह दिया कि गालिब की आबरू क्या है रे,
0: लेकिन
1: बचा लिया खुद को।
0: बचाने की कोशिश तो बहुत की उन्होंने, लेकिन ज़ौक साहब बहुत अच्छे से समझ गए थे कि मिर्जा साहब निरी झूठी बातें कर रहे हैं। ये शायरी जो कर रहे हैं, शायरी की आड़ में बचने की कोशिश उन्होंने जो की है वो झूठी बात है। इसलिए गालिब साहब को जाल में फंसाने के लिए उन्होंने खुद ही इसकी खूब तारीफ की, बहुत वाह वाह मुकर्रर किया और उसके बाद धीरे से महफिल में कहा कि जरा मिर्जा साहब इस गजल को पूरा कीजिए ना, सुनाइए हमें भी।
1: तो दोस्तों हुआ यूं, मिर्जा गालिब साहब ने वहीं बैठे ही बैठे जो गजल कही उसे हम आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज में। बाखुदा आप सब भी खायल हो जाएंगे मिर्जा साहब की हाजिर जवाबी अकलमंदी और उनकी सुखन वरी के।
0: और हाँ दोस्तों जब गजल के बाद मिलेंगे तो जानेंगे कि किस शायर का वो कौन सा शेर था जिस पर फिदा होकर मिर्जा साहब अपना पूरा दीवान न्यौछावर करने को तैयार हो गए थे। फिलहाल तो वक्त हो रहा है इस खूबसूरत गजल के साथ लुत्फ अंदोज होने का, तो मुलाहिजा फरमाइए।

0: क्या है तुम कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1: अर्ज किया है
2: इरशाद हो।
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
3: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।

کیا بات مرزا مقرر.

0: हैं और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और तो चलिए इस बयानी में जोड़ते हैं वो खास किस्सा जिसका जिक्र हमने किया था। दोस्तों, गालिब के समकालीन ही एक और मशहूर शायर हुए। अब आप बताएंगे कौन हुए?
1: बिल्कुल अरबी, फारसी और उर्दू के जानकार जनाब मोमिन साहब मोहब्बतों वाले शायर थे, जिन्होंने अपने जज्बात को गजल के माध्यम से व्यक्त किया। और नेहा जी, उन्हें हकीम खान भी कहा जाता था।
0: अच्छा, लेकिन हकीम खान
1: क्योंकि वो चिकित्सक भी थे और बहुत सारी और भी खसूसियात थी उनके साथ जो जुड़ी हुई थी तो। जो उनके व्यक्तित्व को और उम्दा बनाती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर गालिब साहब खुद ही फरमाते हैं कि जब वो मोमिन साहब से मिलने उनके खानदानी घर कूचा चलाव पहुंचे तो वहाँ ऊपर के दालान में बढ़िया कालीन पर गाओ तकिया लगाकर बैठे थे। सामने ही चांदी का हुक्का रखा हुआ था और उनके पहुंचते ही, यानी गालिब साहब के पहुंचते ही, मोमिन साहब खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें गले लगाया और नजदीक बिठा लिया।
0: और पता है, बातचीत

0: का सिलसिला खली के मुशायरे से ही शुरू होना था और मिर्जा गालिब साहब ने ही बात।
1: साथियों, वक्त हो रहा है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे सिद्धेश्वरी देवी का ख्याल गायन।

साथियों, अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सिद्धेश्वरी देवी का ख्याल गायन राग ठुमरी खमास में। अब वक्त हो चला है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में 3 नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि 2 नगर पालिकाओं और 1 नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती है। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये है आकाशवाणी प्रयागराज। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं और अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर प्रातःकालीन प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।